0: Talks with Ketan.
1: Kia ora, namaste, sat sri akal, assalam alaikum. Bula, aapka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein. Well, aaj excited hoon ye khabar aap tak pahunchane mein. लेकिन यस कौन सी खबर है क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है आज के इस खूबसूरत के लंच बॉक्स शो में। आज वैसे बारिश के आसार थे बट अभी तक तो बारिश हो नहीं रही है, काफी वार्म लग रहा है, वार्म फील हो रहा है। 17 आज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 9 डिग्रीज आज का मिनिमम रहेगा, सनसेट आज रहेगा 6:12 पे। तो लेट्स सी यार आज का ओवरऑल वेदर कैसा रहने वाला है। वैसे बताया तो जा रहा है कि सुबह बारिश हुई थी, आपके इधर हुई थी क्या आप मुझे बताइए। मेरा नाम केतन है, मैं हूँ 3 बजे तक यहाँ पे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी गपशप करेंगे, कुछ नई खबर। अभी एक ऐसी खबर मुझे मिली है, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसने बहुत ही कम टाइम में अपना जो मुकाम हासिल किया था वो एक सचमुच में मिसाल था। काफ़ी नाम हो चुका था, काफ़ी शोहरत थी, पैसा भी था, सब कुछ था, जो एक स्ट्रगलर, एक जो आउट ऑफ इंडस्ट्री, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, वो सपना लेके आता वो सुशांत सिंह राजपूत हासिल कर रहे थे धीरे धीरे। MS धोनी में भी आपने उन्हें देखा होगा किरदार निभाते हुए, और मैं ऑनेस्टली MS धोनी की फिल्म देखने के बाद ही उनका फैन बना था। बट एक दिन खबर आती है कि वो नहीं रहे, और उन्होंने ऑब्वियसली ये शब्द हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, सो यस वो चीज़ उन्होंने की है, और उसी के बारे में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है कि कोई लोग बोलते हैं कि जानबूझ के हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
0: बचाओ क्या,

वेल, कितने टाइम बाद ये गाना सुन रहे हैं, आपके खातिर आपके खातिर। हिमेश रेशमिया, क्या वक्त था इनका, राइट? मतलब अमेजिंग यार, अमेजिंग। एक से बढ़कर एक गाने इन्होंने दिए हैं, एक से बढ़कर एक बैक टू बैक हिट भी दिए हैं, रिकॉर्ड होल्डर भी हैं और आज भी कायम है इस टेस्ट को लेके। काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, काफ़ी लोग हेट भी करते हैं, बट यस ऑफकोर्स जो इनका म्यूजिक है उनका कोई जवाब नहीं। एंड यस, होम सिक रेमेडीज के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आप जल्दी से मुझे मैसेज भेज दीजिए कुछ ऐसी चीज। एक तो मैसेज आ चुका है बट स्टिल आई वुड लव टू गेट सम मोर होम सिक रेमेडीज। कुछ ऐसी चीज जो आप मिस करते हैं आप मुझे बताइए, यहाँ पे 5599 पे कॉल भी करके मुझे बता सकते हैं, 0800-004-866 पे। बढ़िया, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था दैट आज के टाइम में थोड़ा सा और रिसर्च कर रहा हूँ, एक्चुअली ऑलमोस्ट न्यूज़ मेरे हाथ में है, बट सुशांत सिंह राजपूत के केस का जो है पर्चा फिर से खुल रहा है। एक्चुअली उनका केस नहीं, उनसे ठीक कुछ दिनों पहले, आई वुड से हफ्ते भर पहले या फिर 8 दिन पहले, उनकी जो एक्स मैनेजर थी वो भी, उनकी भी डेथ हो थी। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि उन्होंने शायद, जो बताया जा रहा है कि उन्होंने जो किया है रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन वो नहीं किया है और उनको किसी ने करवाया है। ऑब्वियसली मैं वर्ड नहीं ले सकता बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू से दैट वर्ड हियर और एनी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बेसिकली। सो वो केस फाइनली इंडिया के CBI ने, उन्होंने फिर से ओपन करने को कहा है और इस पर कुछ केसेस भी सामने आए हैं और सबसे ऊपर नाम जो है आदित्य ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के एक्स CM के बेटे भी रहे हैं, डीनो मोरिया, जो कि आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा बॉलीवुड के, और दो और हैं उसमें नाम, काफ़ी टोटल 17 नाम बताए जा रहे हैं जिन पे FIR दर्ज की गई है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि यार क्यों, कैसे, आई मीन अगर ये अभी वाली बात सही है तो 6 साल पहले क्यों वो बोल दिया गया कि ये ऐसा है एंड इट वॉज डन बाय हर ओनली, और अगर तब की बात सही है तो आज फिर से ये क्यों खुल रहा है। सो इसके बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे, मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। बट डू हिट द टेक्स्ट बटन टू मी सेइंग दैट इफ यू रियली मिस सुशांत सिंह राजपूत मूवी एंड ऑल, एज आई सेड लाइक आई एक्चुअली मिस, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फ्यूचर का किंग बनने के लायक था, लायक थे, बट ऑब्वियसली अब हमारे बीच नहीं रहे। बट आप बने रहिए, एक मैसेज आप पढ़ लेते फटाफट रिगार्डिंग होम सिक रेमेडीज के। ये कहते हैं, क्योरा केतन, यस्टरडे आई हैड अ टाइनी लीकिंग टैप इन माई किचन फ्लैट, आई कॉल्ड लोकल प्लम्बर एंड, नहीं ये तो कल वाले ही है, आई थिंक वी जस्ट, आई एम जस्ट रीडिंग द सेम मैसेज अगेन, लेट मी जस्ट रिफ्रेश अगेन, आई थिंक देयर यू गो। ओह वाओ, और भी मैसेजेस आ रहे हैं, उन्हें भी मैं पढ़ूंगा, बट अभी हाल फिलहाल ये मैसेज पढ़ लेते हैं जो मेरे पास आया है। एक मैसेज आया कि वी लव सुशांत सिंह राजपूत, अरे क्या बात है, वेरी नाइस। Kira Ketan, we had an official shared lunch at my Auckland workplace today and everyone brought cold quinoa salad. ये क्या होता है? Good thing to find out actually. आज का मेरा homework यही है, quinoa salad. और ये बनता कैसे है, मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे को समझ में आ गया तो मैं आपको बताऊँगा कैसे बनता है, बट अगर यहाँ पे किसी को पता है तो मुझे बताइए, how is it? Do you enjoy or not? Store brought sushi. Of course, आप भी बता सकते हैं हर्ष भाई, जो जिन्होंने मुझे मैसेज किया अभी, and crackers with dip. Everyone said politely, taking tiny portion and eating in relative silence. Over here, back home, any food sharing events was a full of blown fest. Tables overflowing with hot curries, biryani, dal puri, with people constantly forcing you to take extra serving and laughing at the top of their lungs. Standing there, chewing on dry crackers while staring at a silent break room made me so homesick for our warm, loud food sharing culture. ये इन्होंने बताया है, ये इनकी दुविधा है। हर्ष भाई, क्या बोलूँ मैं, आई मीन
ये चीज मैंने यहाँ पे भी अटेंड करी है, बट आई नेवर केम अक्रॉस टू सी समथिंग लाइक दिस. मुझे तो मोस्टली यू नो इट वाज अ हैपनिंग प्लेस ऑलवेज, ये तो हुआ है. बट इस कोल्ड सैलेड कल्चर को बदलना आपके हाथ में है. आज का जो होमसिक रेमेडीज आपने बताया है, अगली बार जब भी ऑफिस में शेयर्ड लंच हो तो आप चुपचाप डर कर सैलेड मत ले जाओ घर. सॉरी माय बैड, किसी का मैसेज आया, मैं पढ़ता हूँ उसके. लेकिन यस, यहाँ पे मैं फटाफट का मैसेज, मैं इनका जवाब देता हूँ. सो गरम घर से गर्मा गर्म समोसे हो गया, या फिर अनियन पकौड़ाज, या एक बड़ा कंटेनर बटर चिकन या वेज बिरयानी बना कर ले जाओ. एंड ट्रस्ट मी, जब आपकी डिश की जो खुशबू है पूरे लंच रूम में फैलेगी ना, तो आपके कीवी और इंटरनेशनल कॉलेजेस, सॉरी कलीग्स, क्या पढ़ रहा हूँ, जो उनके कलीग्स हैं, क्रैकर्स भूल सकते हैं, और आपके जो आप जो सर्व करने वाले जैसे समोसे और ये सब हो गया, उस पर सचमुच टूट पड़ेंगे. एंड ऑफकोर्स दे गोना आस्क, बिकॉज हम यहाँ पे भी करते हैं, लाइक व्हेनेवर वी गेट द समोसास ऑल ओवर सराउंडिंग्स ओवर हियर एट मीडिया वर्क्स, हम के डेस्क के आसपास वाले सब ऐसे देखते हैं जैसे कि ओहो, मतलब खाना देखते ना वैसे उस टाइप का. सो ट्राई दिस एंड लेट अस नो व्हाट यू गेट बैक फ्रॉम देम, आई मीन एज एक्सप्रेशन. बट इन्होंने मुझे बताया है, करेक्ट किया है, क्विनोआ इज प्रोनाउंस एज कीन ओ कीनवा है. तो स्पेलिंग चेक करो यार, ये क्या है यार, मतलब जिन मतलब सही में यार, जो भी बोलता है ये कि भाई इंग्लिश फनी लैंग्वेज है, एक्चुअली मुझे लगता है हाँ यार ये मतलब फनी नहीं, जोकिंग लैंग्वेज है. सिंपल सा है भाई, कीनवा है तो कीनवा ही लिखो ना. एक्चुअली ना इससे मुझे याद आया, एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने सिंप्लीफाई कर दी इंग्लिश को, और वहाँ पे जो आपको लगता है ना कि ये स्पेलिंग होगी वो वैसी ही करते हैं. दैट मीन्स वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, कोई उनमें साइलेंट वर्ड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. डू यू रिमेंबर व्हाट कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट? आप मुझे इसका जवाब दीजिए 555 99 पे.

0: Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIA Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें. नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल हीलो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइब 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all-time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
2: हर हैवान इंसान नहीं होता पर हर इंसान हैवान बन सकता है
3: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है बेवकूफ होना
2: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी
4: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम
3: ये आखिरी
2: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC
5: Have you heard the news? Powerball has changed. There are now 14 Powerballs, meaning bigger prizes plus more winners with a brand new Division 8 cash prize. Imagine winning $5 million this Wednesday. Get your Powerball ticket in-store or online.
6: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
7: Lunchbox with Ketan.
8: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
9: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

What a song, हम नहीं सुधरेंगे, अरमान मलिक की आवाज में आपने ये सुना है। उनके भाई आए थे बिग बॉस में, लास्ट वाले सीजन में। अभी नया बिग बॉस शुरू हो रहा है और कौन कौन देख रहा है बिग बॉस? Well, मैंने अभी तक शुरू तो नहीं किया है, बट आई फील लाइक वॉचिंग इट। Is it good to watch now? I mean, do you think that the Big Boss right now is entertaining? कुछ ऐसा हो रहा है that worth watching? क्योंकि last time of course हमने, मैंने, सैंडी ने, रुजबे ने देखना इसलिए शुरू किया because of अरमान मलिक के बड़े भाई जो कंपोजर भी हैं और गाते भी हैं, काफ़ी शोज किए हैं। एंड इस बार काजी काफ़ी फेवरेट लग रहे मुझे, काफ़ी लोगों के, काफ़ी मेरे को रील्स उनकी दिखती है। बिकॉज इफ़ समवन हु डजंट नो अबाउट हु इज़ काजी, लेट मी पुट सम लाइट ऑन दिस। काजी बेसिकली मेरे ख्याल से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ही वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, जो लाइक यू नो अपार्ट फ्रॉम दूरदर्शन एंड ऑल, ऑफ कोर्स उस टाइम पे आता था कॉम्पिटिशन, लेकिन एक कुछ सालों बाद जो प्रॉपर रियलिटी शो मेरी जहन में, तो वो थे फेम गुरुकुल जो थे, वो कंपटीशन था और उसमें काजी ने जीता था ये कंपटीशन। एंड टू गिव यू मोर इंटरेस्टिंग खबर इसके बारे में, इस कंपटीशन के बारे में, अरिजीत सिंह भी इस कंटेस्टेंट थे इस कंपटीशन के, जी हाँ, बट वो जीत नहीं पाया। आई थिंक ही वाज सिक्स्थ और सेवन्थ पोजीशन की रही थी और काजी जीते थे। और काजी इसलिए भी फेमस थे बिकॉज ऑफ उनकी हेयर स्टाइल, तब से लंबे और आज भी लंबे। द थिंग इज, तब बहुत ज़्यादा पतले थे और अभी ही इज़ लाइक यू नो हाउ ही लुक्स, सो यू कैन टेल वेदर ही इज़ ओके और नॉट। बट येस, उसके अलावा अगर आपका कोई फेवरेट है तो हमें बताइए 5599 पे। बट अभी की आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो ग्लेनब्रुक स्टील प्रोडक्शन आज के दिन शुरू हुआ था नियर वायुकू, साउथ ऑफ ऑकलैंड में। पहली बार लोकल आयरन सैंड से आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन है वो शुरू हुआ था। और ये आयरन सैंड टाइटेनो मैग्नेटाइट था जो न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के वेस्टर्न कोस्ट पर मिला था। 1950s में गवर्नमेंट ने लोकल रिसोर्सेज से स्टील बनाने की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की शुरुआत की थी। एंड 1959 में इन्वेस्टिगेशन कंपनी बनी। 1965 में न्यूजीलैंड स्टील लिमिटेड एस्टैब्लिश हुआ और 1968 में ग्लेनब्रुक भी मिल ओपन हुआ। सीएस ग्लेनब्रुक की खास बात यह है कि टाइटेनो मैग्नेटाइट सैंड को आयरन सोर्स के रूप में यूज करने वाला दुनिया का ओनली स्टील मैन्युफैक्चरर है।

0: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे हम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।

0: मेरी आवाज गूंजेगी। चटनी शॉट्स।
1: वेलकम बैक। वेल ये रही कहानी एक्ट पार्टी। कहानी नहीं एक्चुअली लेटेस्ट खबर है। ACT पार्टी ने प्रपोज किया है कि एडल्ट मिनिमम वेज को 3 साल तक फ्रीज किया जाएगा। अभी न्यूजीलैंड का जो मिनिमम वेज है वो करीबन 23.95 है पर आर। अंडर 20 वर्कर्स के लिए एक न्यू ट्रेनिंग वेज भी होगा जहाँ पे बिजनेसेस उन्हें मिनिमम वेज का 60% प्रीमियम 1 साल तक पे कर सकेंगे। एक्ट का कहना है कि वेज इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा फास्ट बढ़े हैं जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस पर कॉस्ट प्रेशर आता है। पार्टी ने अकॉर्डिंग फ्रीज से बिजनेस को हायरिंग वेजेस और इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उसका प्लान करना ईजियर होगा और पर्सनल ग्रीवेंस रूल्स जो है उसको भी काफ़ी टाइट करेंगे और इंक्लूडिंग कंप्लायंस फाइल करने की जो टाइम लिमिट है उसको भी रिड्यूस करने वाले हैं। सिंपल टेकवे, एक्ट का फोकस जो है वो बिजनेस कॉस्ट पर काम करना और जॉब्स क्रिएट करना है लेकिन वर्कर्स के लिए वेज ग्रोथ टेम्पररी रुक सकती है। तो ये तो थी अभी की लेटेस्ट खबर। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया चीज़ इससे रिलेटेड है वो है एक्ट पार्टी लीडर डेविड सिमोर ज्वाइन करने वाले हैं थर्सडे को, यानी कि 5 बजे परसों। आज ट्यूसडे है तो परसों आपको डेविड सिमोर यहाँ पे मिलेंगे बात करते हुए रुजबेन सैंडी से, जो सवाल करेंगे आपके जरिए, यानी कि आप जो भी आपके जहन में सवाल है आप 5599 पे ड्राइव लिख के भेज दीजिए या फिर तभी भेजना चाहते हो तब भी भेज सकते हैं, बट आई वुड से कि पहले ही भेज देना वुड बी सो ग्रेट। एंड यस, उसके बाद ऑफ कोर्स जो आपके सवाल है वो सैंडी रुजबे उनसे पूछने वाले। सो इफ यू हैव एनीथिंग इन योर हेड फील फ्री टू डू सो। एंड यस, याद रखिए कैलेंडर में डाल दीजिए थर्सडे 5 बजे। ऑटियोरा स्पीक्स योर क्वेश्चन देयर आंसर।
2: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर क्या हालचाल, आज 17 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 9 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, 6:12 पे होगा आज का सनसेट। ओवरऑल वैसे तो वार्म ही है बट कभी कभी बारिश हो सकती है, सन साउथ वेस्टली भी बता रहा है।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स, मेरा नाम केतन है, आप बने रहिए। इस आर में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, शुरुआत करेंगे हम कुछ गानों से और गाने का नाम है यारवे, अरिजीत सिंह की आवाज में आप ये गाना एंजॉय करेंगे बढ़िया से इस आर में। उसके अलावा लंच टाइम रेंट लाइन की भी बातें होगी, लेटेस्ट खबर की भी बात होगी और यस एक आर्टिकल जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, तो आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, आप बस बने रहिए सुनते रहिए आज का मेरा शो लंच बॉक्स इट इज, एंड यू आर लिसनिंग टू मी थ्रू इधर 104.2 FM या फिर शो ऐप के जरिए।
0: बचाओ क्या,

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. Well, yes, as you all know, ki aap ban rahi lunchtime rent line ke liye, please, aap mujhe 5599 pe text bhej dijiye. वैसे मैं कहूंगा कि आप मुझे कॉल करिए 0800-00486 पे. नॉट नाउ, थोड़ी देर में आप मुझे कॉल करिए और बताइए कुछ ऐसी बातें जो सचमुच आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट की हो इन गिने दिनों में. यू नो, यू ऑलवेज डू टेक्स्ट मी, बट ऑफ कोर्स आई वांट टू टॉक टू समवन. सो फील फ्री टू कॉल मी इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स.
1: लंचबॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो.
1: और कानों में जस

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
5: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
4: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
6: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
7: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
8: Farmers Manchester Mania sale is now on with an amazing 50% off duvet covers, sheets, duvet inners, pillows and more. 50% off towels by top brands like Sheridan, plus 50% off sleepyhead beds. Shop Farmers Manchester Mania. Conditions and exclusions apply.
9: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
10: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
11: Lunchbox with Ketan.
12: Mujhe pasand hai ladka.
11: Hum. Lunchtime Rant Line.
13: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं, कुछ मैसेजेस मिले हैं। आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और शेयर करिए कुछ ऐसी रेंट वाली बातें जो सचमुच आपको बहुत ज्यादा इरिटेट किया हो, आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे। सॉरी, कॉल करिए 0800-004-866 पे, 5599 पे तो मैसेज आ चुके हैं मुझे। वेल, पहले हैं राकेश भाई, उन्होंने मैसेज किया है। हाय केतन, आई एम राकेश फ्रॉम मनुकाओ। माय रेंट इज अबाउट पीपल हु लीव द सुपरमार्केट ट्रॉली नेक्स्ट टू देयर कार इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट। द ट्रॉली बे वाज लिटरली अ फ्यू स्टेप्स अवे बट दे जस्ट लेफ्ट इट देयर। व्हाई इज इट सो हार्ड टू पुट इट बैक। यार ये बहुत सही है, पता है रीजन इज कि ट्रॉली बैग जो है ना इतना डैमेज कर सकता है, यू वुडंट नो। आई मीन लाइक बीच रास्ते में रोकना इज वेरी रिस्की फॉर एनीवन, क्योंकि यू ऑल नो दैट विंड इतनी ज़्यादा होती है एंड यू आप सीधे चल रहे हो और पीछे से ट्रॉली ऐसे, क्योंकि उसके पहिए हैं, लाइक देयर इज नो लॉक, राइट? तो वो ऐसे उड़ते उड़ते एकदम शायद हो सकता है आपको टक्कर मार दे या फिर आपका आपकी कार खड़ी उसको डैमेज कर दे, उसको बहुत ही गंदी तरीके से हिट करे एंड यू विल एंड अप टू यू नो ब्रेक योर इंश्योरेंस वाला सीन। तो इसी वजह से फॉर एवरी वन डजेंट मैटर, आपके पास कार हो नहीं हो, आपको डेफिनेटली सेफ जगह उसे पहुंचाना चाहिए। इट इज सेफ्टी फॉर अस एज वेल, लाइक यू नो पीपल हु गो उनको भी हिट कर सकती है। एंड एक ने मैसेज किया है, आई एम सिमरन फ्रॉम फ्लैटबुश। आई एम रेंटिंग अबाउट पीपल हु प्ले वीडियोज लाउडली ऑन देयर फोन इन पब्लिक प्लेसेस। दैट इज सो ट्रू यार, ये बहुत होता है। बट सीधी सी बात है यार, उनको बोल सकते हो कि यार ब्रो इफ़ यू डोंट माइंड, अदर पोलाइट वे में कि कह सकते हो कि यार इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज़ ब्रिंग डाउन द वॉल्यूम। और सचमुच वो भी बंदा अगर सचमुच समझेगा तो या डेफिनेटली दे विल डू इट। बट एक कॉल आ रहा है, कॉल पे बात करते हैं। हेलो,
14: हाँ
13: सॉरी,
14: can I get the phone number for this your advertiser called NZBMI?
13: Right, I will pass it to one of our staff member and they will do it, right?
14: It says Render BMI, but I don't understand what Render BMI is.
13: I'll double check and I'll get back to you, right?
14: Are you going to send me the...
13: Yeah, if you can...
14: Call me now?
13: Yeah, yeah. If you... No, I'm actually doing the show right now. But if you can just text me, like, what is your code on 5599? So, straightly, I'll take the photo and I'll ask my team to respond to you, right? So, you just text me, like, how you called me on this number. So, you text me regarding your question on 5599. So, they will automatically receive your request. Right?
14: Okay.
13: Perfect, perfect. Thank you. And what is your name, sorry?
14: Prakash.
13: Prakash. ठीक है प्रकाश आप ये मुझे भेज दीजिए 5599 पे एंड देन आई विल पास देम आफ्टर द शो राइट राइट थैंक यू बाय वेल यस ये थी बातें और आप कंटिन्यू करते रहिए ऐसे मैसेजेस आप बस बने रहिए अभी और भी बातें लेके आऊंगा बट यस डू रिमेंबर मेरे को सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपको बताना है बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उस बात का
11: लंच के मंच पे Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक वेल यस बहुत बढ़िया रिस्पांस भी आए हैं कुछ मैसेजेस आए हैं आज के इस रेंट लाइन के लिए सो यस पहला मैसेज आया था फॉर फ्रॉम वन ऑफ माय लिसनर वो कहते हैं हाय माय रेंट इज टू फॉर दोज हु डजंट यूज डिओड्रेंट इन देयर अंडरआर्म्स रियली वेरी स्टिंकी स्मेल दैट इज सो ट्रू यार होता है बट क्यों नहीं करते हैं ये पूछ भी नहीं सकते रीज़न इज काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाता है लाइक खुद पूछने वाले भी अनलेस अगर आपका दोस्त है जिसके जिसको आप मुंह पे बोल सकते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बात अलग है अनलेस कोई और आपकी फैमिली मेंबर भी है तो बट यस विदाउट मैंशनिंग द नेम यू कैन ऑफकोर्स अगर आप ग्रुप में हैं कुछ भी हैं तो विदाउट मैंशनिंग आप आराम से बात कर सकते हैं बोल सकते हैं भाई आई डोंट वांट टू टेक द नेम बट यस प्लीज़ यूज़ डिओड्रेंट ये ऐसा बोल सकते हो बिकॉज अनहाइजेनिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है नॉट जस्ट कि भाई स्मेल आ रही है ऐसा कुछ है बट बहुत ही अनहाइजेनिक भी हो जाता है बिकॉज यू नेवर नो दैट पर्सन इज़ लाइक यू नो शेकिंग हैंड्स विथ यू और एंड दिस इज नेचुरल इट इज़ नथिंग टू फील शेम ऑफ राइट सेकेंड मैसेज आया है केतन माई पॉइंट इज वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट कमिंग विथ शूज इन साइड होम इज़ नॉट गुड स्पेशली वेन वी पुट साइन आउटसाइड टू प्लीज रिमूव द शूज बिफोर कम due to infants in home but people don't understand that is so true but actually I would say Sunil bhai not just about having the poster outside or not the note outside or not this is very good habit to keep your shoes outside because you have no idea how much or how many you know bad bacteria you are carrying and you just enter to someone's house without wearing the shoes and you just enter without knowing ki samne wala banda You know, they have the kids or not. Or even if kids nahi bhi hai, hum bhi baithte hai. We also sit down. We also live in that place. So we should also keep in a track. So I would highly tell. Because even main jaise shoot pe jata hu real estate ka, to wahan pe bhi main aise hi karta hu. When I'm going for a shoot. So I always try my best and not to have the shoes wearing. And go inside the house. I always make sure that I open the shoes. Unless agar wo khud mujhe bolte ki, nah, don't worry. Just bring it in. तो मैं पहन लेता हूँ बट आई ऑलवेज मेक श्योर दैट बिना बोले ही मैं उतार देता हूँ सो दे नो क्योंकि मुझे पता अगर कोई मेरे घर पे भी आएगा इस तरह से तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा सो या इट्स लाइक दैट बट यस पीपल रियली नीड टू थिंक एंड वर्क ऑन इट एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट भले बच्चा हो नहीं हो अगर कोई और भी इंसान रहता है भले वो एडल्ट हो इट इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस टू कीप योर शूज़ आउटसाइड

0: चलिए अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। टॉम फिलिप केस की इंक्वायरी रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। रिपोर्ट्स का मेन पॉइंट है कि फिलिप्स के बच्चों को सालों तक जंगल में छुपाकर रखना पड़ा, जिसकी वजह से उनका नॉर्मल और हैप्पी चाइल्डहुड काफी बैडली इफेक्ट हुआ है। अथॉरिटीज को फैमिली और बच्चों के सिचुएशन को लेकर पहले वार्निंग मिली थी और बाद में मेकिंग में प्रॉब्लम्स भी थी। ऑफिशियल्स ने बच्चों के एक्सपीरियंस के लिए डीप रिग्रेट अपोलॉजी एक्सप्रेस की है और रिपोर्ट्स का अगर फोकस देखें तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या एजेंसी अर्लियर और बेटर एक्शंस ले सकती है या नहीं। ओवरऑल केस को एक मेजर चाइल्ड सेफ्टी फेलर के रूप में देखा जा रहा है, जो कि नॉट वेरी गुड फॉर किड्स। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिस्टम है वो उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो काफ़ी इफेक्टिव नहीं हो पाया है और इसका इमोशनल और डेवलपमेंट इम्पैक्ट उनकी चाइल्डहुड पर पड़ सकता है।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: हम आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: You filled the pinata before I sealed it, right?
5: No, you did.
4: Oh, I thought you did.
6: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
7: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
8: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
9: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
8: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
11: दिस इज योर बिजनेस, दिस इज योर बिजनेस सुपरचार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ जीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom. Supercharge your business today with the help of Xero.
12: Lunchbox with Ketan.
13: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
12: इसके पीछे
13: हम
12: लंच के

0: μας κουνζίδι.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. और ये रही जो हम इस खबर के लिए काफी टाइम से वेट कर रहे थे. वेल, अभी लेटेस्ट खबर के हिसाब से इंडिया के लोकल न्यूज पेपर और न्यूज आर्टिकल की तरफ से ये खबर रही कि सीबीआई ने आदित्य ठाकरे, दिनो मोरिया, रिया चक्रवर्ती और कुछ और टोटल 17 लोग हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन के स्कोप में रखा है FIR में. डैश यार, क्यों मेरे को ऑनेस्टली पता, ये नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे बट नहीं ले सकता. बेसिकली FIR में M नाम से जो इंसिडेंट होता है वो यहाँ पे उसके बेस पे केस हुआ है. देन GR भी पता नहीं यार, आई डोंट नो इफ वी आर अलाउड टू डू सो और नॉट, बट GR भी क्या है, प्लस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने जैसे एलिगेशंस जो है इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स मेंशन है. दिशा सालियान जो कि एक्स मैनेजर थी और ठीक एक हफ्ते पहले उनकी भी डेथ हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से पहले 8 जून 2020 को मुंबई में हुई थी. सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के कुछ दिन पहले ही पहले मुंबई पुलिस ने इसे एस नाम से जो चीज़ होती वो डिक्लेयर कर दिया था. और दिशा के फादर ने एलिगेशन लगाए थे कि उनकी डॉटर के साथ सीरियस क्राइम हुआ है जिसे कवर अप किया जा रहा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम सितंबर 2026 में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर करने का जो ऑर्डर था वो दे दिया है. सो नाउ दिस माइट बी अ गुड न्यूज फॉर द पीपल हु वर ऑल्सो वेटिंग बहुत ही बेसब्री से अबाउट द रिजल्ट या फिर जो भी हुआ है. Not just their family, but yes, I think majority of people in India are waiting कि भाई क्या हुआ इनके साथ. अगर कुछ गलत हुआ है तो सज़ा तो definitely मिलनी चाहिए.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. मेरा नाम केतन है और आप बस बने रहिए अंटिल 3. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो एंड थैंक यू सो मच फॉर टू दोज हु आर लिसनिंग टू मी सिंस 12. 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद सैंडी जुड़ेंगी फॉर द कॉफी ब्रेक एंड उसके बाद रुज़बे उनका साथ देंगे ड्राइव शो. पर यस, इस आर में भी आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा, काफ़ी कुछ यू नो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा फ्रॉम माय साइड. एक स्पोर्ट्स की बातें भी बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा मैं बात करूंगा वर्ल्ड सर्फ लीग जो है उसके बारे में, क्या अपडेट है वर्ल्ड सर्फ लीग. यू मस्ट बी वेरी वेरी इंटरेस्ट इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा. बट यस, ऑल ब्लैक्स टू मिस 2 key लूज फॉरवर्ड फॉर ब्लेडिस्लो कप सीरीज. कौन है वो, उसके बारे में भी बात होगी. तो आप बस बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो ओनली ऑन हम रेडियो, यानी कि हम .roa.nz की वेबसाइट, या फिर आप रोआ के जरिए तो डेफिनेटली आप सुने, रोआ डाउनलोड कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है टू डाउनलोड इट. बट यस, काफ़ी लोग बोलते हैं भाई डाउनलोड के पैसे नहीं है, लेकिन इंटरनेट के तो पैसे लग रहे हैं ना सुनने के लिए. सो लेट मी मेक इट क्लियर कि आप एक स्टोरी जो डालते हैं उसका जितना डेटा यूज़ होता है ना, 20 सेकंड का मान लो फॉर एग्जांपल, 20 सेकंड का जो स्टोरी आप डालते हैं ऑन एन एवरेज, उसका डेटा जितना यूज होता है इज इक्विवेलेंट टू लिसनिंग टू अस थ्रू रोवा ऐप. बिकॉज रोवा इसलिए बोलते हैं बिकॉज आप देखिए यहां से आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे रेडियो से, राइट, फ्रीक्वेंसी से 104.2 FM के जरिए. बट इफ यू स्टार्ट यूजिंग रोवा ऐप तो वहां पे यू कैन वाइल लिसनिंग यू कैन चेक आउट अदर थिंग्स एज वेल. काफी कॉम्पिटिशन आते रहते हैं एंड काफी इंफॉर्मेटिव बातें भी होती है, कुछ हमारे पॉडकास्ट हो गया या फिर आर्टिकल्स हो गए, ये सारी चीजें वहां पे आती रहती है. तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बस ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं रोवा ऐप के थ्रू. बचाओ क्या,
1: यू के बड़ा कोरी भाई.

0: सूचित किया जाता है सतीश चंद शर्मिला शोभना और नीता के पिता सावित्री के पति सुरेन चंद की मृत्यु वाइटाकरी हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार वेनसडे 16 सितंबर को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0273646393 पर कॉल कर सकते हैं। सतीश चंद शर्मिला शोभना और नीता के पिता सावित्री के पति सुरेन चंद की मृत्यु वाइटाकरे हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार वेनसडे 16 सितंबर को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0273646393 पर कॉल कर सकते हैं। बिनेश समर आत्माराम स्नेहलता और बेला सिंह की माँ उषा समर की सास भूतपूर्व लोकाला बे सुआ निवासी स्वर्गीय राम समर की पत्नी जसोदा कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार वेनसडे दोपहर 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बिनेश को कॉल करें 0214963321 पे। बिनेश समर आत्माराम स्नेहलता और बेला सिंह की माँ उषा समर की सास भूतपूर्व लोकाला बे सुआ निवासी स्वर्गीय राम समर की पत्नी जसोदा समर की
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
5: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
6: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है।
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
9: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein, plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes, or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
10: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $299. Iceland fridge freezer, just $299. Midea washing machine, just $299. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
11: It's Woolworths $5 Frenzy. Fill the trolley with Lucifora mandarins, just $5 a kg. And Wattie's baked beans or spaghetti, 420 gram 3-pack, just $5 each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रिप्ले।
3: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं अभी की कुछ बढ़िया बातें। जी हाँ, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं यहाँ पे हमारे पास। ऑफ कोर्स आप रोआ ऐप के जरिए भी सुन सकते हैं, बट यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी करना है हमें 5599 अगर इनमें से कुछ भी आप सुनना चाहते हैं। तो आजकल की लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है दैट यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट सेकेंड। एंड ये सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है दैट यू वर्किंग सो हार्ड, यू सेविंग द मनी फॉर योर फ्यूचर एंड ऑफ कोर्स फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स, एवरीथिंग, एंड सडनली आपको कुछ हो जाए। सो द क्वेश्चन इज कि भाई अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो मेरे पैसे का या फिर जो मेरा मेरे जो एसेट्स हैं उसका क्या होगा। सो ये सारी चीज़ों के लिए डेफिनेटली आपको ना एक बहुत ही बढ़िया जो इंटरव्यू जो है वो हुआ है उसे भी आप सुन सकते हैं। तो कैसे, क्या प्रोसेस है और किस अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आप सुनिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे ये सर्च कर सकते हैं रोआ ऐप पे या फिर स्पॉटिफाई पे। बहुत ही बढ़िया कंटेंट वो डालते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक लिंक पहुंच जाए आपके फ़ोन में तो सिंपल सा टाइप कीजिए ड्राइव DRIVE और मुझे 5599 पे भेज दीजिए। बिकॉज इस इंटरव्यू में इस बात पे आए थे तान्या पिंटो जो कि सीनियर ट्रस्टी एंड पब्लिक ट्रस्ट है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे इन चीज़ों को आप अच्छे से सेटल कर सकते हैं एंड हैसल फ्री लाइफ जी सकते हैं। सो एटलीस्ट यू नो कि कल को कुछ भी हुआ तो एटलीस्ट दिस इज़ वेयर द मनी गोना गो, क्योंकि मोस्टली सबको लगता है कि ऑटोमेटिकली ये मेरी नेक्स्ट फैमिली को मिल जाएगा या जो भी है, मोस्टली ऐसा होता नहीं है। सो ये सारी जो कन्फ्यूजन है, जो यू नो कंसर्न्स जो भी हैं आपके, ये सारी चीज़ें आपके ना इस पॉडकास्ट में इस बात में पता पड़ जाएंगे। एंड उसके साथ ही बियॉन्ड द डेप्थ, व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मीन, आपकी जो सक्सेस है उसको आप किस तराजू में तोलते हैं, इसका जो आंसर है सबकी अलग होती है, सबका अलग जवाब होता है इसमें, बट इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है विजयन पूजा ने उनके शो में। आप उसे सुनना चाहते हैं तो BF लिख के 5599 पे आप भेज दीजिए। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ आप सुन सकते हैं, आप मुझे TM बोले तो ट्रेंड मेकर्स, ये इनिशियल है TM, इसे 5599 पे भेज दीजिए ताकि आपको एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिकल पॉडकास्ट सुनने को मिले। ट्रेंड मेकर्स बहुत ही पावर पैक्ड म्यूजिकल जर्नी है जो आपको यू नो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव और यू नो एनीथिंग यू आर डूइंग, परफेक्ट पोइटिक लिरिसिस्ट या फिर विजनरी कंपोजर अगर आपको पसंद है, आइकॉनिक सिंगर्स, ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी आपको। तो सिंपल TM लिखिए, मुझे 5599 पे भेज दीजिए। जी हाँ, एंड यस देयर आर प्लेंटी ऑफ मोर थिंग्स। आपको कीर्तन के बारे में भी एक अपडेट दूंगा थोड़ी देर में, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरा शो लंच बॉक्स शो।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

स्वागत करते हैं आपका आज के इस लंच बॉक्स शो में फिर से। चलिए फटाफट आज की स्पोर्ट्स की खबर पढ़ लेते हैं। दो स्पोर्ट्स जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था वैसा ही हम करेंगे। वेल गेस, ये जो स्पोर्ट्स की खबर है पहली तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि एक लीग है वर्ल्ड ऑफ लीग जो कि फिर से आने वाला है रेगलिन, रिटर्न टू रेगलिन इन 2027। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू रेगलिन? मैं गया हूँ यार, बहुत ही खूबसूरत जगह।

ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कैरिसा मुरे टुक, जो कि इस वुमेन्स इवेंट दिस ईयर को संभालने वाले हैं। तो लेट्स सी यार, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग भी होगा। और रेगलिन में ये चीज देखने को मिलेगी। रेगलिन फॉल है, राइट? हैव यू बीन देयर? बताइए मुझे आप 5599 पे। बट एक और चीज है ऑल ब्लैक्स, जो कि मैंने कहा था कि ऑल ब्लैक्स टू मिस टू की लूज फॉरवर्ड्स फॉर ब्लेडिस्लो कप सीरीज। और उनका नाम है जो कि वॉलबीज एट ईडन पार्क, ये होने वाला है 10 अक्टूबर को, वो होने वाला है प्ले देम इन सिडनी एंड वीक लेटर, जहाँ पे उन्होंने अटेंड किया था ट्रॉफी जो कि 2003 में अनाउंस हुई थी। सेविया हु इज डिसलोकेटेड, हु हैज डिसलोकेटेड हिज शोल्डर, जो कि लेट फर्स्ट हाफ में ये सीन हुआ था ऑल ब्लैक्स जहाँ पे हारी हुई थी। एंड उसके साथ साथ जेकबसन, वो भी इस कॉम्पिटिशन से बाहर होने वाले, टीम से बाहर होने वाले अनटिल दे फील ऑल राइट। उन्होंने हाल फिलहाल एल्बो टेंडन इंजरी जो है उसको फेस किया, यानी कि ही हैज बीन इंजर्ड बाय द टेंडन एल्बो। सो लेट्स सी, लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट एंड वी विश कि जो उनका रिप्लेसेबल होगा वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए और टीम को, जो न्यूजीलैंड की टीम है, उसे आगे पहुँचाए।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है, फिजी कीर्तन संग्रह में आपका जो सहयोग मिला उससे बहुत ही बढ़िया, यू नो, हमें इंस्पिरेशन मिली है और उसी वजह से, यू नो, काफ़ी सबसे पहले थैंकफुल भी हैं कि आपने इतना प्यार दिया। बट यस, हम कीर्तन संग्रह जो कि फ्राइडे 25th ऑफ सेप्टेम्बर को वैदिक सेंटर में होने वाली है रिकॉर्डिंग पापाटोरियो में, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके के जो शॉर्ट लिस्ट कलाकार हैं वो आएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एंड देन ऑफकोर्स दैट विल बी प्लेड ऑन रोवा ऐप। जी हाँ, हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप सुन सकेंगे। So yes, आपका काम क्या है? आपका काम यह है, आप हमारी टीम, हम टीम के साथ ज्वाइन करिए इस बढ़िया परफेक्ट इवेंट के लिए। एंट्री कंप्लीटली फ्री है।

0: Refreshment and Kawa will be on sale, and you will also have the opportunity to win many prizes. What a wonderful event which is going to happen on 25th of September at Vedic Center. Lunchbox with Ketan. Mujhe pasand hai laga.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This
4: record,
3: is my
4: I
3: fancy
4: say.
3: English. That's a very.
4: अरे होता है सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m. In business, relationships matter. Respect matters. And so does keeping your word. As a business owner, what do you do when customers won't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that the Indian community values trust, relationships, respect and keeping their word. With 20 years of debt recovery experience, they use respectful follow-up and mediation to recover your B2B debts. Want your invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment fee.
6: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है. अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. दायरा स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन.
7: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ.
8: और मैं नहीं करता.
6: दायरा रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर.
8: वो कल ट्रिप केस है, उनकी स्टोरी ओवर है.
9: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है.
6: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग टीबीसी.
1: Non-stop Bollywood.
10: पूछो क्या करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
11: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
4: इसके पीछे
1: हम. TikTok.
0: एक नया आर्टिकल आया है टिकटॉक के इस सेगमेंट में मैं जो पढ़ने वाला हूँ वो ये है कि एआई की रैपिड ग्रोथ ने एक और पुरानी डिबेट को फिर से सीरियस बना दिया है. क्या फ्यूचर में एआई ह्यूमन कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं? एंथ्रोपिक के सीईओ डेरियो एमोडी ने वार्निंग दी है कि एआई इंडस्ट्री को डेवलपमेंट की स्पीड स्लो डाउन करनी चाहिए ताकि सेफ्टी मेजर्स टेक्नोलॉजी के पेस के साथ कीप अप कर सकें. उन्हें अकॉर्डिंग अगले 6 से 12 महीने में एआई एजेंट्स की कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होगी कि वो इंटरनेट पर लार्ज स्केल कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं. कंसर्न सिर्फ एआई को एआई के आउट ऑफ कंट्रोल होने का नहीं है बल्कि पावरफुल एआई का साइबर अटैक्स, सर्विलियंस और बायोलॉजिकल वेपन्स रिसर्च जैसे हार्मफुल एक्टिविटीज भी उसमें मिसयूज हो सकते हैं. एंथ्रोपिक ने रिसेंटली कहा कि उन्होंने मेलिशियस यूज के कुछ अटेम्प्ट्स को ब्लॉक किए हैं. एआई सेफ्टी रिसर्चर्स का कहना है कि कंपनीज सुपर इंटेलिजेंट एआई डेवलप करने की रेस में है और सेफ्टी मेजर्स इतनी ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट डेवलप हो रही है. सो सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो एआई जितना पावरफुल हो रहा है उतना ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है कि क्या हम उससे सेफ्टी कंट्रोल करने के लिए रेडी है या नहीं, या इट विल गोइंग टू गो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द ह्यूमन हैंड.
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे बहुत ही बढ़िया रहा आज का दिन आपकी बातें और आपका साथ आप बने रहिए सैंडी विल बी ज्वाइनिंग शॉर्टली फॉर कॉफी ब्रेक एंड उसके बाद रोज में उनका साथ देंगे द ड्राइव शो तब तक के लिए मैं निकलता हूँ आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3 बाय आई लव यू एंड टेक केयर

0: Dear. Streaming on Rover. Hum. Time check.
1: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00 00 10.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
2: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. A report has laid bare the missed opportunities to find Tom Phillips' children sooner. The public inquiry details how the fugitive father was even caught on camera while asking a woman to jumpstart his car. At least two children were spotted inside the vehicle at the time. Police Commissioner Richard Chambers accepts it could have been handled better.
3: My staff were heading to deal with that in a timely way. They were diverted to deal with a family harm matter, and that is fair. But what didn't occur was the timely follow-up.
2: Chief Executive Amanda Malu says some of Oranga Tamariki's actions also fell short.
4: We have already made changes and we continue to do so. And this includes better information sharing with our colleagues at police.
2: A person is in a critical condition after a pedestrian was hit by a vehicle in Papamoa. A section of Palm Beach Boulevard is shut. Parliament has held a moment of silence for the death of Winston Peters' brother, James. Known as Jim, he was a New Zealand First MP from 2002 to 2005. Noah Wiley has won an Emmy this afternoon for his role in hospital drama The Pit. Others to collect statues include Matthew Rhys, who's made history by scooping two lead actor categories for The Beast in Me and Widow's Bay. To sport, Warriors prop Jackson Ford's ankle injury means he won't be in the matchday squad to play the Knights on Sunday evening. Centre Leka Halasima is highly doubtful. Wing Dallin Mateni Zalesniak is a chance to play. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And the Super Rugby Pacific competition next season will have more Sunday games. There will be 10, 6 more than last season, and a full competition round of 5 fixtures across the Easter weekend.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: मौसम के हालचाल मेड सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15 डिग्रीज और आज को नाइट 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज को ऑलमोस्ट फाइन है टिल थर्सडे. वीकेंड आने तक फ्राइडे को स्पेशली बारिश होने के चांसेस रहेंगे.
0: Of Bollywood.
6: World's best. Hamari good brands nahi hai.
0: Coffee break with Sandy.
5: 3:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में. और फिर रुजबे मेरे साथ यहाँ पे शामिल हो जाएगा ड्राइव शो में. सो कैसे हैं आप? वेल, अगर इस समय पर आप एमी अवार्ड्स इनको फॉलो कर रहे हैं, यार ये कॉमेडी सीरीज़ मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन ये लिस्ट देख के लगता है कि मुझे शायद देखनी पड़ेगी. एप्पल टीवी जिसके पास है तो उन्होंने इसको डेफिनेटली देखा होगा. विडोज़ बे इसका नाम है. ये एक्चुअली एक कॉमेडी शो है जिसने अभी अभी 14 अवार्ड्स जीते हैं. राइट नाउ एमी अवार्ड्स हुए हैं. 14 अवार्ड्स इस सीरीज़ ने जीते हैं, जिसमें बेस्ट कॉमेडी सीरीज़, बेस्ट एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, गेस्ट एक्ट्रेस, राइटिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, बेस्ट कास्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक कंपोजिशन, म्यूजिक सुपरविजन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, साउंड एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, ये सारी कैटेगरीज में ये जो सीरीज़ है ये अवार्ड लेके गई है, जिसका नाम है विडोज़ बे. डेफिनेटली मेरी लिस्ट में ये ऐड हो चुकी है. पता नहीं कैसे देखूँगी, बिकॉज दिस इज़ एप्पल टीवी प्रोडक्शन. एप्पल टीवी पर एक्चुअली में ये आती है. इट्स अ कॉमेडी हॉरर टीवी सीरीज़ एंड वन ऑफ माई फ्रेंड उसने देखी है और उसने ये बताया है कि इसमें बहुत जंप स्केयर्स होते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है, तो इससे जंप स्केयर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है. बट इट्स अ कॉमेडी हॉरर टीवी सीरीज़, डेफिनेटली इन माई लिस्ट नाउ. विडोज़ बे इसका नाम भी आप भी चेक कर सकते हैं. 14 अवार्ड्स, यार ये एक्चुअली में हिस्ट्री बन चुकी है, रिकॉर्ड बन चुका है फॉर द मोस्ट विन्स एवर फॉर अ सिंगल सीजन ऑफ अ कॉमेडी शो. सिंगल सीजन के लिए आज तक कोई भी कॉमेडी सीरीज इतने अवार्ड्स नहीं जीती है. वेल, और भी बहुत सारी डिटेल्स है एमी अवार्ड्स को लेके, कुछ और भी आपके साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी. आपका डे कैसा जा रहा है वो भी आप यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं. हाउ इज़ इट गोइंग सो फार विद यू? इट इज़ ट्यूजडे और आज 15th है. अगर आज आपका बर्थडे है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू.

3:15 हो चुके हैं। वैसे माओरी लैंग्वेज वीक भी है ये, इसके बारे में और भी हम 4 बजे के बाद वैसे यहाँ पे बातें करने वाले हैं। आपको पता है कॉफ़ी ब्रेक इस शो का नाम है। वैसे कॉफ़ी को माओरी में क्या बोला जाता है, लेट्स सी कितने लोगों को पता है। अगर आपको लिखना हो कॉफ़ी को माओरी लैंग्वेज में तो आप कैसे लिखेंगे, 5599 पर मैसेज करके यहाँ पर बताइएगा। कॉफ़ी को अगर आपको कॉफ़ी ऑर्डर करनी है, कॉफ़ी ब्रेक सुन रहे हैं आप यहाँ पे, कॉफ़ी को माओरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। अगर आपको लिखना आता है कैसे लिखते हैं उसको, तो वो भी लिख के भेजिए। 5599 इज़ अ नंबर जहाँ पे आप लिख के भेज सकते हैं। थोड़ी देर में इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
2: It's normal to feel low sometimes, just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
3: 3, 2, 1, rush!
4: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
5: A Kogan stick vac is just like a stick vac. Both stick vacs do very similar stick vac things, but with slightly different little logos, colors, and adapters. One's a Kogan MX-12 Pro cordless stick vac. The other stick vac has a price that sucks. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
6: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz. It.

3:19 हो चुके हैं और मैंने आपसे पूछा था कि कॉफी को माओरी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। इट इज़ अ माओरी लैंग्वेज वीक। और जिस धरती पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे आए हैं, तो उस जगह की लैंग्वेज के बारे में पता होना, चाहे थोड़ा थोड़ा करके हमें पता चले, मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हम सब के लिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है ना कि आपको नॉन देसी जब आपको आपकी लैंग्वेज में ग्रीट करता है, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई आता है, आपको नमस्ते कहता है, आपको सत श्री अकाल कहता है, के जो कहता है या कुछ भी, वो सारी चीज़ें वो बोलते हैं आपको, तो यू फील गुड। आपको अंदर से बड़ी प्राउड फीलिंग होती है कि यार आपकी लैंग्वेज कोई और बोल रहा है जिसकी ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब इमेजिन कि आप यहाँ पे इस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे उनकी जो लैंग्वेज है, अगर उनको आप उन्हीं के लैंग्वेज में ग्रीटिंग, क्योरा, हेलो, हाय की जगह क्योरा बोलना शुरू कर दें, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बोलने शुरू कर दें, तो उनको कितना अच्छा लगेगा। बिकॉज देन बिकम्स एक्सेप्टेबिलिटी कि आप यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करके उनको एम्ब्रेस कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप खुद के कल्चर को भूल रहे हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हम उसको एम्ब्रेस करते हैं। एनीवे, कॉफ़ी के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि कॉफ़ी को माओरी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। इट्स वेरी ईजी एक्चुअली में, कॉफ़ी को माओरी लैंग्वेज में काफ़ी ही बोला जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे से। सो लिखने में इट इज़ लाइक KAWHE। सो WH यू नो कि फर का साउंड होता है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ये बोला जाता है माओरी लैंग्वेज। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप थोड़ा कॉफ़ी को काफ़े की वे से बोल सकते हैं। इट्स जस्ट अ माओरी वे ऑफ सेइंग कॉफ़ी। लिखने में इट्स KAWHE। और भी आपको वर्ड्स पता है तो आज आपसे भी सीखेंगे, अगर आपको आती है। आई नो जिनके बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत आती होगी, बिकॉज किड्स जो है ये अक्सर जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत सीखते हैं, तो आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इफ़ किड्स आउट देयर लिसनिंग, आपको माओरी वर्ड्स आज के दिन में इस पूरे हफ्ते शेयर करने हैं, फील फ्री टू कॉल 0800-00-HUM। इट्स 0800-00-4866। Bollywood's most wanted. Gundi khad jao ya seedha andar aao. Main laun apna A game. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
3: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
12: Get the family kitted out for less at Rebel Sport. Save 20% on all Nike clothing and 20% off all Nike adult running shoes. Plus, there's 15% off All Blacks Greatest Rivalry fan gear. Gear up for less, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
13: It's Woolworths $5 Frenzy. Fill the trolley with Tip Top Toppers or Jelly Tips 6 to 10 pack, just $5 a pack. And Paseo King Size or Ultra Soft Luxury Long Roll 6 pack, just $5. Only at Woolworths. T's and C's apply.
14: Media Works Complaints, how can I help?
15: Yeah, hello?
14: Hi.
15: Hi, yeah, can you guys take a radio jingle out of my brain?
14: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
15: Well, okay, well, what about something like a brain surgeon?
14: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
15: Great, sing it to me.
16: Advertise with
17: Media Works.
16: New Zealand listens to us.
18: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. As a business owner, what do you do when customers won't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that the Indian community values trust, relationships, respect, and keeping their word. With 20 years of debt recovery experience, they use respectful follow-up and mediation to recover your B2B debts. Want your invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution, aur payment fee.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन। Drive Show with Sandy and Rizbe.
1: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
2: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Good afternoon. 3:37 हो चुके हैं on the 15th of September, and Drive Show आपके लिए शुरू हो गया है already.
3: A very very good afternoon, Rizbe. How are you?
2: I'm great, Sandy. How are you feeling?
3: Kia ora, Rizbe.
2: Kia ora.
3: Yeah, so it is Maori Language Week.
2: That's right.
3: And मैंने आज थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने पहले पूछा था एक्चुअली में, और काफ़ी लोगों ने सही जवाब भी यहाँ पे दिया कि कॉफ़ी को मौरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं।
2: सैंडी यार, हाउ कैन वी थिंक सो मच अलाइक यार, दिस इज लाइक क्रेजी।
3: हाँ,
2: क्योंकि मैं भी आपको एक चीज पूछने वाला था,
3: कॉफी को क्या बोलते हैं।
2: मैं आपको पूछने वाला था, हे कावे
3: पढ़ के
2: माकू।
3: ओके, फिर से बोलो।
2: हे कावे माकू।
3: नहीं पता इसका मतलब क्या है
2: यार। कम ऑन यार, ये माओरी वीक में आप ये
3: मैं सीख रही हूँ ना रुज़बे, आई डोंट नो एनी एवरीथिंग।
2: सो दिस इज समथिंग दैट आई केम एंड आस्क्ड यू फर्स्ट थिंग जब भी मैं स्टूडियो में आया तभी।
3: कॉफी पीनी है क्या?
2: Could I have a coffee, please?
3: Yeah, वैसे कॉफी को कैफे कहते हैं। KH,
2: no. कैफे माकू।
3: हाँ, या कैफे, so कैफे कहते हैं। कॉफी, कॉफी भी बोलते हैं उसको।
2: कैफे, नेस्कैफे।
3: KAWH ई जो है
2: वो बोलते हैं।
3: हाँ, या तो उस वैसे इसको बोलते हैं। काफी लोगों ने सही भी आंसर दिया है।
2: क्या बात है।
3: So, ऐसी छोटी छोटी बातें, एंड वी आर एक्चुअली ट्राइंग। हमारे साथ कल परसों हमारे सिस्टर रेडियो स्टेशन माए से कोई शामिल हो जाएगा यहाँ पे, और भी इसको अच्छे वे से जानकारी देने के लिए, बिकॉज वो एक्चुअली में इस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है, तो मेरे को लगता है कि वो परफेक्ट रहेंगे यहाँ पे आके इसके बारे में और भी बातें करने के लिए। एंड मैं थोड़ी देर पहले ये बात कर रही थी रुज़बे कि हमें जब कोई हमारी लैंग्वेज का नहीं होता है, जिसकी हमारी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन देसी पीपल, वो आके जब हमें नमस्ते, सत श्री अकाल ये सब कुछ बोलते हैं, तो वी फील सो गुड।

0: कि अरे वाह हमारी लैंग्वेज में इन्होंने ये बोला. तो जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें हमें सीखना बहुत ज़रूरी है. मेरे को लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
1: दैट इज़ करेक्ट यार, 100% आई अग्री. तो हमें भी बहुत रेगुलरली किया ओरा और फिर और क्या होता है किओरा बोलना चाहिए,
0: और भी है
1: शुरुआत करना चाहिए किओरा बोल के.
0: शुरुआत तो करो छोटी छोटी चीजों के साथ. एक्चुअली में शुरुआत करनी चाहिए.
1: मुझे काफी बार बहुत ही
0: मैंने और भी दो तीन आज सीखे थे यार.
1: मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है यार अपने ऊपर कि मेरे को यहाँ पे अभी 14 इयर्स हो गए
0: या
1: लेकिन मेरे को माओरी के बहुत ही कम वर्ड्स मालूम है.
0: सेम हियर, आई फील द सेम वे एज वेल. बाय द वे देयर इज अनदर वन, जैसे काइते पिया कोए, काइते पिया कोए इसका मतलब है हाउ आर यू.
1: ओके
0: या
1: कैसे गए,
0: कैसे गए. एग्जैक्टली
1: काइते पियो
0: पिया पिया कोए.
1: हां काइते पिया कोए
0: कोते. सो ई इज वो वाला जो डबल ई वाला वो है.
1: देखो हर किसी को अपना याद रखने का, मुझे लगता है कि जैसे हमारी उम्र होती है हमें याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है.
0: तो एक तरीका होता है ना याद रखने का,
1: एक तरीका होता है. तो मैं अपना
0: जैसे शाहरुख खान जब यहाँ पे आए थे, ही डिड केम टू न्यूजीलैंड, यहाँ पे उन्होंने जब शो किया था तो वो स्टेज पे उन्होंने एक चीज बोली थी क्योरा. उन्होंने सीखना था, ही केम हेयर, ही सेड हेलो नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने क्योरा बोला था. एंड ही सेड कि मेरे को ना बड़ा ईजी लगा सीखना. Because मैंने सिंपल है क्यों हो रहा है,
1: क्यों हो रहा है, हाँ,
0: क्यों हो रहा, लाइक क्यों हो रहा है. एंड बचपन से ही हमने काफी चीजों को इस वजह से रिमेम्बर किया है कि इस चीजों को किसी ना किसी के साथ रिलेट करके हमने याद किया है. एंड लर्निंग ऑल टुगेदर डिफरेंट लैंग्वेज इज नॉट ईजी, लेकिन इट्स अ बेस्ट एक्सरसाइज योर ब्रेन कैन हैव.
1: ओह, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज
0: इज योर बेस्ट मेमोरी एक्सरसाइज. सो अगर आप चाहते हैं कि अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करवाना, मेमोरी एक्सरसाइज करवाना किसी से भी, तो आप ये एक्चुअली में कर सकते हैं. यू कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज. बोला जाता है उनको एक नई लैंग्वेज सीखो, तो उससे आपका ब्रेन जो है उसके पैटर्न बदलते हैं. और भी याद रखने की आप कोशिश करते हो तो उससे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है. सो यू हैव अनदर रीज़न. सो मौरी लैंग्वेज वीक विच इज थे वे की ओ तेरो मौरी, इसे ये बोला जाता है. तो इस वीक में हम ये सारी बातें करेंगे और भी थोड़ी मौरी सीखने की कोशिश करेंगे.
1: जी, तो हमारी कोशिश तो जारी है. अगर आप हमारे हमें कुछ सिखाना चाह रहे हो या आप अगर कुछ शेयर करना चाह रहे हो,
0: एंड स्पेशली द किड्स आउट देयर, बच्चों को अगर पता है तो आप यहाँ पे कॉल कीजिए. आप भी हमें सिखा सकते हैं यहाँ पे. यू आर द बेस्ट टीचर राइट नाउ आई थिंक,
1: क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं ना हमारे पास.
0: तो anyway, ड्रिंकिंग द ऑप्शन दो.
1: अभी आप यहाँ पे कॉल करें, मतलब अभी तो आप गाना सुनिए, फिर गाने के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि एक्ट अब क्या प्रपोज कर रहे हैं. एक नया कुछ प्रपोजल लेकर आए और ये मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है जो इन्होंने किया.
0: और एक्ट पार्टी के लीडर जो है डेविड सिमर, इसी थर्सडे को यहाँ पे शामिल होने वाले हैं 5 बजे. ही विल बी हेयर और हमसे बातें करेंगे. तो उस समय पर भी ये सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे रुजबे.
1: सो यार, रिमेंबर टू ट्यून इन ऑन दिस थर्सडे 5 PM ऑनवर्ड्स. यहाँ पे डेविड सिमर के साथ हम बात करने वाले हैं अबाउट हिज करंट इलेक्शन, मतलब क्या उनका क्या पॉलिसीज है, एक्ट पार्टी क्या लेकर आ रही है हमारे लिए और क्यों हमें उन्हें वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. वी कैन डिसाइड दैट आफ्टर द टॉक.

0: शान और गायत्री अय्यर में की आवाज में आप सुन रहे थे ये बहुत ही बढ़िया सा गाना. वेल इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट वी वांट टू टॉक अबाउट राइट नाउ. एक्ट ने एक नया प्रपोजल बाहर लाया है. उन्होंने कहा है उनके जो नया पॉलिसी है उसमें आउटलाइन कर रहे हैं अबाउट मिनिमम वेज. कह रहे हैं कि मिनिमम वेज को फ्रीज करेंगे 3 साल के लिए और ट्रेनिंग वेज फॉर अंडर 20s को इंट्रोड्यूस करेंगे.
1: ओके
0: सो बेसिकली ये क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि बिजनेसेस बहुत डिफिकल्ट, बिजनेसेस को काफी डिफिकल्ट हो रहा है टू हायर एम्प्लॉइज.
1: So right now the adult minimum wage is $23.95 an hour.
0: तो इसको वो लोग freeze करने का बोल रहे हैं 3 साल के लिए.
1: Okay, ताकि और changes increment ना हो.
0: हाँ, minimum wage ना पड़े और फिर under 20s के लिए वो एक अलग training wage लेकर आना चाह रहे हैं. जहाँ पे मुझे लगता है they are on the right track but they should not call it under 20s का training wage, क्योंकि ट्रेनिंग वेज वुड नॉट बी, या ओके मे बी दे कॉलिंग इट ट्रेनिंग वेज, इट्स ओके व्हाट्स इन द नेम, बट पॉइंट ये है कि जो अंडर 20s होंगे उनको एक कम रेट मिलेगा कंपेयर टू दोज हु आर अबाउट 20.
1: या सो कंसिडरिंग काफ़ी चीज़ें सो लेकिन ये भी है कि अगर वेजेस फ्रोजन रहते हैं रुजबे तो काफ़ी चीज़ें और अफेक्ट हो सकती हैं.
0: 100% लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगी.
1: या क्योंकि रेंट लगातार हर साल में इंक्रीज होगा. ग्रोसरीज के प्राइसेस ऐसा नहीं है कि रेंट भी कुछ ऐसा नहीं है कि स्टेबल रहता है. मैनी पीपल ओवर हियर जो मिनिमम वेज पे होते हैं वो रेंट भी करते हैं.
0: जी,
1: वो एक कंसिडर करना पड़ेगा. काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो साथ में नहीं सही चलेगी. सो एवरी ईयर अगर चीजें चेंज नहीं हो रही है बाकी
0: नहीं यार, मेरा एक पॉइंट है इसके ऊपर. प्लीज आप भी कॉल करें यहाँ पे ना, तो मैं और सैंडी आर्ग्यू करते बैठेंगे और फिर ड्राइव शो कौन करेगा आपके लिए अगर हम दोनों झगड़ा करके निकले. अभी तक तो शुरू भी नहीं हुआ ड्राइव शो. तो आप भी कॉल कीजिए 0800-004-866. आप भी आपके थॉट्स यहाँ पे शेयर कीजिए. मेरा पॉइंट ये है ना सैंडी, एंड आई थिंक इट कुड बी अ बिट आई डोंट नो व्हाट एवर बट यू जज. मुझे ऐसा लगता है कि हम हर कोई मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहा है कि हम हर साल कोई इंक्रीमेंट लेकर आए हमारे लिए, राइट? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम खुद के लिए कैसे इंक्रीमेंट लेकर आ रहे हैं. मिनिमम वेज इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर इट.
1: आई नो व्हाट यू सेइंग बट देन अगेन डिपेंड्स अपॉन द बिजनेसेस कि वो जो बिजनेसेस है वो मेहनत को कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं.
0: वो करेंगे ही ना, क्योंकि अगर उनको वैल्यूएबल एम्प्लॉय मिल रहा है जो मेहनत कर रहा है.
1: डजंट ऑलवेज वर्क रुजबे. मैनी बिजनेसेस आउट देयर होते हैं जो इन चीज़ों के ऊपर नहीं चलते हैं. मैनी बिजनेसेस है जो चलते हैं. मैनी कॉर्पोरेट्स ऑल्सो चलते हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों को लेके नहीं चल रहे हैं.
0: दैट इज ऑल्सो ट्रू. हाई, आपका स्वागत है. क्या नाम है आपका? सुनील, क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर?
2: देखो अगर आप एज ए एम्प्लॉयर सुनते हैं इसमें क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए एम्प्लॉयर और एज ए एम्प्लॉय.
1: जी
0: आप किस का क्या हो, आप एम्प्लॉयर हो कि एम्प्लॉय हो?
2: मैं दोनों.
0: अच्छा, ग्रेट.
1: ओके,
0: तो आप बेस्ट पर्सन हो फिर अभी इसको जज करने के लिए.
2: हाँ, तो अगर देखो एज ए एम्प्लॉय मैं एज ए एम्प्लॉय बात करता हूँ कि अगर मैं एज ए एम्प्लॉय हूँ कहीं पर, तो अगर मैंने जो भी स्टार्ट किया मेरी मिनिमम वेजेस पर मैंने स्टार्ट की, ठीक है, और मैं अपना 100% देता हूँ कंपेयर टू ऑल अदर पीपल पर की ओनर ग्रुप. सपोज करो कि हमारे साथ में 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 में से एक मैं नहीं, कोई भी एक बंदा अगर ज्यादा अपने फर्ड लगा रहा है काम में कंपेयर टू ऑल अदर, उसकी परफॉर्मेंस बेटर है, सब कुछ अच्छा है, तो उसका इंक्रीमेंट होना चाहिए एवरी ईयर उसकी परफॉर्मेंस बेस के अकॉर्डिंग. उसका मतलब गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि भाई 3 ईयर का हमारा फिक्स है, तो वो तो एम्प्लॉयर के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना कि यार वो एम्प्लॉयर को दिखेगा क्या.
0: वो तो मिनिमम वेज को फिक्स कर रहे हैं ना. तो ये देखो, आप जो बोल रहे हो इसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है कि लेट्स से अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसमें ये हो जाता है कि मिनिमम वेज नहीं बढ़ रहा है लेट्स से हर साल, लेकिन आपने एक्सेप्शनल अगर काम किया तो आपका वेज बढ़ेगा होपफुली. परफॉर्मेंस रिव्यू एम्प्लॉयर के ऊपर है वो
2: ना. अगर उसमें मतलब अगर वो ये भी बोल सकता ना कि भाई देखो ये हमने आपको किया 3 साल तक में आपका पेरेंट क्या गवर्नमेंट, खाली गवर्नमेंट इंक्रीज करेगा ना, अगर एम्प्लॉयर के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है ऐसा.
0: एम्प्लॉयर के ऊपर तो नहीं है कोई कंडीशन, सही बोल रहे हो आप. लेकिन देखो सीन क्या है मालूम है, अगर आप मेहनत कर रहे हो आपके काम पे, ठीक है, एंड यू आर वन ऑफ दैट पर्सन जो परफॉर्मिंग है, अगर आपको एक जगह पे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है तो आप फिर कल्टी मार के कोई और जगह ढूंढ लोगे ना आपके लिए.
1: बट या मार्केट भी देखनी पड़ेगी ना रुजबेक, वो मार्केट रेडी है क्या? मतलब अगर एक कोई इस पे पे है, उसने एक साल 3 साल मेहनत कर ली इस कंपनी में, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं हो पा रहा है कि ठीक है भाई नहीं कर रहे हैं, एंड उसके लिए जॉब स्विच करना, इज इट सो इजी इन दिस मार्केट?
0: नहीं, ये मार्केट में नहीं इजी, लेकिन जब ये सारे एफर्ट डाल रहे हैं ये स्टेबल करने के, तो होपफुली तभी मार्केट खुलेगा, क्योंकि ज्यादा लोग हायर कर पाएंगे.
1: हाँ, उसके साथ और वो क्या कर रहे हैं उस चीज को स्टेबल करने के लिए, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है.
0: सुनील भाई सॉरी, आपके लिए बस 30 सेकंड और है, अगर आपको 30 सेकंड में और भी कुछ कहना है तो.
1: हाँ, हमारे न्यूज का थोड़ा टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में.
0: आप एज एन एम्प्लॉयर आप खुश हो ना, लेकिन क्योंकि ये सही हो रहा है ना, फिर कम वेज का हैसल है.
2: देखो आज की डेट में जिसकी सब कुछ के प्राइस बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो मिनिमम वेज इसको भी थोड़ा सा अप होना चाहिए. तो अभी आप बात ही करें रेंट की, अभी एवरी ईयर आपके रेंट इंक्रीज इंक्रीमेंट होता है ना रेंट का, अगर मिनिमम वेजेस भी बढ़ेगी तो कैसे मैनेज करेगा वो, तो स्ट्रगल हो जाएगा उसको ना मैनेज करना चीजों को.
0: तो आप कह रहे हो कि मिनिमम वेज भी बढ़ना चाहिए? मतलब
2: बिल्कुल बढ़ना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से जो एम्प्लॉयर को देखते भी थोड़ा सा तो बढ़ना चाहिए ना, एम्प्लॉयर की तरफ भी होना चाहिए.
0: ठीक है, इसके बारे में और भी बातें करेंगे. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए सुनील.
1: थैंक यू सुनील. द बीट ऑफ बॉलीवुड वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Feels like 16 degrees, 15.8 actual temperature. Overnight temperature is going to be as low as 9 degrees aur 6:12 pe hoga sunset. Southwesterly is dying out this evening. Kal ka din mila jula sa rehne wala hai with a high of 16. Tomorrow's overnight is going to be 10 degrees.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuko and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: चार बजकर तीन मिनट यू आर लिस्निंग टू द ड्राइव शो सुपर से ऊपर आपके लिए शुरू हो गया है आज 15 सितंबर. हाय सैंडी, क्या हुआ?
4: गुड आफ्टरनून. नहीं, गुड आफ्टरनून रुस्बे, कैसे हो तुम?
1: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. कुछ तो हुआ है
4: या कुछ तो हो गया है. वैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ एंड आउट देयर लिसनर्स एज वेल कि हैविंग टू मच नॉलेज is good for you या फिर little knowledge is good for you. कई बार होता है ना कि अगर आपको little knowledge है चीज़ों की तो life में को लगता है बहुत easy हो जाती है.
1: अच्छा.
4: Because we don't know much.
1: कि आपको पता ही नहीं है. You're right,
4: पता
1: actually.
4: नहीं है. हाँ. Moderation नहीं है.
1: Yeah, yeah, yeah.
4: And अगर आपको too much knowledge हो जाती है चीज़ों की then you are like कि पंगे ही पंगे. Because you are bothered a lot then.
1: हाँ, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि जब कोई सामने वाला कुछ कर रहा है तो उसका आगे एंड क्या होने वाला
4: आगे है? क्या है, eventually क्या है? So, आपको क्या लगता है, what is your take on this?
1: 0800 0800 004866. क्या आपको कभी कभार ऐसे लगता है कि यार मेरे को इतना ये सब नहीं, अगर पता होता ना तो ये बेटर होता.
4: या
1: मेरे को क्यों पता है ये सब,
4: या फिर ज्यादा चीजों की समझ नहीं होनी चाहिए.
1: काफी बार ना आपके आपके वर्क पे भी ऐसा सिनेरियो हुआ होगा जहाँ पे आपको ऐसा लगा यार क्यों मेरे को मालूम है ये प्रॉब्लम और मैंने क्यों इसको हाईलाइट किया, साला मेरे ऊपर ही आ गया वो. ऐसा होता है ना काफी बार.
4: Yeah.
1: तो आ बेल मुझे मार, ऐसे वाला सिचुएशन अगर आपके साथ हुआ है आज.
4: What is your take on this?
1: Hi, आपका स्वागत है.
5: Hello, Rusbe. Hello, Sandy.
4: Hi.
5: ये टॉपिक ना, first of all, I'm Gaurav.
4: Yeah, Gaurav. Hi.
5: So ये टॉपिक ना एक्चुअली आज ही मैंने सोचा कि यहाँ पे ये चीज है. अब मैं ओवरथिंक बहुत करता हूँ. अब जो ओवरथिंकर होते हैं ना उन्हें हर चीज पता होना चाहिए कि हाँ भाई जिसका वो होता है ना व्हाट दैट आगे पीछे ऊपर नीचे का सब कुछ.
4: या
5: राइट,
1: पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए.
5: तो अच्छी चीज है. या तो अब है क्या, मैं मेडिकल से हूँ तो मेरे को मेडिकल की नॉलेज है. मेरा भाई ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो मेरे को ऑटोमोबाइल की नॉलेज है. मेरा बड़ा भाई फाइनेंस में, मेरे को फाइनेंस की नॉलेज है. मेरे पापा लॉयर है, मेरे को लॉ की नॉलेज है. तो मिक्सअप सारा का सारा है. ठीक है.
4: या
5: तो अब जब कुछ भी होता है तो पता चलता है कि भाई ये सारी चीजें तो मेरे को पता है. अब मेरी वाइफ का सेम यही है. मेरी वाइफ को पता है कि इसे सब कुछ पता है तो वो कुछ नहीं ढूंढती, उसे फर्क नहीं पड़ता.
1: वो सब आपके ऊपर डेलीगेट कर देती है. क्या तेरे को तो पता है ना.
4: या
5: मैं 4-5 घंटे लैपटॉप पे बैठ जाऊंगा, फोन पे बैठ जाऊंगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसे पता है कि ये ढूंढ के निकाल ही देगा. और वो होता ना, अब मेरा फ्रेंड है वो एस्ट्रोलॉजर है तो उसकी वजह से मेरे को हॉरोस्कोप, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वेदांग, ज्योतिष
4: सब वो भी पता है.
5: तो अब मेरे से एक ने बॉक्स जैसे पूछा कि भाई जोटो का नंबर बताओ मेरे को वेदांग ज्योतिष के हिसाब से.
1: अच्छा,
5: कि क्या आ सकता है. फिर वेदांग ज्योतिष का न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट करके उनकी डेट ऑफ बर्थ, फिर जोटो किस दिन है उसका, वो सारा का सारा निकाल के उन्हें दो. ऐसे ऐसी चीजें,
4: क्योंकि आपके अंदर वो कीड़ा है ना कि भाई ये सब मुझे पता है तो मैं इसका यूज करूं, कि मेरे को ज्ञान है इन चीजों का. तो
1: आपने, let's make use of आपने it. जो पहला वर्ड यूज किया वो बहुत सही यूज किया.
4: ओवरथिंकिंग
1: नहीं, कीड़ा.
4: वो कीड़ा.
5: अरे वो मेरा ना बर्थडे है 16 को, तो वो ना 7/16/25 ये वो केतु वाला नंबर आता है. तो अब मेरी वाइफ मेरे को इंस्टाग्राम पे रील्स भेजती रहती है कि तेरे दिमाग में कीड़ा इस वजह से क्योंकि तेरा डेट ऑफ बर्थ ये.
4: ऐसा होता है क्या?
1: और ये मैं अग्री करता हूँ. ये 16 नंबर, ये लोग ओवरथिंकर, बहुत ज्यादा ओवरथिंकर होते हैं.
5: अच्छा, केतु का नंबर होता है.
1: हाँ, ये बहुत बहुत ही, क्या ही बताऊँ, अभी मैं रेडियो पे नहीं बता सकता हूँ कैसा नंबर है ये. मतलब बहुत
4: अच्छा नंबर है,
1: बहुत ही अच्छा नंबर है.
4: 7 नंबर इज वेरी गुड नंबर गौरव.
1: बहुत अच्छा नंबर है. मेरी वाइफ का नंबर भी 7 है गौरव. इसलिए मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ इस नंबर की.
5: मैं समझ रहा हूँ.
4: तो आप क्या करते हो फिर? मतलब आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार ये सब ना ही पता होता मुझे तो अच्छा था?
5: आपको ना अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं अभी आपको बता दूं, मैं ना अभी अभी अभी आया हूं मैं, ठीक है, लाइक इसी साल आया हूं न्यूजीलैंड में. अब मेरे को घर खरीदना, अब मेरा बजट है $5,000 का, अब मेरे को उस पर घर खरीदना है, अब उस पर मिलेगा क्रॉस लीज, राइट. अब हम, मैं दिल्ली से हूँ तो हमें चाहिए कि भाई हमारे हाथ में जमीन हो, और जब मैं इतने पैसे में घर खरीदने के लिए जाऊंगा मेरे को क्रॉस लीज मिलेगा. तो फिर मैंने बहुत सोचा, ओवर थिंक किया, तो फिर मैंने सोचा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लैंड खरीदता हूँ, एक रिलोकेटेबल हाउस खरीदता हूँ, $25,000-$30,000 का आएगा, उसे मूव करवाता हूँ, $70,000-$80,000 एक्स्ट्रा पड़ेंगे, मेरे पास अंडर 5 के अंदर एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी जो 500 गज के अंदर होगी, समझे आप. थोड़ा सा 2 महीने का एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरा लॉन्ग रन में फायदा ही फायदा है.
1: नहीं नहीं, लेकिन ये एक मिनट, मैं एक एक बात आपको पूछना चाह रहा हूँ कि आपको खाली प्लॉट पे लोन भी मिलना चाहिए ना.
5: अब बैंक इस चीज को करता है, बैंक इस चीज को दो हिस्सों में करता है, वन इज लैंड लोन, वन इज कंस्ट्रक्शन लोन, दोनों मिक्स करके.
1: अच्छा,
5: डॉक्यूमेंटेशन पता कर चुका.
1: देखो गौरव, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को लगता है कि आप किसी मॉर्गेज एडवाइजर को मिलो.
5: मिल चुका मैं.
1: अच्छा,
4: अच्छा, वो भी कर लिया.
1: अभी ऐसा मत बोलना कि मैं मॉर्गेज एडवाइजर को मिल लिया है तो अब मैं मॉर्गेज एडवाइजर भी बन गया हूँ.
4: कुछ काम उनके लिए रहने दो गौरव,
1: कुछ काम लोगों के लिए रहने दो गौरव.
5: पर ये चीज होनी चाहिए, अगर मैं किसी को मिल रहा हूँ तो मेरे को उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए. अगर मैं लॉयर को मिलूंगा डॉक्यूमेंटेशन की, तो मेरे को उतनी ही थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो कि हाँ भाई मैं उससे पूछूंगा, वो मेरे को टर्मिनोलॉजी बताएगा, मेरे को तो पता हो कि हाँ भाई वो चीज क्या है.
1: अरे बट वही तो लॉयर का काम है ना, आपको एक्सप्लेन करने का कि वो चीज क्या है. नहीं तो आप ही पढ़ लेते 5 साल लॉ.
5: नहीं नहीं, मैं वही तो, भाई खुद के अंदर भी थोड़ा बहुत वो होना चाहिए कि हाँ भाई.
1: नहीं नहीं, वो आपके अंदर ही है वो,
5: क्या चीज है
1: वो खुद के अंदर, वो सब क्यों नहीं है वो उतना थॉट कि भाई मैं
4: मुझे ऐसा ना, मुझे अभी बहुत बेटर फील हो रहा है, पता है गौरव, आफ्टर हैविंग कन्वर्सेशन विद यू आई एम फीलिंग लॉट बेटर.
5: मेरे बाल झड़ गए इस चक्कर में
1: भाई. अभी मेरे को डर ये है कि अब गौरव बोला कि मैंने रुजवी और सैंडी के साथ बात की 15 मिनट, तो
4: अभी आप आके यहाँ पे शो करोगे, बोलोगे मैं इनको क्यों सुनूं, मैं खुद की बातें सुनूंगा.
1: अभी पॉडकास्ट चालू करेगा गौरव, मेरे को लग रहा है पक्का. बट गौरव थैंक्स सो मच फॉर योर कॉल.
4: सही है, थैंक यू गौरव, नाइस टॉकिंग विद यू,
5: थैंक यू, बाय
4: बाय.
1: अच्छा तो
4: चलो हो गया, आई एम लॉट बेटर,
1: यू फीलिंग बेटर.
4: आई एम फीलिंग बेटर.
1: तो आप ऐसे ही कॉल करके सैंडी को बेटर फील करवाइए, कभी मुझे बेटर फील करवाइए. 0800-004-866 इज द नंबर.
6: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: ऐसी जगह थी। हर्षदीप कौर, बेनी दयाल की आवाज, और ये उफ गाना आप सुन रहे थे, उफ ऑन हम। Sandy, yeah, आज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है।
1: इट इज ट्यूसडे टुडे, और आज एक बहुत ही जबरदस्त गेम आपके लिए हम लेके आएंगे 5 बजे के बाद। कैरेक्टर
0: गेस। Yes, the game that you guys have been waiting for, character guess. आज सैंडी का टर्न है।
1: आज मेरी टर्न है। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने गेस कर लिया था ना।
0: हाँ, हमेशा गेस हुआ है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि गेस नहीं हुआ है। बट मेरा
1: लास्ट मोमेंट पे
0: मेरा रिकॉर्ड अब तक नहीं तोड़ा है आपने।
1: क्या
0: पहले हिंट में
1: एक बार हुआ था, उसमें हिंट दिए कैरेक्टर गेस में, पहले हिंट में। इफ यू मिस दिस गेम, क्या होता ना गाइस, 5 बजे के बाद आज एवरी ट्यूजडे हम ये गेम खेलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बार रुजबे की टर्न होती है, एक बार मेरी टर्न होती है। सो जैसे रुजबे की टर्न है फॉर एग्जांपल, तो रुजबे हमें एक करेक्टर के ना, वो करेक्टर कोई भी हो सकता है, पॉलिटिशियन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, कहीं से भी, उसके बारे में 5 हिंट देगा और हमें 5 सवाल पूछने हैं रुजबे से, मुझे और आपको मिलके, जिसका जवाब वो सिर्फ हाँ या ना में देता है। तो हमें फिर गेस करना होता है वो किसके बारे में उसने सोच के रखा है। एंड 5 हिंट वो एक साथ नहीं देता है, जैसे एक हिंट दिया फिर हमने उसे पूछा सेकंड हिंट दो, फिर बीच में अपने सवाल हम पूछ सकते हैं। तो 10 क्वेश्चंस के अराउंड टोटल हमें पता चलता है इस करेक्टर के बारे में, जो कि बॉलीवुड पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं, एक बॉलीवुड का करेक्टर भी हो सकता है वो, जैसे मुन्ना भाई इज ऑल्सो वन करेक्टर
0: हो सकता है।
1: ओके, संजय दत्त इज अनदर करेक्टर। सो इट कैन बी अ रियल लाइफ, इट कैन बी अ करेक्टर रोल एज वेल, उससे भी हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है, इट कैन बी एनीवन अराउंड द वर्ल्ड, इट कैन बी एनीवन।
0: या सो एनीवे,
1: और आज मेरी टर्न है,
0: आज सैंडी की टर्न है, सैंडी सोचने वाली एक इसके बारे में।
1: और लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम किसी ने मुझे वो किया था,
0: मैसेज किया था,
1: मैसेज किया था, डीएम किया था मुझे कि इसके बारे में पूछो, और मैंने उसी के बारे में पूछा था, वो सुपर्ब। अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पे जाके आप डीएम कर सकते हैं। माय इंस्टा हैंडल इज सैंडी सेखों, SANDYSEKHON।
0: और लगे हाथ
1: भी कर लेना,
0: और लगे हाथ वो ही फिर आप जाके रुजबे अंडरस्कोर द बाबा में भी जाके लिख लेना, ताकि मेरे को भी पता चल जाए ना क्या है।
1: इसको मत बताओ, जिसको जो भी है बढ़िया, यू कैन टेल मी।
0: या यू कैन टेल सैंडी। वेल, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक मैसेज आया सैंडी,
1: कैन यू डू प्रैंक कॉल्स?
0: I would love to do. Like, yeah, if you, you're asking, can you do? Don't challenge.
1: हमने की है.
0: We can do prank calls, but can you take prank calls? is my question to you.
1: अगर आप चाहते हैं किसी को हम prank call करें, तो please हमें बताइए यहाँ पे जिन्होंने message किया है, थोड़ा off air हमें call करके बताओ. We are happy to do it. हमने वैसे की है.
0: हमने की है.
1: Like 2-3 ऐसे कुछ की है हमने.
0: बहुत prank calls की है, बहुत गालियाँ भी खाई है, सब हुआ है हमारे साथ.
1: So if you want something like this, तो आपको suggest करना पड़ेगा ना कि हम किसको करें.
0: उसी के लिए तो हमको पैसा मिलता है ना यहाँ पे गाली खाने के लिए, तो आप बोलिए हमें किसको करना है।

0: हॉल बना दे.
1: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington, and Westgate. Up to 60% off on now.
2: You're listening to हम playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम यहाँ पे इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी ले आते हैं. और
3: थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि यू नो प्रैंक कॉल्स के बारे में. हमें एक्चुअली में एक मैसेज आया है प्रैंक कॉल के लिए, एंड वो अपने पार्टनर के ऊपर एक्चुअली में प्रैंक कॉल करवाना चाहते हैं जो रेडियो नहीं सुनती है ऑफकोर्स, इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके बारे में. दे गोना सेंड द नंबर वेरी सून, तो उसके बाद हम यहाँ पे ये कॉल करने वाले हैं. वी जस्ट गोना बी प्रिटेंड टू बी समवन एंड उसके ऊपर हम बात करेंगे. बढ़िया, स्टे ट्यून. अगर आपको ये प्रैंक कॉल सुननी है एंड इफ़ यू वांट सिमिलर काइंड ऑफ सेगमेंट्स इन द फ्यूचर, तो आपको ही बाद में नंबर जो है ये सेंड करने पड़ेंगे किसी एक ऐसे पर्सन के लिए जो प्रैंक कॉल्स को सही से ले. यू नो मतलब
2: वो डिफिकल्ट
3: पंगा ना हो जाए ना हमारे पे, ये यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है. बढ़िया, उसमें कुछ आर्टिकल्स भी है, जैसे कि मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि ओल्डर ड्राइवर्स शुड नो लॉन्गर फेस रूटीन कॉग्निटिव स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन देयर एज अंडर न्यू क्लिनिकल गाइडेंस फ्रॉम हेल्थ प्रैक्टिशनर्स. जो अपडेटेड गाइडेंस है, इसका कहना है कि जो हेल्थ स्क्रीनिंग है शुड इंस्टेड बी यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ क्लिनिकल रीज़न फॉर इट, जहाँ पे डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं टू असेस ईच पर्सनस फिटनेस टू ड्राइव इंडिविजुअली. नहीं सुना क्या तुमने? ए भगवान,
2: मेरे को क्यों सुनाने के लिए आप बोल रहे हो? लेकिन
3: अरे लेकिन बैठे हो तो तुम सुनोगे ना यहाँ पे. मैंने क्या बोला अभी?
2: कुछ तो भी बोला आपने.
3: किसके बारे में बोला मैंने?
2: यार सुनो ना यार, मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है. मेरे घर पे भी ऐसे टेस्ट होते हैं, मैं रेडियो पे भी ऐसे टेस्ट होते हैं, मैं क्या करूँ? मैं जीना छोड़ दूँ क्या यार? क्या है, हो रहा क्या है मेरे साथ?
3: मेरे को बताओ ये कितना सही है.
2: क्यों हो रहा है मेरे साथ?
3: ये सामने बैठा है, इधर बात ही नहीं सुन रहा है. तो भाई
2: इंसान को दूसरे काम भी होते हैं करने के.
3: अभी रेडियो का काम कर रहे हो तो
2: रेडियो का ही काम कर रहा हूँ मैं. मैं आपको पूछता हूँ एक सवाल. मैं सबके पास हूँ.
3: छोड़ो, मैंने मतलब मेरी बात की वैल्यू ही नहीं है.
2: क्योंकि सैंडी ने मुझे एक काम दिया था. आपने मेरे को काम दिया था कि नहीं दिया था?
3: मैंने दिया था, लेकिन वो काम तुम बाद में कर सकते हो जो बात कर रहे हैं.
2: अच्छा ठीक है, वापस एक बार बोल दो क्योंकि मिस हो गया किसी का. यहाँ पे मैसेज आया हमें, आप बताओ फिर से बोलो.
3: मैसेज आया. हाँ. मैं नई आर्टिकल पढ़ रही थी कि अपडेटेड गाइडेंस है जो कि हेल्थ की, जो हेल्थ स्क्रीनिंग है ओल्डर ड्राइवर्स के लिए, शुड नो दे शुड नो लॉन्गर फेस रूटीन कॉग्निटिव स्क्रीनिंग.
2: अच्छा.
3: बेस्ड ऑन देयर एज. सो न्यू क्लिनिकल गाइडेंस आई है हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की ओर से. ये सो ये काफ़ी लोगों के ऊपर यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है. यहाँ पे उनको नए टेस्ट जो है ये हमेशा देने पड़ते थे,
2: अभी नहीं देने पड़ेंगे
3: ड्राइविंग कंडीशंस के लिए. या तो नई गाइडलाइंस है, तो काफ़ी चीज़ें असेस की जाएंगी, उसके बाद ये चीज़ें जो है कुछ कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई रहेगी.
2: क्या बात है.
3: या वेरी गुड, थैंक यू सो मच. अब बताओ क्या पूछना चाहते थे तुम?
2: मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको, मैं कौन हूँ? मैं
3: रुस्बे हो.
2: नहीं, सवाल है ये मेरा.
3: ओके.
2: मैं सबके पास हूँ पर किसी को दिखता नहीं.
3: व्हाट एम आई? ओके.
2: जब तक मैं चलता हूँ आप चलते हो, जब मैं रुकता हूँ तो नोटिफिकेशन आता है लो बैटरी. मैं कौन हूँ?
3: मोबाइल.
2: ये ऑप्शन नहीं है.
3: अच्छा दोबारा बोलो फिर.
2: मैं सबके पास हूँ पर किसी को दिखता नहीं.
3: ओके.
2: जब तक मैं चलता हूँ आप चलते हो.
3: आई नो.
2: जब मैं रुकता हूँ तो नोटिफिकेशन आता है लो बैटरी. मैं कौन हूँ?
3: या आई नो. मैं आंसर नहीं बोल सकती ना अभी.
2: आपको पता है लेकिन?
3: हाँ मैं जो
2: हिंट,
3: पता चल गया.
2: हिंट
3: ये है कि ये दिखाई नहीं देता.
2: ये वही बोला है उसने.
3: वही ना.
2: ये वही बोला है. आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? व्हाट इज हैपनिंग यार? क्या है यार सैंडी यार?
3: हिंट ये है कि इसकी अगर शॉर्टेज हो जाए तो बहुत पंगा है.
2: किसको?
3: सबको. इसकी अगर शॉर्टेज होता है हो जाए
2: इसकी
3: तो.
2: शॉर्टेज हो जाए तो पंगा है सबको.
3: या ऐसा, और ऐसा हो भी चुका है. एक साल ऐसा गया है पिछले कुछ सालों में इसकी शॉर्टेज हुई थी. एंड मतलब जिसको चाहिए था उसको शॉर्टेज हुई थी, तो देयर वाज पंगा.
2: अच्छा आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो?
3: हाँ.
2: नहीं गलत है.
3: मैं सांसें की बात कर रही थी.
2: सांसों की माला? नहीं, वो नहीं आंसर. सोचिए आप इसके बारे में.
3: ओके.
2: सोचिए
3: डबल फाइव डबल नाइन बट ड्राइव कीवर्ड के साथ।
2: हिंट मैं दूं क्या? हिंट
3: हाँ प्लीज।
2: माधुरी दीक्षित।

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो जारी है आपके लिए एंड आज हम कुछ अलग कर रहे हैं. आज सुपर से ऊपर में 4:40 हुए हैं एंड वी आर अटेम्प्टिंग टू डू अ प्रैंक कॉल टुडे.
2: या सो

0: उनको अटेम्प्ट करने वाले प्रैंक कॉल उनके हस्बैंड ने ही हमें यहाँ पे बोला है कि उनकी वाइफ को प्रैंक कॉल किया जाए. तो देयर वी गो. सो अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा तो लेट अस नो.
1: पहले देख अपने को देखने दो कि सेगमेंट जा रहा कैसा है,
0: जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है. तो गाइस ये तो ऑन द स्पॉट ही रहेगा, तो लेट्स सी.
1: इट्स ऑन द स्पॉट. या वी डू एवरीथिंग ऑन द स्पॉट. सो लेट्स ट्राई इट आउट. वी आर गोना कॉल दिस पर्सन एंड
2: हाय इफ यू रिकॉर्ड रीजन फॉर कॉलिंग आई विल से इफ
0: अरे ये तो वॉइस पे
1: Lotto inquiry.
2: Thanks. On the line.

0: I'm sorry, this person is not available.
1: Oh no. देखा सैंडी, इसलिए पहले बेचना जरूरी नहीं है, मतलब ये कि आपको भी अच्छा लगे तो करना, क्योंकि देखो हुआ ही नहीं आ रही है. The call didn't get answered.
2: दोबारा ट्राई करना है.
1: दोबारा ट्राई करना है नहीं, अभी उतना टाइम नहीं अपने पास, लेकिन हम फिर से कुछ लेकर आएंगे आपके लिए थोड़ी देर में. बट अभी के लिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में दिस इज नेहा बसीन फॉर यू.
3: लेट्स गो
4: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: यू आर लिसनिंग टू हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आपके लिए हम यहाँ पे आज एक बहुत ही बढ़िया सा एक लेकर आए हैं सेगमेंट. लेकिन सैंडी देखो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, but the prank call that we've done,
1: yeah,
0: I think it's
1: we
0: gone.
1: We did the offer actually.
0: हमने offer किया है, वो 5 बजे के बाद आपको हम सुनाएंगे. लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे हमारे जो main कार्यकर्ता है इस prank call के पीछे. Hi.
2: Hi, Rusmi.
0: हाँ तो क्या क्या चल रहा है, scene क्या है घर पे? अभी आप घर पे हो, आप prank call आप
2: हाँ मैं यहीं पर था जब मेरी वाइफ को कॉल आया था, मतलब डिपोर्टेशन सुन के
3: कि मेरे नाम से क्यों किया, मेरे को नहीं बोलना, मैं क्यों, मेरे को क्यों बीच में फंसा रहे हैं,
2: मुझे क्यों जुआरी बनाया.
0: ओके भाविया सॉरी, पहले हम आपको अपोलोजाइज करना चाहेंगे. वी आर वेरी सॉरी यार, हमने आपको डरा दिया एंड पहले खुशी भी दी.
3: ही वाज टेलिंग टेल दिस ही वाज सेइंग ये बोल
2: लेकिन था तो ऑब्वियस है, इसके अनएक्सपेक्टेड था. इसने वो जो डिपोर्टेशन वर्ड सुना इसके हार्ट अटैक आ गया कि भाई अभी अभी आए अभी डिपोर्ट कर रहे हैं.
1: तो भाविया आपको ना एक बात कहना चाहेंगे लिसनर्स को, अभी हम बाकी जो है वो अभी सुनाने वाले जो आपके साथ हुआ है अभी कहानी उनको नहीं पता है, बट आपको ये बोलना चाहेंगे ऐसी प्रैंक कॉल से बचो. ये प्रैंक कॉल्स होती है और आपने बहुत अच्छा किया काट दिया फोन.
3: मेरे हस्बैंड ने ना
2: मैं तैयार करके रखता हूँ इसे वर्स्ट के लिए.
1: ऐसे स्कैम्स बहुत होते हैं.
2: ये भी मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि ये कहीं स्कैम कॉल तो नहीं, मैं न्यूजीलैंड में स्कैम कॉल नहीं आती.
3: मैं ये बोला मैं बहुत आती है स्कैम कॉल हो सकती है. मैं कब मेरे को नहीं बात करनी है.
1: अरे बहुत आती है यहाँ पे.
0: Wow.
1: Thank you, भाविया. लेकिन भाविया अगर आपको सुनना है कि प्रॉपर कन्वर्सेशन क्या हुई थी तो 5 बजे के एक गाने के बाद हम ये प्ले करने वाले हैं आपके लिए. एंड देन यू कैन एक्चुअली लिसन, ट्यून इन नाउ. ओके
0: ट्यून इन एंड लिसन.
1: और 5 बजे के बाद यू कैन लिसन.
2: भव्या का ना एक वर्ड है मखौल उड़ाना, तो अब ना पूरे न्यूजीलैंड में इसका मखौल
1: उड़ाया
0: जाएगा.
1: थैंक यू भाविया.
0: थैंक यू
1: सो मच.
2: थैंक यू
0: रुबेन.
2: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू.
0: अच्छा
1: सो गाइस 5 बजे के बाद जो भाविया के साथ हमने रिकॉर्ड किया है, जो प्रैंक कॉल रिकॉर्ड किया है, सो यू कैन लिसन आफ्टर 5 एंड यू विल नो कि क्या हुआ है.
0: क्या हुआ है,
1: क्या क्या हमने किया क्या वहाँ पे, जिससे उसको ऐसा डिपोर्टेशन क्यों बोलना पड़ा, वो सुनिए आप.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. और अभी टाइम आ गया है कि हम आपके लिए वो रिकॉर्डिंग लेकर आए
1: जहाँ पे हमने प्रैंक किया है किसी को. एंड ये अपने घर पे रिपीट ना कीजिएगा, डिस्क्लेमर आपको दे रहे हैं यहाँ पे. दिस वॉज जस्ट डन फॉर द फन पर्पसेज एंड ऑन क्या कह सकते हैं कि उनके घर वालों की परमिशन से.
0: हाँ, परमिशन ली थी हमने इसमें.
1: या
0: सैंडी यार, अभी ये सेफ कहाँ पे होता है यार, ये बहुत रिस्की है.
1: उसको तुम्हें सेव प्रोजेक्ट नहीं करना है.
0: नहीं करना है?
1: नहीं.
0: ओह नो.
1: उसको सेव एसेट करना था.
0: ओह नो, लग गई. चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं.
1: सेव एसेट नहीं किया तुमने?
0: नहीं, मैंने नहीं किया कुछ ऐसा.
1: तो क्या किया?
0: मैंने उसको सेव प्रोजेक्ट किया और फिर वो गायब हो गया प्रोजेक्ट.
1: तो ऑब्वियसली
0: एनीवे, एक काम करते सैंडी, वी विल प्ले दैट फॉर श्योर. नहीं, वी विल प्ले दैट फॉर श्योर. अभी के लिए आप कैरेक्टर गेस पे ध्यान दे.
1: बताती हूं ना,
0: ये मानेगी नहीं यार.
1: कहाँ
0: है रिकॉर्डिंग? ये है,
1: ओके.
0: अब मेरी पूरी मेहनत अनफोल्ड हो गई यहाँ पे, मतलब वेस्ट हो गई. पूरा प्ले करूँ मैं? चलो ठीक है, सुनते हैं ये फिर क्या कैसे हुआ इनके साथ अनफोल्ड. सो लेट्स सी. बहुत मुश्किल है यार ये सब ढूंढना. एनीवे मैं एक काम करता हूँ सैंडी, एक मिनट. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, लेट्स डू कैरेक्टर गेस नाउ एंड देन वील प्ले द प्रैंक आल्सो.
1: यू विल ड्रैग इट ऐसे नीचे, पता है ना?
0: नो, नेक्स्ट टाइम.
1: नेक्स्ट टाइम.
0: चलो ठीक है, ओके.
1: चेक करके नाउ यू कैन प्ले.
0: हाउ आर यू डूइंग? ये है हमारा प्रैंक. भाविया, वी कॉलिंग इन रिगार्ड्स टू अ लॉटो टिकट दैट वाज परचेस्ड ऑन योर नेम. आर यू अवेयर ऑफ दैट?
2: Yes.
0: So I just want to inform you that congratulations, your ticket was the winning ticket.
2: Oh.
0: Yeah. However, there's just one thing that we need to check and reconfirm. So our investigation team has come back and they have this query.
2: I have won.
0: Sorry.
2: How much I have won in the lotto?
0: Are you sitting right now? Are you driving?
2: Yeah.
0: You're not driving right now?
2: No, I'm at home.
0: Okay. I just want you to be calm, okay?
2: Yes.
0: So, just take it easy.
2: Yeah,
0: you've won $5 million.
2: Oh!
0: Yeah, congratulations, it's a big sum.
2: Thank you.
0: Yeah. No, congratulations, but there's just one thing that we need to tick off before we can proceed ahead. So
2: yes.
0: The numbers, that the winning numbers, it looks like there's been AI that's been used to get the numbers for your ticket. So can you confirm if did you select the numbers or was it just pre-chosen for you?
2: I have chosen by myself.
0: And did you use any AI model to get the numbers?
2: No.
0: Are you sure?
2: Yes. Yes.
0: All right. Okay. So basically, the way we'll proceed now is we'll go through a check now. So it's going to go ahead. It's going to go through a check and there's going to be an investigation around it. And if everything is fine, then you'll be the winner for $5 million. Congratulations. If there's something that comes up in the report, then we'll have to do an investigation and inquiry. And then there might be a possibility that there would be a case that would be registered for unlawful attempt. So you're okay with that, right?
2: Mm-hmm.
0: Hello?
2: Okay. Yes.
0: Yeah, you're okay with that?
2: Yes.
0: Okay, cool. I'm just going to transfer your call to one of my superiors and they will tell you the next steps for it, okay? Just hold on, please.
2: Sure.

0: Hi, is it Bhavya?
1: Yes.
0: Hi, Bhavya. Congratulations, first of all. So,
1: thank you.
0: Like we already informed that you have won $5 million. Congratulations once again.
1: Thank you.
0: And Bhavya, just few things. Like my colleague already conveyed you that no AI, as in no ChatGPT or Gemini, was used in taking out these numbers for the ticket. So okay, so we're just gonna do few checks and then we're gonna call you back. So when we do the few checks, we just, you know, check through our software that the numbers are not AI generated and all that. So you okay if anything is you can already confess, actually, you know, if something is like that. Otherwise, if you agree that nothing is generated AI, then there can be a case, you know, unlawful case on that. So just double checking on it.
1: If there is a use of AI, what will be the thing?
0: Then we have to consider, then we have to consider a few things and then we'll get back to you. So we can do that, but we'll have to have a bit of discussion and meetings and get back. There can be repercussions to that as well. So, so is there anything AI generated?
1: Some time I use AI, but not for this. But I use AI.
0: Okay. Did you use AI for these numbers?
1: Yeah.
0: Okay. Was it ChatGPT, Gemini, or what?
1: Gemini.
0: Okay. Just hold the line.
2: Hi, Bhavya. Are you there?
1: Yeah. Is there any fine for that?
2: So now that it's good that you have confessed, it's good that you have said it out, because if it would have gone further, and that's why I got my colleague also to speak to you, because if it would have gone further, there could have been like a case against you, and then it would have been a lot of a problem. So so let's do one thing. What I'll do is I will I'll just take this back and we will try to see how we can, you know, have a way around. But आपसे एक बात मेरे को पूछनी है हिंदी में. आपको हिंदी आती है ना?
1: Yes.
2: तो आप ये जो है जो amount है इसको आप share कर पाओगे?
1: Like what? There will be any fine or something or?
2: तो
1: like
2: fine
1: what?
2: Fine से बचाने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ, मतलब fine से बचने के लिए कुछ अराउंड एक, यू नो, एक रास्ता ट्राई कर सकते हैं.
1: लाइक व्हाट?
2: तो आप इसको शेयर कर पाओगे?
1: लाइक शेयरिंग? व्हाट काइंड ऑफ शेयरिंग यू आर टॉकिंग अबाउट?
2: तो बेसिकली व्हाट वी कुड डू इज वी कुड आपको 2 million हम कर सकते हैं और फिर बाकी का हमको प्रोसेस वो सब हैंडल करने में 3 million लग जाएगा.
1: And what will be the otherwise, how much will be the fine the other way?
2: A fine nahi hoga, direct deportation hoga usme fir. तो ये था आज का प्रैंक जो हमने किया इनके साथ और फिर हमें वहाँ पे कट करना पड़ा.
0: कट दिया
2: नहीं
0: था.
2: हमें कट करना पड़ा वहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि there were other things that we had to sort out. But anyway, what we want to say is कि ऐसा होता है कॉल जब भी आपको आता है
0: तो वो स्कैम होते हैं.
2: ये स्कैम होते हैं जब भी आपको कोई ऐसे ललचाने की अगर कोशिश करे, ग्रीड, फिर कॉल टू एक्शन, फिर अर्जेंसी, अगर ऐसी सारी चीज़ें अगर आप एक्सपीरियंस करते हो तो दैट मीन्स इट कुड बी अ स्कैम कॉल. तो डोंट फॉल फॉर इट. ये हम कहना चाहेंगे.
0: और कभी कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने जीता है तो आपको हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा, इतना आपको पे करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा. इसके नेक्स्ट में वो भी हो सकता था जो हमने नहीं किया, वो था कार्ड डिटेल्स मांगना.
2: वो हम उधर तक नहीं गए. बट ऑल वी वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस इज दैट प्लीज डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स,
0: दीज काइंड ऑफ कॉल्स.
2: बट हमारे साथ प्रैंक कॉल में पार्ट लीजिए.
0: या
2: एनीवे, वी गोना गेट इनटू कैरेक्टर गेस वेरी सून.

0: accurate traffic.
1: Monarch, a finish worth celebrating.
2: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10 degrees. On the northern, it's heavy from the Harbour Bridge to Northcote Road. The northwestern slow from Waterview to Rosebank. On the southern town to Manukau, 36 minutes. Drury, 57. It's heavy northbound Mount Wellington to Green Lane and south from Newmarket to Sylvia Park. Southwestern's heavy from Massey Road to Mangere Bridge and Puhinui Road to the southern.
1: Save time without compromising quality. Monarch's premium paint tools deliver a finish worth celebrating.
3: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
4: मुझे भी।
3: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है जैसे कि drying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है
5: moisture और ventilation का problem लगता है
6: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है
5: oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111 Reliance Ventilation Systems solving ventilation problems for over 18 years
8: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे
9: चूड़ी कंगन पायल बाली झुमके और चोकर ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं समझे
8: सोना संसार पापा टोटो जहां था वहां अभी भी है शॉप इनसाइड विद आशा डिजाइन स्टूडियो कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोटो
10: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटो सोना संसार यू आर नेवर टू ओल्ड For gold.
11: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
12: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
11: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
12: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
13: Are you ready to go home?
14: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
15: Power Drive at 5.
16: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Character Guess.
17: कैरेक्टर गेस का टाइम आ गया है 5:20 वी हैव वेरी लिटिल टाइम टुडे तो आपका साथ यहाँ पे चाहिए रहेगा टू आइडेंटिफाई ये कौन कैरेक्टर है जिसके बारे में सैंडी सोच रही है सैंडी अब शुरू कर लीजिए आप हिंट के साथ
18: तो मुझे तीन लोगों ने एक्चुअली में मैसेज किया रुस्बे
17: आपको हमेशा मैसेज आते हैं लोगों के
18: उनमें से मैंने जो एक पहले रीड किया बेसिकली मैंने वो पिक किया है बाकी दो मेरे लिस्ट में है थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए एक तो हमारे रेगुलर कॉलर है यहाँ पे जिन्होंने मैसेज किया था So here you go.
17: मुझे क्यों नहीं कोई मैसेज करता है यार मैंने क्या पाप किया यार
18: अभी हिंट मेरे को देना था ना उनको उनको आइडिया मुझे देना था
17: अच्छा
18: तो ये जो पर्सनैलिटी है जिसके बारे में मैंने सोच के रखा है आज गाइस इनके बारे में ये है कि समवन वंस कन्विंस्ड मी दैट चेंजिंग वन लेटर इन माय नेम वुड बी गुड करियर मूव
17: ओके
18: दिस इज द फर्स्ट हिंट
17: चलो ठीक है Someone yeah. once convinced me that changing one letter, ek hi letter.
18: In my name, yeah.
17: Change kiya letter.
18: Yeah. So, someone once convinced me that changing one letter in my name would be a good career move.
17: Would be a good career move. Was yeah. it then?
18: Is it a question? ye sawal hai kya?
17: Nahin, ye sawal nahin hai. Ek aur hint de do, Sandy, yaar.
18: Okay. Second hint is... I spent part of my childhood living with my maternal uncle.
17: With my maternal uncle?
18: Yeah.
17: Part of your childhood?
18: Part of the childhood living with my maternal uncle.
17: अच्छा 0800-004-866 जल्दी फटाफट बताइए यार maternal uncle के साथ ये रहे हैं और इनका एक name का भी change हुआ है.
18: नाम का change हुआ है.
17: नाम का कुछ change हुआ है.
18: And जो change हुआ है काफी लोग उसी नाम से ही मतलब उसी spelling से ही जानते हैं.
17: काफी लोग वही स्पेलिंग से जानते हैं, उनको पता ही नहीं कि ओरिजिनल स्पेलिंग कुछ और था.
18: मतलब जिनको पता है उनको पता है, ऐसा है ना.
17: अच्छा.
18: या पर्सनालिटी के बारे में अगर किसी को पता होता है अच्छे से, जो उनको अच्छे से जानना चाहते हैं, दे विल नो इट.
17: बट इट्स नॉट कॉमन नॉलेज. इट्स कॉमन नॉलेज.
18: इट्स नॉट अ कॉमन नॉलेज. या या.
17: सो
18: क्या है ये? 0800-004866 is the number. सवाल पूछो गाइस, जिसका जवाब मैं यस या नो में दूं.
17: हाँ, जल्दी सवाल पूछो यार. मतलब मेरे को सच्ची में लग रहा है कि ये हमें जल्दी नेल करना पड़ेगा आज. टाइम का बहुत कम है. रणवीर सिंह बोल रहे हैं अनिल.
18: इंटरेस्टिंग.
17: ये मटरनल अंकल के साथ रहे थे क्या? लेकिन
18: तो आपको सवाल पूछने हैं. कोई एक ऐसा सवाल पूछो जिसे आप थोड़ा क्लोज जा सके कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं.
17: तो पहले तो मुझे लग रहा है कि जानना जरूरी रहेगा कि ये क्या ये अभी एक्टिव है इंडस्ट्री में. मतलब ये जो इस इंडस्ट्री में जो पॉपुलर है, क्या ये अभी भी एक्टिव है उस इंडस्ट्री में? क्या उनकी मतलब ऐसे, हाँ मतलब काम कर रहे हैं क्या अभी भी एक्टिवली?
18: तो तुम्हारा सवाल है कि इज दिस पर्सन एक्टिव इन द इंडस्ट्री.
17: इज दिस पर्सन एक्टिव इन द इंडस्ट्री.
18: सो द आंसर इज यस.
17: दिस पर्सन इज एक्टिव इन द इंडस्ट्री.
18: या
17: एक्टिवली ये काम कर रहे हैं.
18: या
17: अब मेरे को बताओ आप कि कौन कौन है जिसने अपने ऐसे नाम ट्वीक किए. मेरे को एक ही मेरे जहन में आ रहा है, अजय देवगन. अजय देवगन का स्पेलिंग देवगन था, अभी देवगन हो गया.
18: ओके.
17: अरे वो सिर्फ
18: ए ओ यू का
17: नहीं, नहीं डी ई वी जी एन हो गया अभी ना देवगन.
18: अच्छा.
17: हाँ आपको नहीं पता था ना इसके बारे में? क्या पता था?
18: पता नहीं.
17: अच्छा. इंडियन और नॉट, ये सवाल आ रहा है यहाँ पे. यार मेरे को Is it confirmed that the person is from Bollywood? No, it is not confirmed yet. Confirm करना है क्या? चलो कर लेते confirm. मेरे को तो लग रहा है Bollywood से ही है यार. ये पूछ के मेरे को नहीं लगता time waste करना चाहिए हमने. लेकिन मेरा एक ही सवाल हुआ ना अब तक. दूसरा सवाल पूछ लूँ मैं? कोई कॉल नहीं कर रहा यार. कोई कॉल करके पूछो सवाल यार. क्या पूछ
18: सकते हैं? कोई सवाल पूछो गाइस. आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है? कुछ पूछो. मतलब थोड़ा ऐसा narrow down करो. I will say.
17: Is this person from Bollywood?
18: या
17: ऐसा बोला है उसने कि मतलब कि है भी और नहीं
18: भी. Done the Bollywood.
17: But not known for Bollywood.
18: Yeah.
17: Not known for Bollywood. But किया है Bollywood में काम.
18: Yeah.
17: ये हर किसी के लिए या बोल रही है भाई.
18: But जो मतलब सवाल है सही है.
17: सही है मतलब.
18: हाँ. जो तुम क्या पूछ रहे हो उसके के लिए आया है.
17: अच्छा ठीक है, ये सही है. मतलब तो बेसिकली ये बॉलीवुड में काम किया है लेकिन बॉलीवुड से नहीं है, नोन फॉर समथिंग एल्स है फिर ये. मतलब ऐसा कुछ तो भी है.
18: यू गॉट रियली गुड हिंट्स राइट नाउ गाइस.
17: या बहुत अच्छे हिंट्स मिले गाइस. तो अभी सोचिए, इज दिस पर्सन कॉमेडियन? कृष्ण अभिषेक. आप सोच रहे हो कृष्ण अभिषेक का आपने जो स्पेलिंग लिखा है वो आपका स्पेलिंग है मेरे को लग रहा है. वो उसका उसका स्पेलिंग नहीं है.
18: क्या यार,
17: अरे
18: दैट्स मीन.
17: ये बी एच आई एस ई के एच लिखा है बट मेरे को नहीं लगता उसका वो स्पेलिंग है ना. उसने क्या स्पेलिंग चेंज किया है? सो बेसिकली अपने पास अभी तक कितने हिंट आए हैं? अपने पास अभी तक हिंट है कि
18: तीन चीजें तुम्हें पता चली है कि समवन वंस कन्विंस मी चेंजिंग वन लेटर इन माय नेम वुड बी अ गुड करियर मूव. आई स्पेंड पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड लिविंग विद माय मैटरनल अंकल. दिस पर्सन has done the Bollywood.
17: Has done Bollywood but has not is not known for Bollywood basically.
18: Yeah, not prominent in Bollywood but yeah, has done the Bollywood.
17: Okay, okay.
18: Yeah.
17: All right.
18: Ek gana suno aur uske baad main aapko aur hint deti hu.
0: Bollywood's most wanted.
19: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao.
20: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: जब नौटियाल और सुवर्णा तिवारी की आवाज में सुन रहे थे अभी बहुत ही प्यारा सा गाना। वैसे अभी हमें यहाँ पे शायस्ता ने ज्वाइन इन किया है। हाय शायस्ता, वेलकम टू द शो।
1: हाय रुस्ते।
0: तो शायस्ता बताइए, आपने क्या सोचा था, आपने क्या सवाल पूछना सोचा?
1: I was asking कि क्या ये म्यूजिशियन है जिसने बॉलीवुड में थोड़ी बहुत मूवीज की है।
2: That's a great question actually.
0: ये बहुत अच्छा question है। लेकिन आप सोच रहे, आपके मन में
1: कौन? He's known more for his music and his songs rather than Bollywood movies.
0: और आपके मन में कौन है ये?
1: दलजीत
0: दोसांझ। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा सवाल है, ये पूछना चाहिए।
2: But maybe narrow down na, rather than asking direct kuch aisa question so that aapke ek question na waste ho. I mean, you never know, it's a waste or it's a benefit.
0: Yeah.
2: But then narrow down, I will suggest.
0: क्योंकि मेरे को क्या लगता है मालूम है शायस्ता, मेरे को लगता है कि देखो दिलजीत दोसांझ का नाम चेंज मेरे को पता नहीं है क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई अल्फाबेट चेंज हुआ है उसके स्पेलिंग में? No idea.
1: I'm not sure. लेकिन एक इंटरव्यू में मैंने सुना था that he spent his years with one of his family members rather than his parents, if I'm not mistaken.
0: Wow. So you are a Diljit fan.
2: A fan होने की ज़रूरत नहीं ना, interviews सुनी होती है.
0: बट उसको बोलने तो ना, हाँ है ना, फैन है तो है यार सैंडी। आप अकेले हो क्या फैन, आपको अकेले अलाउड है क्या?
2: ऑफर बोला था ना अभी, मैं इसलिए बोल रही हूँ।
0: बोला था, ओके। तो शायस्ता क्या सवाल पूछना चाहिए यार, आपको क्या लगता है?
1: मैंने ऑलरेडी पूछ लिया सवाल ना, क्या ये म्यूजिशियन है,
0: वो ही पूछना है फिर, मतलब
1: थोड़ी बहुत मूवीज कर चुका है।
0: क्योंकि हमारे पास एक और यहाँ पे सवाल आ रहा है अभी, वो बोल रहे हैं कि इज दिस पर्सन और कैरेक्टर वन एनी रियलिटी शोज। रियलिटी शो वाला भी सवाल बहुत ही तगड़ा है ना वैसे देखा जाए तो।
1: हाँ,
0: he
1: was
0: दिलजीत दोसांझ नहीं था मेरे को लगता कोई रियलिटी शो में।
1: No, okay.
0: तो एक काम करते हैं, हम रियलिटी शो वाला पूछते हैं सवाल, अगर वो ना रहा तो मतलब फिर वो दिलजीत हो सकता है।
2: पर जरूरी है कि म्यूजिशियन ही हो,
0: वो भी है ना।
2: There are many different other areas, right?
0: Get a hint for save your question. Great point. Please hint though. Hint though.
2: Another hint. ठीक है.
0: Another hint.
2: Good one. So, my next hint is, my first performance happened because the actual performer was late.
0: My first performance happened because the actual performer was late.
2: Yeah.
0: Oh no, ये मेरे को बहुत देखा देखेला लग रहा है यार। और ये active भी है currently, ये active है। तो ये इनका first performance हुआ क्योंकि performer was late.
2: Yeah.
0: ओइला, ये बहुत भारी hint है। क्या लगता है आपको, अभी भी लगता है दिलजीत दोसांझ हो सकता है ये?
1: I have no idea.
0: म्यूजिशियन वाला सवाल पूछ लेते हैं मेरे को लगता है, क्योंकि सैंडी ने बोला था गुड क्वेश्चन है। चलो शायस्ता आप ही पूछ लो यार।
1: सैंडी, is it a musician?
2: This person, yeah, is a musician.
0: Is a musician?
2: Okay. Yeah, is a musician. Yeah.
0: मतलब singer
2: is in the music.
0: Is in music.
2: Yeah, that's how I will put it. Yeah.
0: So he's known for music, matlab.
2: This person is majorly known for the music.
0: Majorly known for music.
2: Yeah.
0: And minorly known for acting.
2: Not minorly, but yeah, majorly for music.
0: Majorly.
2: Are you asking another question, Rusbe?
1: No. I so asked only one question. Yeah.
0: तो आपको क्लियर हो गया ये।
2: तो एक और हिंट दे रहा, अगर इफ यू वांट अनदर हिंट आई कैन गिव अनदर हिंट एज़ वेल।
0: दे दो एक और दो हिंट।
2: ओके, हमारे पास आंसर्स भी बहुत आए हैं रुस्बे।
0: आज आंसर आया है श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल ने भी नाम बदला है क्या? श्रेया घोषाल है, कपिल शर्मा है, म्यूजिक एंड कॉमेडियन बोथ। कपिल शर्मा ने नाम बदला है क्या यार, मेरे को ये सब ना आइडिया ही नहीं होता यार। एक और हिंट दे दो यार सैंडी।
2: माय नेक्स्ट हिंट इज कौन सा वाला, हाँ ये बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, ये नहीं बोलती मैं जो मैं बोलने वाली थी बहुत ऑब्वियस है वो.
0: अच्छा
2: ओके, मैं ये बोलूंगी ये पर्सन यूज्ड टू

0: करण जोहर के शो में उन्होंने केली जेनर के लिए कहा था कि ही लाइक नहीं केली जेनर ही आई थिंक केली जेनर या कोई और सम आई मीन सम एक्ट्रेस वो रियलिटी शो
1: वो रियलिटी शो वाली है क्या केली जेनर
0: नहीं मुझे पता नहीं नाम केली जेनर है कि कुछ और है बस ऐसे ही कुछ नाम है बट इट इज आई नो दिलजीत दोसांझ ने कॉफी विद करण में किया था
1: ओके ओके राइट
0: और पहले वाले कॉलर ने बोला कि वो मैटरनल अंकल के साथ रहा था एंड ट्रू इन एन इंटरव्यू ही डिड से बिकॉज ही वाज नॉट लिविंग विद हिज पेरेंट्स ही वेंट आउट टू लिव विद हिज अंकल सो मेरे हिसाब से तो यही है
1: ओके ओके प्रीति थैंक यू सो मच यार वेरी गुड वेल डन थैंक यू
2: गुड वन वैसे अभी एक लास्ट सीन बाकी है कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो
1: अच्छा ये काइली और केंडल जेनर बट शी इज वन ऑफ द कार्डेशियंस शायद से ऐसा मैसेज आया एक अच्छा तो क्या मेरे को सवाल पूछना है
2: सवाल पूछना पूछ सकते हो तुम्हारे कितने सवाल हुए तीन ना
1: तीन तीन
2: हाँ और मेरे चार हिंट हुए
1: तो एक लास्ट हिंट बाकी है
2: लास्ट हिंट अभी बाकी है
1: दे दो एक लास्ट हिंट यार
2: ओके माय लास्ट हिंट इज दिस पर्सन can turn kitchen into dance floor
1: nice ye acha hint hai
2: yeah this person can turn kitchen into dance floor koi call yahan pe karke agar answer dena chahega
1: koi call kijiye yahan pe abhi acha inse baat karte hai hi
3: rosebe hi
1: bolo akash
2: Yeah, Akash. Uh-huh.
3: Have you guessed it?
2: Not yet, but he's already almost there.
3: हाँ, तो मुझे लग रहा है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो वही है.
1: जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वही है. आपको भी लग रहा है दिलजीत दोसांझ है.
3: क्योंकि काइली जेनर और वो उसने गाना भी तो बनाया ना. Do you know?
1: That's right.
3: उसी के लिए. इसलिए तो तुम लोगों ने कंफ्यूज भी किया है कि उसको मेरे घर से उसके इंस्टा पे उसने डीएम किया था.
1: कहीं पे
3: तो
1: थैंक यू आकाश थैंक्स फॉर योर कॉल मैन
2: थैंक यू आकाश
1: मैसेज आ गया हमें यहाँ पे यस फ्रॉम दलजीत टू दलजीत ऐसा हुआ है इसलिए सैंडी हमेशा उसको दलजीत दलजीत बोलती है क्या आप दिलजीत बोलते हो ना हमेशा दिलजीत को आप दिलजीत कभी नहीं बोलते हो उसको
2: ओ अच्छा
1: हाँ क्यों ऐसा क्यों करते हो आप
2: आई थिंक इट्स अ पंजाबी थिंग
1: ओ इज इट ओके तो आखिरी सवाल पूछने का टाइम आया यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक सवाल आया है कि क्या इस पर्सन ने न्यूजीलैंड में एक से ज्यादा शोज किए है क्या
2: या
1: एक दो से ज्यादा
2: या
1: तीन से ज्यादा
2: तीन से ज्यादा मुझे याद नहीं
1: तीन
2: है
1: तीन शोज किए मतलब ना
2: या आई थिंक तीन
1: शोज किए हैं
2: या
1: अच्छा ठीक है आई थिंक गाइस आई थिंक वी हैव गॉट इट यार आई थिंक वी हैव गॉट इट
2: यू गो मेरे को लगता है हैट्स ऑफ टू शाइस्ता आई विल से
1: शाइस्ता यार बहुत सही पकड़ा यार मैं नहीं पकड़ पाता कैसे पता चला शाइस्ता को
2: वही ना इसीलिए मेरे को वो बात याद रही उसने बोला ना कि आई एम नॉट मतलब फैन नहीं है वो लेकिन फिर भी पता है दैट्स व्हाट आई एम शॉक्ड अबाउट कि वाओ यार फिर भी पता है
1: ऐसे ही 92,000 लोगों को नहीं खींच लेता है ना वो स्टेडियम में
2: यार दलजीत सो बेसिकली दलजीत में DAL वाज अ नेम बट देन ही चेंज्ड इट टू DIL और करियर मूव के लिए एक्चुअली में अच्छा था वो ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड विद हिज मामा जी मैटरनल अंकल या ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन ही स्टार्टेड मेकिंग रील्स किचन में सो खाना बनाते समय तो किचन इनटू डांस फ्लोर हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस हैपेंड बिकॉज मास्टर सलीम वाज लेट
1: क्या बात कर रहे हो सीरियसली
2: उससे पहले उसने शादियों में बहुत गाने गाए हैं जैसे शादी में बुलाता था कोई कि आके थोड़ा सा एंटरटेन कर दे ये वो थोड़ा बहुत स्टेज पे वो बहुत किया है बट देन इज फर्स्ट एक्चुअली परफॉर्मेंस हैपन बिकॉज मास्टर सलीम टाइम पे नहीं थे तो उनको मौका मिला स्टेज पे जाके परफॉर्म करने के लिए
1: अरे क्या बात है यार
2: या
1: वाओ
2: या एंड काइली जेनर वाला तो बहुत किस्सा है
1: हां वो तो पता है डू यू नो
2: या वही
1: अच्छा थैंक यू सो मच एंड यार ग्रेट ग्रेट वन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू या योर
2: आई ट्राइड कि हिंट्स थोड़े ऑब्वियस ना रखूं बिकॉज बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है ना
1: या नहीं बट बहुत अच्छा था दैट वाज रियली गुड एंड वेल डन ऑन शायस्ता यार शायस्ता यू वन द शो आई थिंक टुडे फॉर दिस वन

0: Andrews पे।
1: अरे माशाल्लाह इंशाल्लाह क्या बात है, आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे।
0: हम Throwback brought to you by 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, that's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction।

0: Chris Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Kitchen Mania free installation.
3: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10. On the northern, heavy from West Haven to Esmond. The northwestern slow from Waterview to Rosebank. The southern to Manukau, 32 minutes from town. Drury, 46. Heavy both directions between Sylvia Park and Green Lane. There's a crash southbound on State Highway 1 at Pokanoa near Miko Road. Southwestern's heavy Massey Road to the southern and north from Mangere Bridge to Onehunga.
2: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply. 3, 2, 1, rush!
4: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
5: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone-in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. Altogether Auckland.
7: Versace, Lancome, Marc Jacobs, Cavalli, Guess, Elizabeth Arden, First Aid Beauty.
8: Oh, there's too many. Just say all the biggest names.
7: Oh, okay. All the biggest names in beauty, 15 to 25% off. Big Beauty Week, 9 to 15 September at Life Pharmacy.
0: Hum, time check.
9: Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800 00 00 10.
0: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good evening, I'm Bridget Hastie with the latest at 6. Government agencies acknowledge there were multiple opportunities to find Tom Phillips and his three children sooner. A public inquiry found it took police 6 days to visit the fugitive's abandoned vehicle, while warnings from immediate family members were brushed aside. Oranga Tamariki's Amanda Malu says it's clear some actions fell short of expectations.
11: As chief executive, I'm accountable, and I'm here today accepting accountability and accepting the recommendations. I haven't offered my resignation. I'm not going anywhere.
10: A woman has been accused of trying to smuggle $3.7 million worth of meth through Auckland Airport. The 25-year-old arrived in New Zealand from Singapore yesterday. A customs search uncovered a false bottom in her bag, hiding more than 12 kilograms of the drug. There is relief that routine cognitive testing is being ditched for older drivers. Instead, it will be based on need. Karen Billings-Jensen from Age Concern says the old routine caused a lot of anxiety.
12: There's a whole range of things that would determine whether someone is fit to drive, not just a cognitive test that really didn't have the evidence behind it in terms of driving.
10: Bird flu has been ruled out as the cause of death of the Lower Hutt leopard seal. It will now have a post-mortem exam. To sport, Eden Park sold out quickly for Sunday's sudden death NRL clash between the Warriors and the Knights. Jackson Ford and Luke Metcalf are out injured. Centre Leka Halasima was rated as highly doubtful. Rugby League with Machinery House in a league of their own. And a feature of the Super Rugby Pacific competition next season will be more Sunday games. There will be 10, 6 more than last season, and a full competition round across the Easter weekend.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
13: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
14: Sujit kiya jata hai. Satish Chand, Sharmila, Shobna aur Neeta ke pita, Savitri ke pati, Surin Chand ki mrityu, Waitakere Hospital mein ho gayi. Antim Sanskar, Wednesday 16 September ko dopahar 1 baje Anne's Funeral Home mein kiya jayega. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0273646393 पर कॉल कर सकते हैं। सतीश चंद, शर्मिला, शोभना और नीता के पिता, सावित्री के पति सुरेन चंद की मृत्यु वाइटाकरे हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार वेडनेसडे 16 सितंबर को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0273646393 पर कॉल कर सकते हैं। बिनेश समर, आत्माराम, स्नेहलता और बेला सिंह की मां, उषा समर की सास, भूतपूर्व लोकाला बे सुवा निवासी स्वर्गीय राम समर की पत्नी जसोदा कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार वेनसडे दोपहर 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बिनेश को कॉल करें 0214963221 पे। बिनेश समर, आत्माराम स्नेहलता और बेला सिंह की माँ, उषा समर की सास, बहुत पूर्व लोकाला बे सुवा निवासी स्वर्गीय राम समर की पत्नी जसोदा समर की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार वेनसडे को दोपहर 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बिनेश को 0214963221 पे कॉल करें। सूचित किया जाता है रातुमारा रोड नोम्बोआ फीजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र एवोंडेल के प्रकाश लाल के पति ऑकलैंड के शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनील लाल के पिता, फीजी में फॉर्मर नसीनो और सुआ सॉकर रेप एवोंडेल के सुनेश लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार थर्सडे 17 सितंबर को दोपहर 1 बजे मनुकाव मेमोरियल गार्डन्स विरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0223104961 पर कॉल कर सकते हैं। रतुमारा रोड नम्बुआ फीजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र एवोंडेल के प्रकाश लाल के पति ऑकलैंड के शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनील लाल के पिता, फीजी में फॉर्मर नसीनो और सुआ सॉकर रेप एवोंडेल के सुनेश लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार थर्सडे 17 सितंबर को दोपहर 1 बजे मनुकाव मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0223104961 पर कॉल कर सकते हैं।
13: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
15: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
16: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusby.
15: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
14: छह बज चुके हैं, ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सैंडी, हाउ इज इट गोइंग?
17: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रुजवे, इट्स गोइंग गुड। और आज ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए ऐसे गाने लेके आने वाले हैं हम, जहाँ पे फीमेल नाम का जिक्र हुआ है,
14: नॉट जस्ट फीमेल नाम,
17: मेल नेम्स का,
14: मेल नेम,
17: नामों का जिक्र हुआ है,
14: नामों का जिक्र हुआ है। और सारे तो नाम नहीं हम कवर कर पा रहे, लेकिन हाँ काफी गाने हैं बॉलीवुड में जिसमें नाम यूज हुए हैं।
17: ओया,
14: तो आपको कौन से गाने आपके यू नो दिमाग में आते हैं जब आप सोचते हो कि नाम वाले गाने?
17: अरे यार वो भी तो था, कितने गाने रह जाएंगे। वो जो गाना था मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, कहीं प्यार ना हो जाएगा।
14: ओ प्रिया,
17: ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, सो या बहुत कम गाने प्ले हो पाएंगे समर में, बिकॉज़ 1 आवर का शो ही करते हैं एंड इसमें बातें भी होती है।
14: प्रिया ने कॉल नहीं किया बहुत टाइम से यार,
17: प्रिया ने कॉल नहीं किया, राइट?
14: हाँ यार प्रिया कॉल,
17: प्रिया मेरे को लगता है बॉलीवुड में ये नाम बहुत कम हो गया है ना अभी, पहले कितना ट्रेंडिंग था 90s में, निशा, प्रिया, ऐसे नाम बहुत ट्रेंडिंग थे।
14: अभी शनाया, अनाया और ऐसे सारे नाम बहुत ज़्यादा,
17: ऐसे सारे नाम जो है अभी वो बॉलीवुड में आ चुके हैं। इट्स गोइंग विद द ट्रेंड आई गेस, ट्रेंड ऑफ द रियल लाइफ।
14: या
17: जैसे रियल लाइफ में नाम इवॉल्व हुए हैं,
14: जैसे पहले नेहा और पूजा बहुत कॉमन नाम होते थे,
17: या नेहा, पूजा, प्रिया वाज क्वाइट कॉमन नेम एज वेल,
14: कॉमन, बट अभी नहीं हो रहे इतने ज़्यादा।
17: या
14: वी नीड टू ब्रिंग प्रिया बैक।
17: और मेरे को लगता है बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस रहा है ना काफियों में।
14: हाँ,
17: बॉलीवुड में अगर नाम जैसे राहुल नाम वो सो कॉमन इन द बॉलीवुड कि रियल लाइफ में भी हमें बहुत राहुल दिखाई दिए।
14: राहुल, राज,
17: राज,
14: ये भी काफी,
17: रोहित,
14: रोहित भी काफी था।
17: प्रेम, प्रेम मैंने रियल लाइफ में प्रेम ज्यादा नहीं सुना है।
14: नहीं नहीं प्रेम है ना यार, बहुत
17: है क्या
14: प्रेम, हाँ, हाँ।
17: ओके, मैंने रियल लाइफ में इतना प्रेम नहीं सुना है जितना बॉलीवुड में प्रेम सुना है।
14: बॉलीवुड में प्रेम तो बहुत है।
17: या सो या समीर,
14: समीर
17: इज क्वाइट, मेरे को लगता है ये सैफ अली खान के साथ भी कॉमन था। सैफ अली खान था ना समीर?
14: नहीं,
17: सलमान खान भी था उस मूवी में। समीर कौन था? दिल चाहता है में
14: दिल चाहता है मैं समीर, मेरे को लग रहा है वो था उसका बॉयफ्रेंड अक्षय, वो समीर था,
17: छोटा सा रोल था बेचारे का, फिर भी कितना फेमस हुआ
14: हो गया वो, लेकिन
17: इट्स जस्ट लाइक गजब बेइज्जती वाला गाय, एक डायलॉग था लेकिन फेमस.
14: सो एनीवे, अभी आपको हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं विद दिस सॉन्ग जो काफी लोग बहुत एंजॉय करेंगे.
17: Because और थोड़ी देर में एक सवाल भी नामों के अराउंड आपके लिए.
14: एक्चुअली मैं इस मूवी में ना जाने तू या जाने ना में दो गाने ऐसे थे जो नाम के बेस पे थे. एक गाना तो हम आपको सुना रहे, दूसरा कौन सा ऐसा गाना था जो जिसमें भी नाम का जिक्र हुआ था, ये हमें आप 5599 पे ड्राइव कीवर्ड के साथ लिखकर भेजिए.

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और आज हम नामों को लेकर गाने आपको सुना रहे हैं। तो आपने अभी ये सुना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बहुत ही पॉपुलर गाना हुआ था और मुन्नी के ऊपर था ये गाना।
1: और रुजबे ने एक सवाल पूछा था कि जाने तू या जाने ना में एक और गाना था नाम के ऊपर,
0: वो कौन सा गाना था। काफी लोगों ने यहाँ पे सही मैसेज भेजा है, थैंक यू सो मच फॉर योर करेक्ट आंसर्स ओवर हियर। 4599 पे आप भेज सकते हो।
1: अभी एक और सवाल है आपके लिए इस नाम के अराउंड ही, आपको बताना है ये किस एक्टर का नाम है। शिवाजी राव गायकवाड़।
0: शिवाजी राव गायकवाड़
1: ये किस एक्टर का नाम है,
0: ये तो मैं जानता हूँ।
1: या लेट्स सी कितने लोगों को ये नाम पता है, बिकॉज जो उनका फिल्मी नाम है वो नाम तो ऑफ कोर्स बहुत फेमस है।
0: ये मेरे हिसाब से जो ये जो पर्सन है ये सिर्फ एक्टर नहीं, ये
1: लेजेंड है।
0: भगवान इनको, हाँ, इनकी इनके मंदिर है इनके।
1: ये लेजेंड है एक्चुअली में,
0: लेजेंड है ये।
1: शिवाजी राव गायकवाड़ किस एक्टर का नाम है,
0: गायकवाड़
1: ओके ये किस एक्टर का नाम है ये आपको बताना है। 5599 इज अ नंबर। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पे एशियन फैमिली सर्विसेज में आप बात कर सकते हैं। इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस। पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स, रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग, रीच आउट एंड टॉक टू अ ट्रस्टेड प्रोफेशनल। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। एशियन हेल्पलाइन में आप बात कर सकते हैं 0800-862-342 पे, जहाँ पे आपको फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलती है। अगर आप किसी इमीडिएट डेंजर में हैं तो आपको कॉल करना है 111 पे।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very acceleration.
4: That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This
5: record,
4: is my fancy
5: say.
4: English. That's a very.
5: अरे होता है, सब चलता है, आधी नींद में हूँ मैं।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
6: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
2: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
11: Dash! If you've got an injury like a sprain or strain, staying active with gentle movement that's right for you can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recoversooner.
12: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
13: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
12: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
14: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
15: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein, plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes, or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
16: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $299. Iceland fridge freezer, just $299. My Dia washing machine, just $299. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
2: TradeDepot.co.nz.
17: The beat of Bollywood.
18: World's best
17: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
18: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.

0: The OG Munni song आप सुन रहे थे, which was from Remo Fernandez, 90s में ये album में आया था ये गाना.
1: Yeah.
0: बहुत ही तगड़ा गाना, अभी भी मेरे को लग रहा है काफी एकदम ही relevant गाना है ये.
1: 100%. आपको बता दें कम्युनिटी में क्या क्या हो रहा है. हम फीजी हम कीर्तन संग्रह जो है इसकी रिकॉर्डिंग 25 सितंबर को वैदिक सेंटर में हो रही है. रिकॉर्डिंग जो है ये आप बाद में ऐप पे हमारी सुन पाएंगे. सो हम की टीम को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे एंट्री फ्री रहेगी 25 सितंबर को. और उसी के साथ साथ वैसे बहुत सारे और कम्युनिटी इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि 7 डे श्रीमद भगवत कथा हो रहा है. 14 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है 20 सितंबर तक भारतीय मंदिर में. यू कैन सेलिब्रेट द डिवाइन स्पिरिट ऑफ डिवोशन एंड 100 ईयर्स ऑफ पिछवाई विद ब्रज रास रासिक डॉक्टर श्री कृष्ण किंकर जी, एंड जो कि नाम संकीर्तन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है.
0: क्या बात है. इसके साथ साथ गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं काफ़ी जगहों पे. आप नॉर्थ शोर भी जा सकते हैं. इसके साथ साथ आप वेद प्रचार वीक के लिए जा सकते हैं 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर. 32 ग्लासगो है पापाटोटो 6:20 PM. 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड.
1: और श्री राम मंदिर में भी गणेश उत्सव रहेगा आज से लेकर 20 सितंबर तक. एवरी नाइट फ्रॉम 7:20 PM टू 9 PM अंटिल द फाइनल डे 20 सितंबर. पूजा शुरू हो जाएगी सुबह 9 बजे से एंड गणेश विसर्जन विल हैपन 12 PM. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन राम मंदिर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.
0: आज हम आपके साथ यहाँ पे गाने आपको सुना रहे हैं पूरे घंटे अबाउट सॉन्ग्स दैट हैव नेम्स इन इट. एंड ये जो अगला गाना है, दिस सॉन्ग इज नॉट अ नेम बट अ मोर लाइक अ निक नेम और अ पेट नेम जो बोलते थे फॉर वन ऑफ द पॉपुलर एक्ट्रेसेस जिनके ऊपर ये गाना फीचर्ड भी है. तो आपको अगर पता है कौन है ये, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप 4599 पे मैसेज कर सकते हैं.
1: और उससे पहले जो हमने सवाल पूछा था कि शिवाजी राव गायकवाड़ ये किन का नाम है,
0: और सही आंसर आ गए हैं यहाँ पे एंड द राइट आंसर इज रजनीकांत. अभी आप बताइए ये गाना जिसके ऊपर फीचर्ड है, अलिशा चिनॉय ने इस गाने को गाया है, ये इसमें एक्ट्रेस कौन है जिनका निक नेम भी इस गाने का टाइटल है.

0: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
1: Another common name in Bollywood jiske upar gaane bahut bane hai, wo hai Radha.
2: Yes.
1: Iska bahut hi significance hai kyunki Radha is considered not just a name. It is also an emotion.
2: It is emotion as well. And thank you so much वैसे आज यहाँ पे साथ देने के लिए. जाने से पहले आपको याद दिला दें कि this Thursday election special show आपके लिए हम drive show में लेके आ रहे हैं 5 बजे. एक्ट पार्टी लीडर डेविड सेमर पहले गेस्ट है जो हमारे साथ ज्वाइन होंगे, क्योंकि पॉलिसीज के बारे में, प्रायोरिटीज उनकी क्या रहेंगी अगर वो यू नो पोजिशन पर आते हैं, उनका विजन क्या है न्यूजीलैंड के लिए, ये सारे सवालों के जवाब वो यहाँ पे देने वाले हैं हमारे साथ यहाँ पे लाइव. तो आप भी उस समय पर या पहले हमें मैसेज करके सवाल जो है ये पूछिए आप 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ.
1: आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एसेंस कि आप हमें यहाँ पे आपके सवाल यहाँ पे पूछें. हमारे इंस्टाग्राम पे जाके यू कैन सेंड अस अ प्राइवेट मैसेज, या फिर फेसबुक पे जाके भी आप हमें मैसेज कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे सैंडी @sandysekho या फिर मेरे को आप मैसेज कर सकते हो rusbe_dabawa, या फिर फेसबुक पे आप हमें ढूंढ के मैसेज कर सकते हो. लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपके सवाल यहाँ पे हम एड्रेस करें, बिकॉज न्यूजीलैंड स्पीक्स ये सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑन द ड्राइव शो 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच ऑन एवरी थर्सडे अंटिल द इलेक्शन. एंड इसमें अभी तो डेविड सिमर हमको ज्वाइन करने वाले, बट वी आर होपिंग टू गेट मोर पार्टी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज एज वेल. और उन सबको हम उनके पॉलिसीज के अराउंड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो हमें हेल्प करेंगे टू डिसाइड हम किसको वोट करना चाहते हैं और किसको वोट करेंगे.
2: तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग एवरी पार्टी के लीडर्स या फिर कोई ना कोई स्पोक्सपर्सन उनका यहाँ पे.
1: और विद दैट इट्स टाइम फॉर अस टू से बाय बाय. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए. मुलाकात आपसे होगी कल. अपना ख्याल रखिएगा.
2: बाय.

You're listening to Coke Studio Reloaded, artist information par baat hai. Pehla artist Shankar Mahadevan, India's most respected playback singers mein se ye mane jaate hain aur composers bhi bahut respected hai ye. Major figure in Indian fusion music kyunki he was part of the original Coke Studio India lineup aur inhone Allah Hi Rahim jaise gaane ko perform kiya aur O Maji Re aur aise gaano ko gaake ye bahut prasiddh ho gaye is kshetra mein bhi. Coke Studio Fusion Songs में भी मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और आर्टिस्ट पर बहुत ही जल्दी सुनिधि चौहान और कैलाश खेर पर बातें करेंगे.

0: Studio Reloaded. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कोक स्टूडियो रिलोडेड में। आगे बढ़ते हुए सुनिधि चौहान एक पावर हाउस ऑफ बॉलीवुड सिंगिंग ये कर चुकी है, पावर हाउस बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर ये है और एनर्जेटिक वोकल स्टाइल इनका है। ये भी फर्स्ट सीजन में आई थी इंक्लूडिंग द कोक स्टूडियो ट्रैक बिछुआ और बहुत ज़्यादा इनको पॉपुलैरिटी मिला। एंड सुनिधि चौहान इज़ क्वाइट ह्यूज आर्टिस्ट जो बहुत ही अलग अलग तरह के गाने गा चुकी है, लेकिन एनर्जेटिक वोकल स्टाइल अगर बोला जाए तो शी लीड्स द इंडस्ट्री इन दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स या जॉनरा के गाने, तो इनका भी बहुत ही बड़ा नाम है। इसके अलावा कैलाश खेर इनका डिस्टिंक्टिव सूफी इंस्पायर्ड वॉइस है और इट ब्लेंड्स रियली वेल विद इंडियन फोक और कंटेम्प्रेरी म्यूजिक और ही वॉज अमंग द हेडलाइन परफॉर्मर्स ऑफ द फर्स्ट सीजन। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: Night Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: anywhere you get your podcast.
1: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
7: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
0: Night Cafe on Hum. Coke Studio Reloaded.
8: आप सुन रहे हैं कोक स्टूडियो रिलोडेड. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं और ऐसे ही हमारा साथ चलता रहेगा ऑल द वे टिल मिडनाइट. इसके लिए बस आप हमारा साथ दे. कोक स्टूडियो रिलोडेड 9 PM तक आपके लिए चलेगा. एक और सिंगर है पेपॉन. असमी सिंगर है ये. कंपोजर और मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है. इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है जिसका म्यूजिक कम्बाइंस फोक ट्रेडिशंस विद कंटेम्प्रेरी साउंड्स. ये मल्टीपल सीजन्स ऑफ कोक स्टूडियो इंडिया में अपीयर हो चुके हैं. इनका गाना आपने शायद सुना होगा जो मेल वर्जन ऑफ ये मोह मोह के धागे. ये तो फिल्म गाना है, कोक स्टूडियो के गाने नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने गाए हैं, आई थिंक ही इज़ गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लासिकल बेस. तो इनका भी बहुत ही प्रसिद्ध नाम है. शफकात अमानत अली पर बातें करेंगे और रघु दीक्षित जैसे सिंगर्स के बारे में बहुत ही जल्दी.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ke saath hai Rova. Agar aapne abhi tak download nahi kiya hai to zarur kijiyega. Rova ko use karne mein bahut fayde hain. Aapko pata hai bahut sare competitions bhi Rova ke zariye hote hain. Hamare music plus stations bhi aap Rova par sun payenge. Hum rewind ho, hum 80s jukebox ho, Fiji bhajans ho ya chardi kala Punjabi hits ho, Fiji kirtan sangra ho ya phir Rahat Fateh Ali Khan ke Sufi aur Qawwali songs ka ek bahut hi pyara list ho. तो ये सभी कुछ आपको रोवा पर ही मिलेंगे. तो रोवा पर पॉडकास्ट का भी एक्सेस आपको मिल सकता है. तो इस तरह से आप बहुत फ़ायदे में रहते हैं. कॉम्पिटिशन्स और प्राइजेज जीतने के लिए भी रोवा बहुत ही फ़ायदेमंद है. तो आज ही डाउनलोड करें आपके फ़ायदे के लिए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम, नाइट कैफे जारी है एंड इट विल बी फॉर यू अंटिल मिडनाइट. मैं क्रिश आपके साथ देता रहूँगा.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're humming along with Krish on your number one, humping Bollywood's biggest hits. कुछ ना कुछ अलग हम पर होता है. Trend makers के बारे में आपने सुना होगा. About this musical podcast, ये एक power packed musical journey है जहाँ पर हर गाना curate किया गया है around a unique theme in Drive Show with Sandy and Rusbe. From genres जो eras को define करता है to tributes celebrating legends of Bollywood, चाहे वो iconic singers हो, visionary composers हो, poetic lyricists हो या फिर unforgettable actors हो, हर एक episode में एक story आपको मिलेगा और वो भी through संगीत music. अगर ये जो एक और जो एपिसोड आप सुनना चाहेंगे, ये इसमें अगर आप एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए सिर्फ जा रहे हैं, यू आर कवर्ड, क्योंकि स्पेशली क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बनाया गया है टू सेट द मूड, कीप द एनर्जी अप, और एवरी किलोमीटर ऑफ योर जर्नी काफ़ी एंजॉयबल बन सकता है. चाहे आप सनसेट्स को चेस कर रहे हो या हाईवेज क्रूज कर रहे हो या फिर सिटी ट्रैफिक में स्टक हो, द मिक्स जो होंगे इस गानों का, इट विल बी परफेक्ट ट्रेवल कंपेनियन ऑन द रोड. लिसन करने के लिए टेक्स्ट करें TM 5599 पर और या सर्च करें ट्रेंड मेकर्स ऑन रोवा ओनली. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
2: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
0: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
3: Night Cafe.
5: You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Unfiltered Drive सुनना ना भूले. बहुत interesting topic पर बातें हो रही है, जैसे कि if you die tomorrow तो आपके पैसों का, आपके घर का, कीवी सेवा, jewellery और business का क्या होगा. काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसका आंसर काफ़ी obvious है, ये चीज़ें आपके partner, आपके बच्चों या आपके family के पास जा सकता है. But what if that's not actually how it works? In New Zealand, अगर आप will के बगैर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका estate will be subject to intestacy laws और outcome may not be what you expect, क्योंकि जो एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ड्राइव विद सैंडी और रिज़बे होने जा रहा है, इसमें अनकंफर्टेबल, ऑफ्टन अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट ऑफ विल्स, एस्टेट्स और व्हाट हैपेंस आफ्टर यू डाई, इस पर बातें होगी और सम ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस को अनकवर किया जाएगा अराउंड इनहेरिटेंस और एस्टेट प्लानिंग. तो इसमें तानिया पिंटो सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट है, इनसे बातें होगी. Who will break down what happens when someone dies without a will, aur unke assets ke liye kaun entitled rahenge, aur why having a partner doesn't necessarily mean ki automatically unko sab kuch mil jayega, aur kya hota hai agar family disagree hote hain about an estate. Drive text kare 5599 par for full audio, ya phir unfiltered with send your rusbe text search kare on Rover and Spotify for the podcast. Main Krish aapke saath de raha hoon.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're having along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits night cafe jari hai. Fiji Kirtan recording. Fiji Kirtan ko nayi uchaiyo tak pahunchane mein aapke sahyog ke liye dhanyawad. अब हम पीजी कीर्तन संग्रह ओकलैंड के कलाकारों की रिकॉर्डिंग करके आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए तैयार है। रिकॉर्डिंग फ्राइडे 25 सितंबर को वैदिक सेंटर पापाटोई में होगी। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के लिए टेक्स्ट करें KR 25599। ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। याद रहे, रजिस्ट्रेशन डज नॉट कन्फर्म ए रिकॉर्डिंग स्पॉट, सिर्फ 20 आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग की जाएगी और हम रिकॉर्डिंग कन्फर्मेशन के लिए आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन क्लोज ऑन 13 सितंबर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ओनली ऑन हम।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. Kuch aur samajik suchnaye aapke liye. Experience the divine wisdom of Shri Krishna with Brajras Rashik. Dr. Shri Krishna Kinkar ji, jo Shri Dham Vrindavan ke hai. Naam Sankirtan world record holder hai. Ye ek 7-day Srimad Bhagavat Katha host kar rahe hai from 14th to 20th September. 7:30 p.m. To 9:30 p.m. hoga Bharatiya Mandir, New Zealand, Sandringham mein. Journey from Vrindavan to Auckland through Shri Krishna's divine लीलेस, टाइमलेस विजडम और इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके साथ यहां पर शेयर किया जाएगा और सेलिब्रेटिंग द डिवाइन स्पिरिट ऑफ डिवोशन एंड 100 ईयर्स ऑफ पिचवाई. आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर जाकर यहां पर इस ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन में भाग ले पाएंगे. बहुत ही अलग अनुभव होगा, सेलिब्रेशन ऑफ श्री कृष्णा राइट हियर इन ऑकलैंड. मैं कृष आपका

0: Streaming on Rover.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट. नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
6: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.

0: Cafe on Hum.
1: You are listening to number one Humpling, Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ सामाजिक सूचना है आपके लिए. श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है. ट्यूजडे 15 सितंबर से लेकर संडे 20 सितंबर के तक सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. और भी जानकारी के लिए आप 09836 4647 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. माँ प्रसाद हर एक दिन आपके लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है एक बार फिर कल नाइट कैफे लेकर मैं आ जाऊंगा। अपना बहुत ही ख्याल रखे, कृष का बहुत सारा प्यार, गुड नाइट एवरीवन।

दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: Express Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIA Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें।
1: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
2: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
1: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
3: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
2: ये आखिरी
1: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग टीबीसी।
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
4: Night flight.

0: FM.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
4: तो क्या करें?
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
8: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry, limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
9: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है. अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन.
10: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ.
11: और मैं नहीं करता.
9: दायरा, रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर.
11: ओपन शट केस है, उनकी स्टोरी ओवर है.
12: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है.
9: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग टीबीसी.

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manuko and Poke Kohi. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuko and Poke Kohi. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jainku. Playing Bollywood's biggest hits. Budget Gandhi. Night Flight.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure, and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
3: Bollywood ka asli blockbuster. Pure sheher pe kabza hoga Raju.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: Very acceleration. That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Hey Neha, congratulations on your first home. Tune to kaha tha ki do banks ne loan dene se aur ek famous broker ne to case lene se hi मना कर दिया था। ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
5: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
8: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है, अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, दायरा स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
9: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
10: और मैं नहीं करता।
8: दायरा रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर।
10: ओपन शट केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
9: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
8: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग टीबीसी।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind, ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
2: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
3: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi. Playing Bollywood's biggest hit.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Hey, नेहा, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। फिर ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
6: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: हाँ। अच्छा
9: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह।
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz।
13: ग्रेट न्यूज, flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
14: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
15: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
14: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
16: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800 4NZPMI।
17: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
18: Time check.
19: Brought to you by Mann Tires for all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00010.
20: Good morning. Is samay theek 6 baj rahe hain.
18: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
21: Good morning, I'm Gary Denver with the latest at 6. The Waitomo community is pleased to get the full story over the disappearance of the Phillips children. A public inquiry has found police and Oranga Tamariki could have prevented their father taking them into the bush. Mayor John Robertson says publication of the report was never about closing the book on the incident.
22: Closure happened a year or so ago. These reports fill in some information on what went on.
21: New data finds employers going the extra mile to build more support around those taking parental leave. Crayon CEO Stephanie Powell says their register of 370 companies shows a graduated return to work, once quite rare, is now mainstream.
23: With 43% of employers specifically offering a ramp up to returning parents and 12% actually supporting parents to work part-time but be paid full-time during that transition period.
21: Motorsport will take centre stage in a venue better known for rugby, cricket and concerts next year. Wellington will host the sought-after Race of Champions event in January. Wellington NZ Chief Executive Mark Aldershaw says the event will contribute beyond the vibrancy it brings to the city.
24: Last year it brought in around about $140 million to the local economy, so this is another really good example of ensuring that we can continue to bring that to Wellington.
21: To Rugby League with Machinery House in a league of their own, Dallin Watene Zalesniak has a chance to return for the Warriors this weekend. The wing broke his collarbone last month but has been named in the extended squad for Sunday's NRL Finals game against the Knights at Eden Park by coach Andrew Webster.
1: He's inspirational, just wants to play so badly for the team. Had to hold him back a bit at times, just calm down.
21: The Kenyan capital of Nairobi will host the World Athletics Championships for the first time in 2029.
18: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
2: Hum par shok soochnaye aap tak laate hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
20: Suchit kiya jata hai ki Binesh Sumer, Atma Ram, Snehlata, Bela Singh ki ma, yani Usha Sumer ki saas, लवदाला बाई सुबह फीजी की भूतपूर्व निवासी राम सुमेर की पत्नी यानी जसोदा कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज शाम 3:30 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-496-321 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे विनेश सुमेर, आत्मा राम, स्नेहलता और बेला सिंह की मां, उषा सुमेर की सास यानी लवदाला बाई सुबह फीजी की भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय राम सुमेर की पत्नी, जसोदा कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज शाम 3 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप विनेश को 021-496-321 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि सतीश चंद, शर्मिला, शोभना और नीता के पिता सावित्री के पति यानी सुरेंद्र चंद की मृत्यु वैटाकरे हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 027-36-46-393 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि रातुमारा रोड नंबू अफीजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र यानी एवनडेल की प्रकाश लाल के पति ऑकलैंड के शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनील लाल के पिता फीजी में फोमा नसीनू और सुवा सोखरेप एवनडेल के सुनेश लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे मैनिकाव मेमोरियल गार्डन्स 361 पोहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-3104-961 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे रातुमारा रोड नंबू अफीजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र यानी एवनडेल की प्रकाश लाल के पति ऑकलैंड के शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनील लाल के पिता फीजी में फोमा नसीनू और सुवा सोका रैप एवनडेल के सुनेश लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे मैनिकाव मेमोरियल गार्डन्स 361 पोहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-310-4961 पर कॉल कर सकते हैं।
2: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
18: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
18: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
4: Close to 13 degrees temperature, Auckland mein bhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 16, overnight kam se kam 10 degrees rahega. Badal chhaye rahenge, rehkar kuch halki barish bhi aaj ho sakti hai. Sunrise bas 13 minuton ke baad hoga aur sunset aaj shaam 6:13 par hoga.
18: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
18: Breakfast Catch Up.
20: Hello, Hello, Kira. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Aaj hai Wednesday, 16th of September. Aur filhal 7 minute ho rahe hai, 6 bajkar. Good morning, aapko.
4: Good morning, good morning. Welcome to the Breakfast Show with Vijay and Pooja. Aaj ki ye subah, aap sabhi ko bahut bahut baar shubh aur mubarak ho.
20: Aur jahan kahin bhi aap hamara saath de rahe, chahe 104.2 FM par ya phir Rover app ke zariye, aapka special welcome hum kar rahe hain aaj on the Breakfast Show with Vijay and Pooja, of course. Aur dusri aur aapko ye bhi दिला दे, this is the breakfast ketchup.
4: और अभी हम बताएंगे थोड़ी देर बाद आपको खबरों में क्या कुछ है, इसकी जानकारियां आपको देंगे. और आज तमाम चीज़ों के बारे में बातें तो होनी ही हैं. इनाम जीतने के मौके आपकी खुशियों में शामिल होंगे और जो ज़रूरी खबरें हैं ये भी आपको हम देंगे.
20: तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा, बिकॉज वी विल बी डूइंग दिस विद यू ऑल. थोड़ा थोड़ा कर धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते रहेंगे. बट फॉर नाउ अ वेरी गुड मॉर्निंग and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Done.

0: सनी साइड अप।
1: तो आज की सनी साइड अप स्टोरी जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड आई वुड से कि ये एक रिमाइंडर भी है कि कभी कभी एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस एक बहुत बड़ी मेमोरी जो है ये बन जाती है, और एक ऐसी मेमोरी बन जाती है जो पैसों से भी ज़्यादा वैल्यू होल्ड करती है। और ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है, दिस इज़ अबाउट अक्षत जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जल्द से जल्द, और वो उन्होंने एक कैब जो है ये बुक की दिल्ली एयरपोर्ट जो है ये पहुंचने के लिए। और द मेन हीरो ऑफ दिस स्टोरी वुड बी हिज कैब ड्राइवर जिनका नाम है दिनेश रावत। तो अपेरेंटली जब अक्षत दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अपना जो पेमेंट है अपने ट्रिप का ये करने की कोशिश की, UPI पेमेंट के थ्रू जो ये उन्होंने कोशिश की, बट द पेमेंट फेल्ड।
2: ओके।
1: और 1227 रुपीस टू बी प्रिसाइज उनका फेयर जो है ये था। और उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि दिस द सिचुएशन, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ड्राइवर को सीधे सीधे साफ साफ बताया कि आई ट्राइड बट पेमेंट नहीं हो रहा है। एंड इन दैट सिचुएशन जब ड्राइवर ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने ये भी बताया कि ही इज़ जस्ट रशिंग, वो रश करके एयरपोर्ट इसीलिए आए बिकॉज एक डेथ हो चुकी है उनकी फैमिली में और वो मुंबई के हैं, और वो दिल्ली से मुंबई जो है फ्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं टू रीच दे ऑन टाइम ताकि एक आखिरी बार अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनको वो देख सके। तो जब ड्राइवर को ये बात पता चली तो इन दैट सिचुएशन लाइक एनी ड्राइवर जो शायद करते बिकॉज उनकी मेहनत की कमाई है और 1227 रुपीस कम पैसे भी नहीं होते
2: जी,
1: तो वो आर्ग्यू करते, वो कहते कि नहीं आप पैसे दो तभी जाना, या उनको यू नो उनको रोके रखते कि आप कहीं से
2: भी
1: ला कर दो। या आजकल के ज़माने में इट्स हार्ड टू बिलीव एनी वन ना, स्पेशली ए स्ट्रेंजर। लेकिन इस सिचुएशन में ड्राइवर ने यही कहा उनसे कि आप जाओ, इट्स ओके, अगर आपने पैसे दे दिए भेज दिए बाद में भी तो वो मेरी किस्मत, और अगर नहीं भेजे तो ऊपर वाला है, आई विल मैनेज, ये उन्होंने कहा। एंड देन उसके बाद में अक्षत जो है ही वेंट, उन्होंने फ्लाइट बोर्ड की, वो मुंबई गए, जो फ्यूनरल था वो अटेंड किया, एंड व्हेन ही केम बैक टू हिज सेंसेस आफ्टर ऑल द सिचुएशन, उन्होंने ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ये इंटरनेट पर डाली, अपना एक्सपीरियंस इंटरनेट पर डाला। उन्होंने पूरी कहानी जो इंटरनेट पर डालने के बाद ड्राइवर का जो नाम है ये भी शेयर किया, और उसके बाद जाकर इनकी कहानी जो है काफ़ी पॉपुलर हुई, वायरल हुई फॉर ऑल द राइट रीजंस। और ऑफ कोर्स बिफोर इनकी स्टोरी जो इंटरनेट पर डालने से पहले उन्होंने उनको जो UPI पेमेंट है ये कर दिया था एज ही प्रॉमिस्ड।
2: ओके।
1: तो उन्होंने पैसे जो है ये जरूर उनको भेजे, और फिर इसके बाद उनकी वीडियो जो ये बनाई, एंड ही प्राइज्ड द ड्राइवर कि इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्होंने ट्रस्ट किया इन अ वे और उनको जाने दिया, अदरवाइज वहीं पर खड़े रखते, आर्ग्यूमेंट होता, डिसएग्रीमेंट्स होते, पैसे ला कर दो कहीं से भी ला कर दो, ये सिनारियो होता, तो शायद अक्षत जो है समय पर पहुंच भी नहीं पाता ना मुंबई।
2: एग्जैक्टली। कभी कभी अ लिटिल बिट ऑफ काइंडनेस टेक्स यू अ वेरी लॉन्ग वे। और अब देखो ना कि अपने चाहने वाले को अंतिम विदाई भी अक्षत दे पाए और टैक्सी ड्राइवर को उनका पैसा भी मिल गया।
1: एब्सोल्युटली।
2: बट हमेशा भी आप ऐसे
1: नहीं कर सकते यार, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव बिकॉज ही इस सिचुएशन में तो बात यही हुई कि अक्षत सच बोल रहा था, पर इन मेजोरिटी सिचुएशंस पीपल एक्चुअली लाई एंड ट्राई एंड गेट अवे फ्रॉम सच थिंग्स ना। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ रिमाइंडर कि अच्छाई भी दुनिया में होती है फ्रॉम अक्षत्स एंड एज वेल, क्योंकि उन्होंने एज प्रॉमिस्ड पैसे जो है ये बाद में भेजे जरूर। फिलहाल 18 मिनट हो रहे हैं 6:00 और आज है वेंसडे 16th of September। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट कैचअप में आपके लिए हम लेकर आएंगे ग्लोबल हेडलाइंस।

0: Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. Jankariyon ke liye hum sunte rahein.
1: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800 862 342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
2: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
3: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
5: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
9: Global Headlines.
10: सुबह के मुख्य समाचारों में पेंटागन के वॉचडॉग ने ईरान वो पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पहली बार स्वीकार किया गया है कि ईरानियन स्ट्राइक्स ने मिडिल ईस्ट के कई यूएस बेसिस पर हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स और क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान के हमलों के बाद सेंटकॉम को अपने पर्सनल असेट्स और स्टोरेज फैसिलिटीज को शिफ्ट करना पड़ा जिसके चलते इराक और कुवैत से मेडवेक हेलीकॉप्टर्स को हटाकर ग्राउंड इवैक्यूएशन अपनाना पड़ रहा है बहरीन में नेवी हब के तबाह होने के बाद यूएस मिलिट्री को 14 टू 18 दिनों के दूर डियोगो गार्सिया आइलैंड पर रिलाय करना पड़ रहा है जिससे रीजनल सप्लाई चेन और सेल्स के ऑपरेशंस पर बड़ा असर पड़ा है पश्चिमी बंगाल में बीजेपी सरकार एक्सटोशन और इलीगल लेवीज को रोकने के लिए एक स्पेशल लॉ लाने की तैयारी कर रही है जिसमें एक्सटोशन को एक स्पेसिफिक ऑफेंस के रूप में डिफाइन किया जाएगा बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक्सटोशन और सिंडिकेट राज को ख़त्म करने का बड़ा वादा किया था जिसे पूरा करने के लिए अब सरकार एक स्पेशल कमेटी बनाने जा रही है फिजी में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन रिपोर्ट अगले मंगलवार 22 सितंबर को स्पेशल पार्लियामेंट सीटिंग में टेबल की जाएगी जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी कमीशन ने 41 सीट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 19 सीट सेनेट और फाइकेक की प्रोसिक्यूशन पावर्स को ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस को देने की रिकमेंडेशंस की है 2013 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट में टू थर्ड्स मेजोरिटी के साथ साथ पब्लिक रेफरेंडम की जरूरत होगी जिसके लिए नेशनल रेफरेंडम बिल का पास होना अभी बाकी है भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 मैच जीत लिया है आज सुबह हुए मैच में भारत की जीत 7 विकेट से हुई अफगानिस्तान ने अपने इनिंग्स में 8 खिलाड़ी खोकर 159 रन बनाए जबकि जवाब में 14.5 ओवर्स में भारत ने 3 खिलाड़ी खोकर 163 रन बनाए इस मैच में इंडिया की ओर से संजू सैमसन ने 22 बॉल्स पर 57 रन्स, अभिषेक शर्मा ने 19 बॉल्स पर 39 रन्स, ईशान किशन ने 23 बॉल्स पर 38 रन्स जो है ये बनाए थे। दोनों टीमों के बीच आखिरी T20 मैच अभी खेला जाना बाकी है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
9: Bollywood's most wanted.
11: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आऊं।
12: मैं लाऊं अपना A game.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है और बॉलीवुड में अगर देखें बहुत ज़बरदस्त तैयारियां जो हैं ये चल रही हैं 27th ऑफ नवंबर के लिए क्योंकि 27th ऑफ नवंबर को रिलीज होने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म ये प्रेम मोल ले लिया ये प्रेम मोल ले लिया जो है ये सूरज बरजाटिया डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को आयुष्मान खुराना और शर्वरी वाघ इस फिल्म में लीड रोल्स जो है ये प्ले कर रहे हैं और इस फिल्म की शूटिंग जो है पिछले महीने ही पूरी हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी बहुत बड़े म्यूजिकल इवेंट के साथ इस फिल्म के गानों को लॉन्च किया जाएगा जो कि रॉयल एल्बर्ट हॉल में होने को है जहाँ पर हिमेश रेशमिया जो है ये परफॉर्म करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने एक बार फिर कोलैबोरेट किया है इस फिल्म के साथ ये प्रेम मोल ले लिया और इस फिल्म की ओर अगर देखें तो मेकर्स का कहना है कि ये एक फैमिली एंटरटेनर है आयुष्मान खुराना शर्वरी वाघ के अलावा अनुपम खेर शाद रंधावा सुप्रिया पाठक और साथ में स्वनंद किरकिरे जैसे कई कलाकार इस फिल्म में काम करने वाले हैं और 11 सालों के बाद आई थिंक प्रेम रतन धन पायो में सूरज बरजाटिया और हिमेश रेशमिया ने एक साथ काम किया था जिसके बाद अब चलकर उन्होंने राष्ट्रीय प्रोडक्शंस जो है वो एक साथ आए हैं विद महावीर जैन फिल्म्स और इस फिल्म को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट्स रिलीजिंग ऑन द 27th ऑफ नवंबर तो आयुष्मान खुराना शर्वरी वाघ काफी हाइप्ड अप हैं इस फिल्म को लेकर
1: सो इट्स अ गुड न्यूज पहली बार ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं एज वी हैव नोटिस्ड कि शर्वरी वाघ जो है ये काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में अभी नजर आ रही हैं अब दिस फर्स्ट कोलेबोरेशन ये इनके लिए कितना अच्छा अभी साबित होता है ये खैर देखने वाली बात होगी
0: अभी अन्य मूवीज की ओर अगर देखें द मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवीज एंड शोज के लिस्ट में नंबर 10 पर है वाइब
1: वाइब ओ यस कुणाल खेमू जो ये से डायरेक्ट कर रहे हैं
0: इस फिल्म में शायद कुछ छोटे मोटे कट्स वगैरह जो है ये किए गए हैं अपार्ट फ्रॉम दैट उसको अप्रूवल मिल गया है लस्ट स्टोरीज 3
1: ओके
0: एंड नंबर 8 पर है सीन आई डोंट नो मच अबाउट दिस मूवी कि ये क्या है नंबर 7 पर राणा बाली
1: I don't know what's that, yeah.
0: मुझे भी नहीं पता नंबर 6 पर है द पैराडाइज नंबर 5 दृश्यम द कंक्लूजन नंबर 4 रामायण नंबर 3 वान द फोर्स ऑफ फॉरेस्ट नंबर 2 पर है दायरा
1: यस करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन मेघना गुलजार इसे डायरेक्ट कर रही हैं और इट सीम्स टू बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फिल्म आपने अगर इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो आप जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं इनफैक्ट वन के बारे में आपने मेंशन किया तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा उसमें काम कर रहे हैं और उसका भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है यू कैन गो एंड चेक इट आउट एज वेल
0: ओके और फिल्म दायरा जो है ये आई थिंक हमारे हम .rover.nz पर जो स्टोरी है उसके मुताबिक दिस इज द 10th अडल्ट फिल्म ऑफ करीना कपूर खान
1: अडल्ट फिल्म इज इट
0: जो आई रेटिंग सीबीएफसी द्वारा दिया जाता है ना अडल्ट रेटिंग इस फिल्म को दी गई दिस इज द 10th फिल्म और इस फिल्म का ट्रेलर जो है उसका लिंक भी वहीं पर आपको मिल जाएगा और द मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवी और शो 20.6% के साथ मुझे भी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है आईएमडीबी के मुताबिक राइवल विलेजेस हैं रांखो और लोंगमई
1: जी
0: ये इनके बारे में ये कहानी है और कहाँ पर है ये प्लॉट जो है इसके बारे में भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है मुझे आई एम ट्राइंग टू रीड व्हाइल ग्लांसिंग थ्रू ये हिंदी में है 18th ऑफ सितंबर को ये रिलीज होने जा रही है सो जस्ट 2 मोर डेज
1: यस तो लेट्स सी और ये जो फिल्में रिलीज होने वाली है आने वाले दिनों में ये कितनी अच्छी साबित होती है कितनी बड़ी एंटरटेनर साबित होती है वंस वी गेट टू वॉच इट दैट्स व्हेन वी कैन डिसाइड राइट तो आपके लिए डिटेल्स हम जरूर लेकर आते रहेंगे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर फिलहाल के लिए आपको ये भी हम याद दिला दें कि थोड़ी देर बाद आज यानी कि 16th ऑफ सेप्टेम्बर को क्या कुछ मार्क किया जा रहा है इस पर करेंगे आपके साथ कुछ डिस्कशन और साथ ही साथ आज का पहला सवाल ये भी आपके लिए हम जरूर लेकर
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है
2: हम
3: accurate traffic.
4: Wardrobes Direct spring sale.
5: Maybe a little sun, a mostly cloudy one all day today, high of 16 degrees. Into the city at the moment, Southern Motorway 24 minutes, Manukau to Town 42 from Drury, slow Papakura to Papatoetoe and Sloan at Mount Wellington. Southwestern fine, but a bit of traffic on George Bolt heading to the airport terminal. Northwestern 20 minutes in from Massey, just slowing down close to the city. Northern 18 in from Constellation, slow there to Waito Valley.
4: Upgrade your wardrobes and sliding doors. New spring sale. Visit Wardrobes Direct's two Auckland showrooms.
6: Reliance Ventilation System.
7: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, ceiling आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: Moisture और ventilation का problem लगता है.
7: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
6: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
8: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
9: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
10: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
9: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
11: First home buyer बनना है या investment property लेनी है, तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
12: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
13: हाँ. अच्छा,
12: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
13: मिसेस सिंह.
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
15: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130 50 और विजिट focuskitchens.co.nz.
16: It's time to protect your health, and NIB's got your back. For a limited time, get a $200 gift card when you sign up for NIB's hospital policy cover. Offer available after paying for your first 3 months. Eligibility criteria and terms and conditions apply, including the insured person to be over 16 years old. Offer ends 30 November 2026. Future you will thank you for it. Find out more at nib.co.nz.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
2: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
3: 20 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में वैसे 7 बजने में. ठीक 7 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे. बट बिफोर दैट आपके गुड मॉर्निंग के मैसेजेस हमारे पास आए हैं. सो थैंक यू सो मच सबसे पहले सुबह सुबह हमें याद करने के लिए, अपना कीमती समय हमारे नाम करने के लिए. आज द वेरी फर्स्ट मैसेज जो हमारे पास आया, बॉबी मान जी आपकी ओर से, थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैव अ वंडरफुल डे, गणेशस ब्लेसिंग्स टू नाइट, न्यू लोटो, गुड लक, इन्होंने कहा है.
4: साथ में राम राम, जय माता दी एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे. मिस्टर मटा मटा आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वेंसडे.
3: और इसके अलावा आपने भी अपना गुड मॉर्निंग मैसेज अगर भेजना है हमारे पास तो आप जरूर ऐसा कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज हमें टेक्स्ट कीजिए ऑन 5599. हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है 5599. एंड वंस यू सेंड योर मैसेज अक्रॉस तो यस वी विल बी ऑल सॉर्टेड. आपके लिए शाउट आउट हो, डेडिकेशन हो, जो भी हो ये हम जरूर कर सकते हैं. पर फिलहाल के लिए आज है द 16th of September. क्या कुछ आज हो रहा है?
4: आज वर्ल्ड बाबा डे मार्क किया जाता है.
3: Okay.
4: And these people, jo hai, they work really hard. You know, whenever I go for a haircut, एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि ये दिन में कितने घंटों तक खड़े रहते हैं.
3: Oh yeah.
4: क्योंकि बैठकर तो बाल काट नहीं सकते ना.
3: True.
4: And जब बहुत ज़्यादा busy होते हैं, एक बंदा उतरता है कुर्सी से, दूसरा बैठ जाता है.
3: Yeah, break नहीं मिलता ना.
4: हाँ. And just I was just thinking कि कितने लंबे समय तक ये खड़े रहते हैं दिन भर में. एंड व्हेन डू दे एक्चुअली टेक अ ब्रेक. तो आज उनको अप्रिशिएट करने का दिन है. और इसके अलावा आज वाकामोली डे है.
3: ओह नाइस.
4: और साथ में प्लेडो डे, किड्स एब्सोल्युटली लव प्लेडो. और उसके साथ वेकिंग पेरेंट्स डे, ये भी आज मार्क किया जा रहा है. और भी तमाम चीज़ें जो हैं ये आज मार्क की जा रही हैं. बर्थडेज की ओर अगर देखें तो बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं राम लक्ष्मण, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था.
3: ओके.
4: शुरू शुरू में मुझे लगता था कि ये दो लोग
3: हैं क्या.
4: हाँ, क्योंकि ऐसा देखा नहीं, यूनिक है ना कि राम और लक्ष्मण नाम दोनों एक ही शख्स के.
3: ट्रू.
4: और उनके साथ आज अपना बर्थडे प्रसून जोशी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं.
3: वेरी इंटरेस्टिंग. सो अगर इनके साथ आज आपका भी बर्थडे है, यू कैन लेट अस नो 5599. जैसे कि हमने आपको बताया हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं. और डेफिनेटली आपके लिए जो बर्थडे ग्रीटिंग्स है ये हम लेकर आएंगे अगले घंटे. फिलहाल चलिए आज का हमारा पहला सवाल ये आपके लिए हम लेकर आए हैं. और आंसर्स आप हमारे पास ऑन 5599 जरूर सेंड कर सकते हैं. आपको पहचाननी है आज की बॉलीवुड मूवी. एक सिंपल सा लड़का है, शादी करना चाहता है, लड़की भी तैयार है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम है लड़की की फैमिली का बिजनेस, जो लड़के वालों के लिए काफी क्वेश्चनेबल है.
4: लड़की की फैमिली का बिजनेस,
3: जो फैमिली बिजनेस है उनका.
4: हाँ.
3: वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है लड़के वालों के लिए. कौन सी फिल्म ये हो सकती है? थिंक अबाउट इट.
4: मेरे मन में एक फिल्म आ रही है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है. बट एक फिल्म मेरे मन में आ रही है.
3: ओके, लेट्स सी. क्या आप आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे पहचान पाते हैं या नहीं? वन मोर टाइम, लिसन टू द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. सवाल है, एक सिंपल सा लड़का है, शादी करना चाहता है, लड़की भी तैयार है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लड़की का फैमिली बिजनेस लड़के वालों के लिए थोड़ा क्वेश्चनेबल है. अगर आपको पता चल चुकी कौन सी फिल्म है ये, तो अपने आंसर्स हमारे पास आप सेंड करें. BF लिखना है सबसे पहले, यानी ब्रेकफास्ट का शॉर्ट फॉर्म. BF लिखे, अपना आंसर लिखे, अपना नाम लिखे और 5599 पर सेंड कर दे. आपको दे रहे हैं करीबन 5 मिनट्स का टाइम. आज तो देखना ये है क्या कोई भी इस मूवी को पहचान पाता है या नहीं. फिलहाल हमारा आज का पहला मोस्ट रोमांटिक ट्रैक ऑफ दिस आवर, मौसम फिल्म आई थी 2011 में, शाहिद कपूर सोनम कपूर ने इसमें काम किया था, उसी का ये गाना आपके लिए.

0: vehicle warranty. More ways to save at Winger Motors East Auckland, North Shore and Pukekui or winger.co.nz. On now till 30th September. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: Get ready, Auckland City. This Thursday, be first through the doors at Nolim and Queen Street for grand opening deals too good to miss. Save big on a huge range of tech. Enjoy giveaways, a live DJ and more at Nolim and Queen Street. T's and C's apply.
2: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
3: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
5: 9 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है कि आपके लिए इस प्रोग्राम में हम जरूर लेकर आएंगे सवाल जो आपने पूछा है उसके कुछ जवाब आपने भेजे हैं सो थैंक यू सो मच स्टार्टिंग ऑफ विद आलोक कृणाल संदीप क्रिस्टीन आप सभी ने अपने आंसर्स भेजे हैं
6: राहुल है जेरी है साथ में वंदना है रोनील है आपने भी अपना जवाब हमारे पास भेजा है
5: और साथ में टेस हैं दिवनेश और रोनल आपका भी आंसर आया है सल्लू अ वेरी गुड मॉर्निंग थैंक यू सो मच आपके गुड मॉर्निंग मैसेज के लिए
6: वैसे इधर हमने जो सवाल पूछा है ऐसा नहीं कि इसके सिर्फ सही आंसर्स आए हैं गलत आंसर्स भी आए हैं काफी आए हैं इनफैक्ट जैसे वंदना ने कहा है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी उसके अलावा हमारे पास सोचा ना था टेस आपने अपना जवाब जो ये भेजा है दिवनेश ने कहा है वेलकम बैक और रोनल ने कहा है चलते चलते वेलकम बैक जो है हमारे पास इनफैक्ट से कॉमन आंसर जो है ये आया है कृति आपने भी यही जवाब जो है ये भेजा है देविका है साथ में मोरिन है इसके अलावा शलनीत आपका भी यही आंसर आया है वेलकम बैक तो मैं आपको बता दूं ये आंसर गलत है इट्स द रॉन्ग आंसर

0: आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और फिर अपना जवाब हमारे पास अब सेंड कीजिए। एक सिंपल सा लड़का है, शादी करना चाहता है, लड़की भी तैयार है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लड़की वालों का फैमिली बिजनेस लड़के वालों के लिए थोड़ा क्वेश्चनेबल है। वेलकम बैक में तो आई वुड से द लड़का जिस प्रोफेशन का होता है वो इटसेल्फ क्वेश्चनेबल है, बट इस पर्टिकुलर मूवी में लड़की के जो फैमिली वाले हैं जो बिजनेस करते हैं वो क्वेश्चनेबल है।
1: तो क्या हो सकता है आंसर, आप हमारे पास भेजें BF, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम। सही जवाब देखेंगे न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद।
0: याद रहे वेलकम बैक सही जवाब नहीं है।

0: Union Finance experience. Call 0800 634 234.
1: तीन मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. वेलकम टू मॉर्निंग मैडनेस ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारे साथ हैं. और इस घंटे की शुरुआत पाव बॉल के साथ कर लेते हैं
2: जी.
1: और नीली आई थिंक 20 इयर्स में पहली बार कुछ चेंजेस जो है ये किए गए हैं पाव बॉल में. एंड देयर इज सम वेरी बिग चेंजेस जो आज से आप एक्सपीरियंस करेंगे पाव बॉल पर. एंड चार मो पाव बॉल नंबर्स जो है ये ऐड किए गए हैं. और इसकी वजह से द ऑड्स ऑफ विनिंग डिविजन वन हैज गॉन फ्रॉम 38.4 मिलियन वन इन 38.4 मिलियन टू 1 in 53.7 मिलियन.
2: और बढ़ गया. मतलब
1: क्या बढ़ गया?
2: चांसेस ऑफ विनिंग का पूल, मतलब ज्यादा लोग हो गए ना, ज्यादा लोगों के जीतने के चांसेस हो गए.
1: नहीं, द थिंग इज कि अब जीतना, पहले आपके पास 38 में से एक, 38 मिलियन में से एक चांस था,
2: राइट?
1: अब 53 मिलियन में से एक चांस है. इट्स बिकम हार्डर नाउ.
2: या
1: इट्स बिकम हार्डर.
2: पैसे नहीं देने ना इनको.
1: जो स्टार्ट ऑफ है 4 मिलियन से बढ़कर अब $5 मिलियन हो गया है. एंड द जैकपॉट क्लाइम्स फ्रॉम $50 मिलियन टू $60 मिलियन. और लोटो का कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है अराउंड 9,000 फीवर विनर्स ईच वीक डिविजन 1 से डिविजन 7 के बीच. और हालांकि एक नया डिविजन 8 जो है ये डिजाइन किया गया है टू ऑफसेट दैट.
2: Okay.
1: कि 9,000 लोग कम जीतेंगे तो एक डिविजन 8 भी इंक्लूड किया गया है. बट एट अ फिक्स्ड $12 प्राइस टू प्लेयर्स हु मैच फीवर नंबर्स. और इससे कोई खास अमीर तो नहीं होने वाला है. बट दे आर मोर लाइकली टू विन स्मॉलर प्राइजेस मोर ऑफन.
2: ओके, लेट्स सी ये चेंजेस जो इंप्लीमेंट हुए हैं इससे कितनों का फायदा होता है और क्या हम उनमें से एक होते हैं या नहीं. किस्मत आजमाने पर जरूर पता चल सकता है ना. फिलहाल 5 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. इधर आज का जो पहला सवाल आपके लिए लेकर आए थे, कुछ और मैसेजेस हमारे पास आए हैं. गुंजन ने अपना आंसर भेजा है, तन्हा ने कहा है रेडी, मनीषा ने कहा है खिलाड़ी 786, फिर उन्होंने कहा कि सॉरी सॉरी, फिर उन्होंने जवाब बदला अपना और फिर अपना आंसर जो है डिफरेंट हमारे पास सेंड किया. सो आज हमने जो आपके लिए मूवी ऑफ द डे चुना था, हमने आपको क्लूज भी दिए थे कि एक सिंपल सा लड़का है, शादी करना चाहता है और लड़की भी तैयार है, बस छोटी सी प्रॉब्लम यही है कि लड़की वालों का जो फैमिली बिजनेस है कि लड़के वालों के लिए थोड़ा क्वेश्चनेबल है. सो इसका करेक्ट आंसर इज वेलकम.
1: यस, आई न्यू.
2: पर आपने बताया नहीं था.
1: फिल्म का नाम मुझे याद नहीं था क्योंकि मुझे अक्षय कुमार याद है. और आई थिंक कैटरीना कैफ थी.
2: जी, कैटरीना थी.
1: क्योंकि अभी हाल ही में मैंने ये फिल्म थोड़ी सी देखी थी.
2: ओह अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग. राइट, तो जितने लोगों ने हमारे पास अपने अपने आंसर्स भेजे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पार्ट लेने के लिए. याद रहे कि इसी घंटे थोड़ी देर बाद युवराशि वाइब्स आपके लिए हम लेकर आएंगे. आज का दिन आपके हॉरोस्कोप के अनुसार आपके लिए कैसा रहेगा ये पता करेंगे. फिर उसके बाद में 7:30 न्यूज हेडलाइंस जो है ये भी आपके लिए रहेगा. और डोंट फॉरगेट कि इस घंटे सेलिब्रिटी अलार्म, ये भी आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे, जहां आपको सुनाएंगे किसी एक सेलिब्रिटी की आवाज और आपको पहचानना होगा कि वो कौन है.

0: finance experience, call 0800 634 234.
1: Rashi Vibes.
2: सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज आपके लिए कहा गया है दिन के पहले हिस्से में आपके काम बड़ी आसानी से होते जाएंगे। आज शाम के बाद अपने हेल्थ और काम में थोड़ा केयरफुल रहें, बिजनेस डील्स जो हैं ये शाम से पहले ही निपटा दे तो अच्छा होगा।
3: उसके बाद वृषणी टोरस, आपके लिए कहा गया है कि आज आपको अगर रिजल्ट चाहिए किसी भी काम को आप कर रहे हैं उसका, तो इसके लिए आपका फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। पैसों के मामले में आज अच्छा दिन है, इसीलिए इफ़ यू आर प्लानिंग टू रिव्यू योर फाइनेंसेस, गेट दैट डन। जो भी आपको चेंजेस करने हैं अपने फाइनेंशियल प्लान में और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपके फाइनेंसेस को लेकर, तो आज आप ये ज़रूर कर सकते हैं। हेल्थ वाइज अगर कोई भी वार्निंग आपको आज मिल रही है उसे इग्नोर ना करें, उसे निग्लेक्ट ना करें, उस पर फोकस करते हुए ज़रूरी चेंजेस अपने आप लाइफस्टाइल में लेकर आए, बिकॉज अदरवाइज लॉन्ग रन के लिए ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज आपके लिए कहा गया है कि विरोधियों से सावधान रहे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, फाइनेंसेस को देखें तो दिन ठीक ठाक ही रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, अपने हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें।
3: उसके बाद कर्क ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि पैसों को लेकर थोड़ा कॉशियस आपको रहना पड़ेगा, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा, इफ़ यू बीन मिसिंग आउट ऑन द कम्फर्ट ये फाइनली आप फील करेंगे, अपने इमोशनल वेल बींग का ख्याल रखें, ये सलाह आज आपको दी जा रही है।
2: और उसके बाद सिंह यानी लियो, आज नेटवर्किंग से आपको फ़ायदा हो सकता है, शाम के समय अपने फैमिली इश्यूज पर अगर कुछ है तो फोकस ज़रूर करें, परिवार के साथ टाइम बिताएंगे, आज काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर आप।
3: और उसके बाद कन्या यानी वर्गो, एक स्मॉल जेस्चर आपके लिए काफ़ी बड़े यू नो रिएक्शंस लेकर आ सकता है व्हेन इट कम्स टू योर रोमांटिक लाइफ, और आज आपके लिए बहुत ज़रूरी कि अपने करियर पर आप ध्यान दें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप थोड़ा काम करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो इसका भरपूर फ़ायदा आप उठा सकते हैं, इसीलिए पे अटेंशन टू दोज, और उस पर जो भी चीज़ें आपको करनी है आप ज़रूर करें।
2: तुला यानी लिब्रा, दिन भर आज आप काफ़ी खुश रहेंगे, आज फाइनेंशियली काफ़ी सक्सेस आप हासिल करेंगे, लोगों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और रुका हुआ पैसा भी अचानक आपको मिल सकता है।
3: और इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आज कहा जा रहा है खास तौर पर फॉर स्कॉर्पियो, वृषणी स्कॉर्पियो, आज आपका इंट्यूशन जो भी आपको बता रहा है इन रिगार्ड्स विद योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स, इन रिगार्ड्स विद योर लव लाइफ, आप उस पर ज़रूर भरोसा करें, मन में कोई भी डाउट हो आपको तो आप डेफिनेटली ट्रस्ट करें अपने इंट्यूशन को, सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि अपनी ओर से पूरे प्रूफ्स वगैरह जो है ये इकट्ठा करते हुए ही कोई डिसीजन आप ले, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्यूशन पर इतना भरोसा है और आपने कोई बहुत बड़ा कदम जो है ये उठा लिया हो। दूसरी ओर आपके लिए बताया जा रहा है कि आज अपने इम्पोर्टेंट प्लान्स को सीक्रेट रखें, किसी के भी साथ शेयर करने की गलती ना करें, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी मेंशन किया हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपका लीक हो जाए और जो भी आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उससे आप मीलों दूर जो है ये चले जाए।
2: धनियन सेजिटेरियस, कोई बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है, इच्छाएं तो आपकी पूरी होंगी लेकिन उसके साथ आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो इस पर कंट्रोल रखें, सोच समझकर ही पैसे आज कहीं लगाएं।
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि मेक सम टाइम फॉर योर स्पेशल लव्ड वन, आपकी लाइफ में जो अहमियत रखते हैं आप उनके लिए ज़रूर अपने लिए अपनी लाइफ में जगह जो है ये बनाएं, अदरवाइज कुछ शिकायतें हैं आपके अपनों को आपसे जो आपके लिए रिश्ते में काफ़ी महंगी पड़ सकती हैं। दूसरी ओर आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेस आज आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, सो इफ यू कैन लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपनी तबीयत पर ध्यान दें, फोकस करें और जो भी चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हो उनसे जितना दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा है।
2: कुमियानी एक्वेरियस, दिन के पहले पार्ट में हिस्से में आज किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा और बिजनेस ट्रैवल आपका अच्छा जाएगा, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं और इसके अलावा हेल्थ भी आज आपका काफ़ी ठीक ठाक ही रहेगा।
3: और आखिर में मीन एंड पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि एक हार्ट फेल्ट मोमेंट आज आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। दूसरी ओर कहा गया है कि आपका इमेजिनेशन आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, सो इफ़ यू फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन लाइफ इमेजिन की उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, हाउ यू कैन वर्क दोज सोल्यूशंस आउट, और वैसे ही आपको अपने सवाल का जवाब जो है ये आज मिलेगा। सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया कमाल का गुजरे। फिलहाल के लिए इट्स 19 मिनट्स आफ्टर 7, कमिंग अप वेरी शॉर्टली आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म।
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Chup ho jao papi ho, chup ho jao. वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
5: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नारा

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: coffee? The usual?
1: How about the unusual?
2: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
3: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
4: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel hi lo. Right now, Andrew Sims Manukau mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Manukau. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
5: Moisture और ventilation का problem लगता है.
6: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
9: Celebrity Alarm. Hit it.
11: सेलिब्रिटी अलार्म की बारी जो है ये आई है. आज मैंने जिस बॉयज़ के लिए तैयारी की थी पर अनफॉर्चुनेटली वो ऑडियो उतना क्लियर नहीं है.
12: अच्छा.
11: आई रियली वांटेड टू डू दैट वॉइस, सो व्हाट आई विल डू
12: इज, यू कैन ट्राई.
11: नो नो, आई डोंट थिंक सो, इट विल वर्क आउट. आई थिंक समझ में नहीं आएगा लोगों को, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी क्लीन ऑडियो. सो मैं क्या करती हूँ, मैं एक और एक वॉइस मैंने जो है ये ढूंढा है, तो ये आपके लिए मैं लेकर आती हूँ और फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये आवाज़ जो है ये किसकी है. और जैसे ही ये आवाज़ आप सुने, आपको बस अपना जवाब जो है हमारे पास भेजना होगा ना. बट हाउ डू यू सेंड दैट, ये आप बता दीजिए.
12: बी एफ लिखें, उसके बाद अपना जवाब लिखें और अपना नाम लिखें और उसे 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट करें. रिमेंबर 5599 हमारा नंबर है जिस पर अपने मैसेजेस जो है ये आप हर दिन हमें भेजते हैं, आज भी जरूर भेजें.
11: राइट, तो हियर वी गो, आपको हम सुना रहे ये आवाज, लेट्स सी इफ यू कैन फिगर आउट कि ये किन की आवाज है.
13: पूरे घर में गन मचा रखा.
14: मॉम, मेरे जूते का है. मॉम,
13: लक्ष्मण तू बाल क्यों नहीं कटवाता, और ये तूने क्या कुत्ते के पट्टे पहने हुए हैं, फटी हुई टी शर्ट. बेटा मुझे दे दे, मैं दो मिनट में सीकर देती हूँ.
11: तो आपको पता नहीं कौन
12: है. I know this one.
11: हाँ, ये इजी है ना.
12: Very easy.
11: Yeah.
12: अगर कोई एक आवाज या डायलॉग मेरे लिए इजी है
11: तो सभी के लिए हो सकता है.
12: तो ये सभी के लिए इजी होनी चाहिए.
11: Yeah. तो आपको बस अनुमान लगाना. We're not talking about Zaid Khan. We know कि इस पर्टिकुलर ऑडियो में जो मेल वॉइस आपने सुना है वो जाहिद खान का. वी टॉकिंग अबाउट द फीमेल वॉइस जो आपने इसमें सुना है. ठीक है, इतना आसान है. तो देखते हैं कि क्या आप ये आवाज आज पहचान पाते हैं या नहीं हमारी सेलिब्रिटी अलार्म में.
14: मॉम, मेरे जूते का है. मॉम,
13: लक्ष्मण तू बाल क्यों नहीं कटवाता, और ये तूने क्या कुत्ते के पट्टे पहने हुए हैं, फटी हुई टी शर्ट. बेटा मुझे दे दे, मैं दो मिनट में सीख कर देती हूँ.
11: तो आप जल्दी से अपने आंसर्स हमारे पास मैसेज कीजिए. ऑन 5599 बीएफ लिखना है सबसे पहले, फिर आंसर, फिर नाम. और याद रहे जो फीमेल वॉइस है ये आपको पहचानना है कि वो किन की आवाज है.
12: बहुत ही जानी मानी आवाज़ है, बहुत एस्टेब्लिश्ड ये सेलिब्रिटी हैं और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है.
11: तो पर्टिकुलरली माँ का रोल किया है.
12: हाँ, माँ का रोल किया है. और या I like this actress.
11: Right. अच्छा, किसी ने हमारे पास 5244 आपने फरीदा जलाल लिखकर भेजा है.
12: अरे, उनकी तो आवाज़ एकदम डिस्टिंग्विश्ड है,
11: बहुत अलग है. या बट इट्स नॉट फरीदा जलाल. However, बाकी क्लूज के मिलान में वी कैन से कि हाँ माँ का रोल तो उन्होंने भी किया है, काफ़ी यू नो वेल नोन सेलिब्रिटी भी है. बट ये जो एक्ट्रेस है जिनकी आवाज़ हमने आपको सुनाई है, आई थिंक जो डायलॉग हमने जिस किसी फिल्म से भी सुनाया है वो भी बहुत इजीली पहचाना जाता है ना.
12: हाँ, बहुत आसानी से पता चल जाता है. सो बी एफ, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, ये 5599 पर आप हमें भेजें.
9: Bollywood's most wanted.
0: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
15: मैं लाऊं अपना ए गेम.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: finance experience, call 0800-634-234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, न्यूजीलैंड में पिछले तीन सालों में वीजा ओवरस्टे करने वालों की लिस्ट में यूएस सिटीजन्स सबसे आगे हैं, जहां कुल 925 अमेरिकन्स ने वीजा एक्सपायरी के बाद देश नहीं छोड़ा। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के मुताबिक फिलहाल देश में एस्टिमेटेड 19,153 ओवरस्टेज हैं, जो कि कुल आने वाले टेम्पररी वीजा होल्डर्स का सिर्फ 0.13% है। टॉप फाइव ओवरस्टेइंग कंट्रीज में अमेरिका के अलावा टोंगा, चाइना, यूके और इंडिया शामिल हैं, जबकि टोटल वीजेस के परसेंटेज के हिसाब से टोंगा सबसे ऊपर है। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड कंप्लायंस जनरल मैनेजर स्टीव वॉटसन ने कहा कि ओवरस्टेज का नंबर काफी कम है और आने वाले ज्यादातर लोग अपने वीजा रूल्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं। ऑकलैंड मेयर वेन ब्राउन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में प्रपोज्ड चेंजेस पर सरकार को अपना नाक बाहर रखने की सलाह दी है। इस नए रूल के तहत अनइलेक्टेड मेंबर्स के वोटिंग राइट्स हटाने की बात कही गई है। इस नए रूल से ऑकलैंड काउंसिल की इंडिपेंडेंट माओरी स्टेट्यूटरी बोर्ड भी प्रभावित होगी, जिसे ब्राउन ने बिना कंसल्टेशन के लाया गया अनवाइज फैसला बताया है। मेयर ब्राउन ने वोन किया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये पद चुना तो वो ऑकलैंड डील से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि ये लोकल डेमोक्रेसी और पार्टनरशिप के खिलाफ है। अगले महीने टू टेस्ट ब्रेडिस्लोक कप सीरीज मैचेस में हो सकता है कि ऑल ब्लैक्स के दो लूज फोर्ड्स अवेलेबल ना रहे। ये दो मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने को हैं। ऑल ब्लैक्स और वल्बीज के बीच 10 अक्टूबर को ईडन पार्क पर मैच होगा और उसके एक हफ्ते बाद दोनों टीमों का मुकाबला सिडनी में होने को है। और प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आदि सावेया और लूक जैकब्सन शायद इन मैचेस में नहीं खेल पाए। इसके अलावा मिडफील्डर क्विन टोपेया, जिन्हें एक एमसीएल नी इंजरी हुई थी, वो भी शायद इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। इन पर और भी अपडेट्स बाद में चलकर हम आपको देते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau. Accurate traffic.
5: You made it with Caboodle.
6: A cloudy one all day, high of 16 degrees. If you're heading to the airport, add a little extra time. Southwestern, slow southbound from Mangere Bridge to the airport terminal. Southern Motorway, 38 minutes Manukau to town. Slow patches on and off from Papakura, some heavy spots. Northwestern, half an hour Massey to the city, slow from Te Aratu with some heavy patches around Point Chev. Northern, 25 from Constellation, slow there to the bridge.
5: Impress even the toughest critics with Caboodle's stylish, affordable and easy to install kitchens.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
10: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Tūriki. All together Auckland.
11: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $299. Iceland fridge freezer, just $299. My Dia washing machine, just $299. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
12: TradeDepot.co.nz.
13: Buddha!
0: हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
12: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
13: अब हमारा क्या होगा?
14: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
12: तो क्या करें?
15: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
16: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
17: Birthday greetings.
18: इसका बर्थडे भाई?
19: मेरा ही बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ।
20: Happy birthday to you.
2: Many many happy returns of the day. आज 16th of September. सबसे पहले सुशीला सुशीला बेन गोविंद जी हैं, डेनमोरा में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। खुशी के इस मौके पर जितने भी परिवार वाले हैं सभी आज आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं, आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी ओर से भी ये आज का स्पेशल डे आपको शुभ और मुबारक हो।
21: अ वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी ओर से हम आपको विश कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आज आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास आप अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। आज मोहम्मद इफाज, आपका भी बर्थडे है तो जन्मदिन के इस खास मौके पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, खासतौर पर आपकी बीवी है आयशा निशा, तो इनकी ओर से भी, या माफ कीजिएगा निशा, तो इनकी ओर से भी आपको वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जो है कि हम विश कर रहे हैं।
2: उमा कुमार जी, आज आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, विशिंग माय एल्डेस्ट डॉटर उमा बेन कुमार हैप्पी सीक्रेट बर्थडे। मम है आपकी वर्षा कुमार, डैड राजेंद्र कुमार, आपके भाई बहन हैं जितने, जिग्नाशा बेन कुमार, साहिल कुमार और प्रेम साई कुमार, ग्रैंडमा हैं सुशीला बेन और इंदुमती कांत, ग्रैंडफादर हैं आपके मणिकांत और ग्रैंड अंकल अरविंद कुमार, ग्रैंड आंट कला काकी हैं और जितने भी परिवार वाले हैं या न्यूजीलैंड में एंड अब्रॉड सभी आज आपको याद कर रहे हैं। उमा जी, सालगिरह आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो।
21: हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।

0: 1-800-634-234.
1: चलिए इधर आपके लिए द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं. दिस इज मॉर्निंग मैडनेस. आपको याद दिला दे कि आज का हमारा मॉर्निंग मैडनेस का ये सफर जो है आपके नाम खास तौर पर जब गेम कर रहे हैं तो इस घंटे भी काफी कुछ आपके लिए लेकर आएंगे, ये वादा हमने किया था. और सबसे पहले तो लेट्स हैव अ लुक एट आवर जो सेलिब्रिटी अलार्म.
2: हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जवाब जो है ये हमारे पास भेजे हैं. थैंक यू सो मच. सभी का नाम तो एक साथ लेना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, बट Thank you so much. आपने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, बट इधर उधर कुछ गिने चुने गलत आंसर्स हैं. तो एक फाइनल राउंड जो है, आवाज़ जो है ये आप सुना दे आखिरी बार.
1: जी बिल्कुल. चलिए ये आवाज़ आपको पहचाननी है. आप हमारे पास अपने मैसेजेस जो है ये सेंड कर सकते हैं. थोड़ी देर बाद हम आपको जो सही आंसर है ये रिवील करेंगे. बट दिस इज द वॉइस यू हैव टू गेस टुडे.
3: मचा रखा.
4: मॉम मेरे जूते का है. मॉम
3: लक्ष्मण तू बाल क्यों नहीं कटवाता? और ये तूने क्या कुत्ते के पट्टे पहने हुए हैं? फटी हुई टी शर्ट. बेटा मुझे दे दे, मैं 2 मिनट में सी कर देती हूँ.
1: तो ये कौन है आपको बताना है अपने नामों के साथ अपना आंसर हमारे पास आपको सेंड करना है. अभी देखा जाए काफी लोगों ने हमारे पास अपने अपने आंसर्स जो है ये भेजे हैं. सबसे पहले आई थिंक आज इस सेलिब्रिटी अलार्म के लिए विधि का मैसेज आया. फिर विनील है, शिमल ने भी अपना आंसर भेजा, इमरान है, इसके अलावा सिमरन है और लोकेश. थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू. आलोक है, रवनेश है, अर्चना गुड मॉर्निंग, थैंक यू आपके मैसेज के लिए. संज्योतिका गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर मैसेज टू. सोम है, अनमोल है, नंदिनी है, साथ में शवीन, आपका भी मैसेज हमें मिला है. थैंक यू सो वेरी मच. और उसके अलावा अंजलि है,
2: अच्छा,
1: चरिशा है, नितेश है, रॉड्रिक है, अलका ने भी अपना मैसेज भेजा है. इसके साथ साथ नितिका है, स्वाति है एंड साथ में कुसुम. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू कुसुम. बलजिंदर जी है, तेज है, रनीता है, सभी ने अपने मैसेजेस भेजे हैं. कुछ लोगों ने आंसर्स भेजे हैं लेकिन नाम नहीं लिखा है. तो आप भी अपने आंसर्स हमारे पास ज़रूर सेंड कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आज हमारी सेलिब्रिटी कौन है इन सेलिब्रिटी अलार्म. नाउ लेट्स मूव ऑन. और एक अपडेट आपके लिए हम लेकर आए. सिटी रेल लिंक जो है ये अर्लियर दिस वीक ही ओपन हुआ और यार क्या क्या कमाल की चीज़ें जो है ये इसके दौरान हुई थी. आपको पता है जब अनाउंसमेंट हो रहा था तो गलती से जो डेट है, लॉन्च डेट है इसका, ये भी रिवील हुआ था.
2: अच्छा,
1: ये सिटी रेल लिंक जो है एक्चुअली में किस दिन से फुली फंक्शनल रहेगा. द डेट वॉज सपोज टू बी रिवील्ड इन अ ग्रैंड इवेंट लेटर ऑन, बट वो मिस्टेक से हो गया था बिफोर दैट. और इसको लेकर काफ़ी चीज़ें जो है ये हुई हैं, बट फाइनली इट्स ऑपरेशनल. और ऑकलैंड का नया सिटी रेल लिंक जो है हैड इट्स फर्स्ट फुल वीक डे ऑपरेशन, जिसके बाद चलकर नंबर्स आर लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग. अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू RNZ कहा गया है बाई 5 PM अराउंड 72,500 पैसेंजर्स हैड ट्रेवल्ड ऑन Auckland's train network. That's 25,000 more passengers than the same time last Monday.
2: Wow.
1: क्योंकि मंडे को इसकी शुरुआत हुई ना. The opening day on Sunday was also a record क्योंकि it was the busiest Sunday ever. जहां पर ऑकलैंड रेल नेटवर्क में इसे रिकॉर्ड किया गया था. नए स्टेशंस आर ऑलरेडी चेंजिंग द वे पीपल आर ट्रेवलिंग अराउंड द सिटी. और एक कम्यूटर जो है इन्होंने कहा कि ये जो न्यू नेटवर्क है इसकी वजह से उनके करीबन 20 मिनट ऑन हिज जर्नी जो है टू वर्क ये बचते हैं. वाइल अनदर वन सेज कि ये जो नया ट्रेन रूट है इट हैज कट अराउंड 15-20 मिनट्स फ्रॉम देयर डेली ट्रिप. बिजनेस अराउंड करंगहापे रोड जो है वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं ऑफ प्लेंटी ऑफ न्यू फेसेस. और कुछ कैफेज है, शॉप्स है, वो कंसिडर कर रहे हैं ऑफ ओपनिंग ऑन संडेज नाउ क्योंकि एक्स्ट्रा फुट ट्रैफिक जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो लेट्स सी. ओवरऑल ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि मोर देन 100 कस्टमर सर्विस स्टाफ और एम्बेसडर्स जो है ये हेल्प कर रहे थे पैसेंजर्स एट द स्टेशन. और करंटली सिटी रेल लिंक जो है इसका अगर देखा जाए एज ऑफ नाउ तो अच्छे जो कह सकते हैं चेंजेस ये सामने आए हैं. और It's something what everyone was expecting and wanting.
2: Yes.
1: If that's what happening, to achieve that, na?
2: Yeah, hopefully. Hame bhi time mile to
1: experience this.
2: go and hitch a ride or dekhe what is it all like. City rail network, jo hai, I haven't been on it as yet.
1: Me neither.
2: So we'll try and make a trip and आपको बताएंगे कैसा रहता है experience.
1: क्या आप में से किसी ने अभी तक City Rail Link पर ride किया है या नहीं? Like have you tried the new one which has opened on Sunday? अगर हाँ तो मैं बताइए how was the experience. Let us know ना 5599 पर आप text कर सकते हैं.
2: Yeah, आपके advice पर then we will go.
1: Recommendations.
5: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI. Your

0: dance experience. Call 0800-634-234.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: तो चलिए आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म यहीं पर रैप अप कर रहे हैं. कुछ और मैसेजेस आपने सेंड किए हैं. रनीता साथ में मोविन है, अजनील है फ्रॉम मनुरेवा. गुड मॉर्निंग अजनील. कुछ नाम है जो आज मैं पहली बार पढ़ रही हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट.
3: अच्छा,
2: ग्रीष्मा आपका भी मैसेज आया है, थैंक यू सो मच. माली आपने भी अपना मैसेज सेंड किया है. आयरा है, हीबा है, उषा प्रसाद जी हैं, सुख एंड कुश अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपके भी साथ के लिए, मैसेज के लिए. और नीलेश आपका भी जवाब जो है कि हमें मिला है. तो करेक्ट आंसर lot of you have sent it through aur the sahi jawab is Kiran Kher.
3: So thank you so much aap sabhi ke answers ke liye. Aaj ka hamara what's your take 8 baje ke baad ye kafi interesting hone wala hai.
2: Okay, can you give any hints what it is going to be all about?
3: Jis cheez ke bare mein baatein karenge wo hum sabhi par kisi na kisi tarah se asar karta hai.
2: Okay, let's see kya hai ye cheez iske bare mein baatein agle ghante hongi. What's your take topic mein, ummeed hai ki aap taiyar hai iske liye, par filhal let's enjoy aaj ka hamara dusra throwback jo aapke liye Richa Sharma ki awaaz mein lekar aa rahe hain. 2007 mein film aayi thi Dhan Dhana Dhan Goal, aapne dekhi hai film?
3: Yes.
2: John Abraham थे इसमें, अरशद वारसी.
3: इस फिल्म को पहले कोई और नाम दिया गया था?
2: I think it was just Goal.
3: Okay.
2: बाद में जाकर I think Dhan Dhana Dhan Goal जो
3: इसमें कोई एक अच्छा गाना था.
2: हाँ, काफी अच्छे गाने थे, पर ये गाना जो इस फिल्म का, बिपाशा बासु भी थी by the way इस फिल्म में, लेकिन ये जो गाना है आज का throwback, it was quite popular because of Richa Sharma और उनका जो अंदाज है इस गाने में. So enjoy कीजिएगा आज का हमारा throwback.
3: देखिए देखिए मैंने देखी.
4: शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो,
5: अरे बिल्लो बोला बिल्लो,
4: जो भी देखे यही पूछे है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का वेदर पार्टली क्लाउडी रहेगा विद आइसोलेटेड शावर्स, लाइट विंड्स और नॉर्थ वेस्ट लीज जो है आज हम फील करेंगे। सनसेट तो आज 6:13 PM पर होगा। टेम्परेचर फिलहाल 13 डिग्रीज तक पहुंच चुका है, ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर एंड हाई ऑफ 16 आज बाद में चलकर एक्सपेक्टेड है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको। स्प्रिंग सेल ऑन नाउ, ब्यूटीफुल फर्नीचर with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: आज का ट्रेंड पेट्रोल आपके लिए हम लेकर आए हैं, एंड दिस इज अबाउट समथिंग दैट हैज बीन इनिशिएटेड ग्रोन हियर इन न्यूजीलैंड एट होम। और इसके बारे में अगर हम आपको बताएं सबसे पहले, तो ये जो चीज है इज समथिंग दैट इज क्वाइट पॉपुलर इन न्यूजीलैंड इटसेल्फ। मुझे तो नहीं पता था ये बात कि इस पर्टिकुलर फ्रूट के 300 से भी ज्यादा वेराइटीज है।
3: अच्छा,
1: आपको ये बात पता थी?
3: नहीं।
1: कौन सी फ्रूट हो सकती है अगर मैं बोलूँ ऐसी कोई एक फ्रूट है जो जिसकी 300 से भी ज्यादा वेराइटीज है?
3: एप्पल्स और पेयर्स।
1: एप्पल्स और पेयर्स, मैंने एप्पल बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, बट एनीवेज या यू आर राइट एक्चुअली। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस न्यू एप्पल जो कि न्यूजीलैंड का एक नेक्स्ट बिग ट्रेंड, एक्सपोर्ट ट्रेंड जो है ये बन चुका है बेसिकली, और सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स जो है ये इसके हो रहे हैं। इट्स कॉल्ड जॉली, JOLI। अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड में जो ग्रोअर है TNG, दे हैव लॉन्च्ड दिस न्यूएस्ट प्रीमियम एप्पल वेराइटी वियतनाम में, एज द कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग टू एक्सपेंड फर्दर इनटू ग्रोइंग एशियन मार्केट्स राइट नाउ। तो उसकी वजह से इन्होंने ये शुरू किया। जॉली के बारे में कहा जाता है कि इट्स लार्ज, इट्स अ रेड एप्पल और इट्स डिस्क्राइब्ड एज स्वीट एंड जूसी, और इसे डिजाइन किया गया है विद फैमिलीज एंड शेयरिंग इन माइंड, कि फैमिलीज को अगर शेयर करना हो एक एप्पल उस हिसाब से उसे डिजाइन किया। दैट्स व्हाई इट्स क्वाइट बिग, दैट्स व्हाई इट्स लार्ज। इसका साइज जो है ये काफी बड़ा है।
3: दिखा नहीं मुझे अभी तक कहीं ऐसा
1: न्यूजीलैंड में भी, मैंने भी इसे नहीं देखा है, सो आई कांट से मच। बट ये जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपोर्ट मार्केट में काफी ट्रेंड कर रहा है, एशियन कंट्रीज को काफी पसंद आ रही है। ये डेब्यू हुआ है वियतनाम के साथ इनफैक्ट, तो अभी धीरे धीरे और देखते क्या होता है इसका। बट इस एप्पल के बारे में कहा जाता है इट डिडंट हैपन ओवरनाइट। TNG ने कहा है कि उन्होंने डेवलप किया है जॉली को, एंड इट टुक मोर देन, ये होप करते हैं कि अब वैरायटी के साथ फॉलोइंग इट्स वेरी पॉपुलर एनवी एप्पल जो कि $1 in a billion का ग्लोबल सेल्स जो है ये लेकर आता है, ये माफ कीजिए $1 billion इन ग्लोबल सेल्स लेकर आता है ये पर्टिकुलर एप्पल। एंड प्रीमियम एप्पल मार्केट की अगर बातें करें तो इट्स ऑल्सो ग्रोइंग क्वाइट क्विकली। कंज्यूमर्स जो है इंक्रीजिंगली ज़्यादा पैसे भरने के लिए तैयार है फॉर एप्पल्स दे बिलीव ऑफ आर बेटर टेस्ट एंड क्वालिटी। और TNG ने कहा है कि करंटली 273 hectares ऑफ जॉली एप्पल्स जो है आर लाइसेंस्ड इन न्यूजीलैंड विथ प्लान्स टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, ताकि ये न्यूजीलैंड में भी फेमस हो सके। पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दैट वन वैरायटी ऑफ एप्पल दैट यू एब्सोल्युटली लव टू ईट? आपको एप्पल्स पसंद है बाय द वे, पहले तो यही पूछ लूं।
3: हाँ ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, आई डू ईट एप्पल्स, बट कौन से वाले? आई लाइक जूसी वंस।
1: अरे बट नाम तो होगा ना, कितने सारे मुझे ज्यादा पता नहीं है कितने वेराइटीज है कितने नहीं, बट नो अ लिटिल बिट। उनमें से मुझे पता है कि मुझे कौन सा पसंद है। हाँ. आपको कौन सा पसंद है?
3: द जूसी वन।
1: ओह माय गुडनेस, गलती करती हूँ मैं आपसे सवाल पूछ के। एनीवेज आप बताइए।
3: दिखने में अच्छा, जो ऐसे थोड़ा शाइनी हो, एंड
1: जरूरी नहीं जो देखने में अच्छा हो वो टेस्ट भी अच्छा करता हो।
3: अब आप मुझसे मेरी पसंद पूछ रही हैं और फिर बोलती हैं कि जरूरी नहीं है कि वो।
1: नहीं, आपने बताया जूसी वंस। हाँ। फिर आप बोल रहे कि ऐसा दिखना चाहिए।
3: बाहर से तो देखने में भी नहीं पता चलेगा कि अंदर एप्पल जूसी है या नहीं।
1: Exactly, वही तो बोल रही मैं।
3: हाँ। तो पसंद मुझे जूसी वाला है, और ऐसे बाहर से दिखने में भी अच्छा है, ऐसे थोड़ा सेट सेट नहीं लगना चाहिए।
1: आपको लुक्स अट्रैक्ट करते हैं।
3: नहीं, टेस्ट भी। सो द एप्पल शुड नॉट लुक सैड,
1: राइट,
3: और जूसी होना चाहिए।
1: एप्पल शुड नॉट लुक सैड। हां, वो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एनीवेज तो आपको कौन सी एप्पल जो है वैरायटी ऑफ एप्पल जो है ये सबसे ज्यादा पसंद है आप बताइए. आई नो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो फॉर एटलीस्ट सिक्स मंथ्स फाइनल सिक्स मंथ्स ऑफ माय प्रेगनेंसी मैं हर रोज एक एप्पल खाती थी अंटिल माय डिलीवरी.
3: अच्छा
1: हर रोज वन एप्पल और उस एप्पल को मैंने इतना ज्यादा पसंद किया कि आज भी व्हेन आई बाय एन एप्पल आई मेक श्योर कि आई बाय दैट पर्टिकुलर एप्पल एंड आई हैव इट. वो है रोज एप्पल. इट्स अ बिट बिग कंपेयर टू द ग्रेनी स्मिथ एप्पल्स जो होते हैं. ग्रेनी स्मिथ तो ग्रीन वाला होता है ना. हाँ ग्रेनी स्मिथ इज द ग्रीन वन. एक और एक रॉयल गाला एप्पल जो है उससे थोड़ा बड़ा होता है मुझे ऐसा लगता है और बहुत क्रंची होता है बहुत जूसी होता है. इट्स वेरी स्वीट. इट्स अ वेरी स्वीट एप्पल. रॉयल गाला एप्पल के साथ मेरे साथ क्या है कि व्हेन आई सडनली कभी कभी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि I've got some of those जो मुझे थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगा and I didn't quite like the taste. So rose apple is one of my favorite varieties of apple जो है न्यूजीलैंड में भी मिलता है बड़ी आसानी से. And I think I've eaten the most amount of apples when it comes to apples is would be that one, that particular variety, rose apples. तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं आपकी फेवरेट वेराइटी ऑफ एप्पल यहाँ न्यूजीलैंड में कौन सी है. और अगर आपने कभी एप्पल पिकिंग का काम किया है बाय द वे आप यहाँ पे होता है ना फ्रूट पिकिंग.
3: हाँ हाँ हाँ नहीं मैंने नहीं किया.
1: मैंने भी नहीं किया बट आई हैव हर्ड इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू डू. तो अगर आपने कभी एप्पल्स पिक किए हैं तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस क्या आपने कभी पिक करते करते खाया उसे. लेकिन वी हैव दिस हैबिट ना. तो स्ट्रॉबेरी पिकिंग करने जब जाते हैं उसके तो खैर पैसे भरते हैं हम तब भी जाके पिकिंग कर पाते तो पिक करते हैं उस टाइम पे खाते भी हैं इट्स लाइक दैट ना. तो या वट एवर एक्सपीरियंस यू गॉट अराउंड दिस हमारे साथ आप जरूर शेयर कर सकते हैं. 9 मिनट हो रहे 8 बजकर और
3: दूसरी ओर सब ठीक ठाक है. थोड़ी देर बाद आज का व्हाट्स अ टेक टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: Ah!

0: जय भैया जय।
1: कोई भी टाइम हो ये गाना एकदम परफेक्ट होता है।
2: आई थिंक इट्स वेरी रिलेटेबल आजकल के जमाने में। पर किसी को पसंद नहीं आया, विच इज ओके, वी टोटली गेट इट, हर किसी की पसंद नहीं होती है ये। आई थिंक आई प्लेड द रॉन्ग वर्जन ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत वर्जन प्ले किया। एक फिल्मी वर्जन है विच इज़ अ बिट डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ म्यूजिक इट हैज़। इसमें जैसे ज़्यादातर ढोलक का और
1: फोक है।
2: हाँ, इट्स लाइक मोर ऑफ अ फोक काइंड ऑफ म्यूजिक ना। पर किसी ने मैसेज किया, इन्होंने कहा कि प्लीज़ चेंज द चॉइस ऑफ म्यूजिक यू प्ले इन द मॉर्निंग। वी टोटली अंडरस्टैंड, हर टाइप का गाना हर किसी को पसंद नहीं आता है, स्पेशली इन द मॉर्निंग, सो विल डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड। बट ये गाना बड़ा रिलेटेबल है आजकल के ज़माने में स्पेशली।
1: हाँ, रिलेटेबल तो होगा ही क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। हर जमाने में लोगों को महंगाई लगती ही है ना, चाहे टाइम कोई भी हो, महंगाई हमेशा होती है। खैर, थोड़ी देर बाद आज का हमारा व्हाट्स इट टेक टॉपिक जो है ये हम लेकर आएंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ सुन लें।
2: अच्छा, क्या सुनाना है मुझे?
1: नहीं नहीं, मैं ये बस आपको।
2: अच्छा, ओके।
1: हाँ, इतना ही करना है, वो तो मैं भेजना ही भूल गया।
2: ठीक है, ओके, प्ले कीजिए।
1: सो हैव अ लिसन टू दिस।
3: Never ever be a cool boss. I repeat, never ever be a cool boss. So I don't know how many of you will relate to this, but this is from one of my past experiences. I was working with a company, I was managing few people, and it is my behavior, or I would say it is my habit, that I don't like to make people feel like I am superior to them, like people who are around me or the people to whom I am superior, to whom I am managing. But now I realize that that is something which is very important. You need to create some boundaries, some very clear boundaries, because the leverage that you are providing is actually destroying you. You don't know when people start misusing that and start backstabbing you. I gave a lot of leverage to all my team, all the people who were junior to me, but this is one of my advice from all this experience, that it's always better to maintain a
2: life.
1: तो ये होपफुली आपने सही सही सुना हो और कि क्या है ये एक्चुअली, और इसी के बारे में कुछ बातें जो हैं आज थोड़ी देर बाद इस प्रोग्राम में हम करेंगे।
4: Mornings made better.
5: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय।
4: The breakfast show with Vijay and Pooja.
6: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
10: Farmers Manchester Mania sale is now on with an amazing 50% off duvet covers, sheets, duvet inners, pillows and more. 50% off towels by top brands like Sheridan. Plus 50% off sleepy head beds. Shop Farmers Manchester Mania. Conditions and exclusions apply.
11: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudimahotels.com/foodfestival.
12: Have you heard the news? Powerball has changed. There are now 14 Powerballs, meaning bigger prizes plus more winners with a brand new Division 8 cash prize. Imagine winning $5 million this Wednesday. Get your Powerball ticket in-store or online.
0: JB Hi-Fi is celebrating the stunning store refresh of JB Sylvia Park this Thursday from 5 p.m. with Cost Plus GST on products store-wide for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Sylvia Park this Thursday, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
4: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
14: What's your take?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है. What's your take का वक्त हो चुका है. आज हम बातें करेंगे बॉसेस के बारे में. Is it good to be a cool boss?
2: And if you say cool, if you say cool, like what do you mean? नहीं अच्छा खराब तो हर किसी के लिए एक same नहीं हो सकता. For example, as a boss, if you think आप बहुत अच्छे boss हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके जो team members हो, colleagues हो, वो सोचे कि आप अच्छे हो.
1: हाँ हाँ.
2: हाँ तो what do you mean by cool?
1: वो अपना रोब झाड़ना basically ना कि I am the leader.
2: Okay, ये नहीं करते जो.
1: हाँ क्या वो सही करते हैं क्योंकि ये जो शख्स हैं हेमंत वाधवानी उन्होंने बताया है कि being the cool boss comes back and bites you.
2: अच्छा.
1: अगर आप इस तरह का बिहेवियर रखते हैं या इस तरह से रहते हैं आप रिलैक्स रहते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ बिकॉज यू ट्रस्ट देम. यू ट्रस्ट देम कि वो अपना काम सही तरीके से करेंगे और आप नहीं चाहते हैं कि आपके टीम मेंबर्स जो है ये फील करें कि आप हमेशा बॉसी बॉसी रहते हैं, आप उन पर रोब झाड़ते हैं या फिर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. वैसी फीलिंग जो है वो नहीं चाहते थे.
2: लेट्स पुट इट लाइक दिस कि कहीं ना कहीं एक बाउंड्री क्रिएट करना अराउंड यू दैट यू आर द बॉस एंड दैट देयर विल बी सर्टेन थिंग्स इन सर्टेन वेज जिसके हिसाब से आप चीज़ों को हैंडल करोगे. बट इफ यू टॉक अबाउट बीइंग अ कूल बॉस तो आप वो बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करते हो. लाइक यू आर वेरी मच ओपन.
1: ओपन हाँ. तो उन्होंने कहा है कि नेवर एवर बी अ कूल बॉस.
2: अच्छा.
1: आई रिपीट उन्होंने कहा नेवर एवर बी अ कूल बॉस. उन्होंने बताया कि उनकी पर्सनालिटी में ही ऐसा है कि वो इक्वली ट्रीट करते हैं सभी को ना. इवन व्हेन ही वाज मैनेजिंग समवन वो ऐसा नहीं एक्ट करते थे कि ही वाज सुपीरियर. लोगों को ये फील नहीं होना चाहिए कि वो एक अनकंफर्टेबल जोन हो जाता है अगर उस तरह की फीलिंग जो है ये आ जाती है ना. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये फ्रीडम दी, फ्लेक्सिबिलिटी दी बिकॉज ही ट्रस्टेड हिज टीम और वो सारी चीजें. ओवर टाइम उन्हें ये फील हुआ कि दिस थिंग वाज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड.
2: ओके.
1: जो उनके टीम मेंबर्स थे कि वो एकदम ग्रांटेड ले रहे हैं भाई ये तो बहुत
2: रिलैक्स्ड है
1: कुछ नहीं बोलेगा कुछ नहीं करेगा. एंड दे स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. इसीलिए उन्होंने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट सम बाउंड्रीज. सो वही हमने सोचा है कि आज आपसे पूछते हैं.
2: तो प्रोबेबली ये सवाल हम उनसे कर सकते हैं हु हैव सम पॉइंट इन टाइम इन देयर लाइफ बीन अ टीम लीडर.
1: Not necessary. आप अपने बॉस के बारे में बता सकते हैं, अपने मैनेजर के बारे में भी बता सकते हैं कि वो कैसे मैनेज करते हैं, उनका अप्रोच आपके टूवर्ड्स कैसा है. आप एक मैनेजर हैं तो आप कैसे अप्रोच करते हैं अपने टीम मेंबर्स को.
2: राइट.
1: वो सारी चीजें. एंड इज इट ओके टू बी अ कूल बॉस.
2: ओके.
1: क्योंकि हेमंत का कहना है कि नहीं
2: नहीं होना चाहिए. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीजें कही
1: जी. तो हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अराउंड योर मैनेजर और अराउंड योर टीम
2: तो ये आप हमें बता सकते हैं. आप हमारे पास कॉल कीजिए 0800-004-866 पर और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. इफ़ यू आर अ टीम लीडर, इफ़ यू एवर बीन अ टीम लीडर, क्या आप ये जो पर्टिकुलर शख्स है हेमंत जिन्होंने कहा कि कभी कूल बॉस नहीं बनना चाहिए, इनके स्टेटमेंट से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. और अगर आप एक टीम में हैं जहां पर यू हैव गॉट अ टीम लीडर जिनके साथ मिलकर आप काम करते हैं तो वो किस टाइप के टीम लीडर है, किस टाइप के बॉस है, कूल बॉस है कि नहीं है. एंड व्हाट आर द यू नो सिचुएशंस अराउंड इट जो आप यू नो डिस्क्राइब कर सकते कि सही है गलत है जैसा भी सिचुएशन है. गुड मॉर्निंग हम एफएम.
15: हाय नीलम बात कर रही
2: हूँ. जी नीलम बोलिए.
15: मैं भी टीम लीडर हूँ.
2: जी
1: जी.
15: पर मैंने कोई बाउंड्री सेट नहीं की और जैसे मेरे साथ लोग काम करते हैं मैं उनका पार्ट बनकर ही काम करती हूँ.
2: ओके. And what do you think? Does it work in your favor? It's not working in your favor. आप जो कर रही हो सही तरीका है. What is your experience in regards with this?
15: I mean, this job मैंने काम कर कर earn किया है. ऐसा नहीं कि कुछ study की है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं था. Being a hard worker and I get the job. But there is should be some boundary set. और मेरा sometimes मुझे लगता है कि ये मैं गलत कर रही हूँ. क्योंकि अगर मैंने कुछ भी बाउंड्री सेट की होती, क्योंकि हम जैसे बीन जहाँ से आए हैं तो हमें बड़ों की इज्जत करनी, जो हमें हमसे एज में बड़े हैं तो हम उसी हिसाब से इज्जत देते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर हैं.
2: ओके,
15: तो वहाँ जाकर फिर गलत हो जाता है कि जो एक बाउंड्री थी वो होनी चाहिए वो फिर पार हो जाती है. क्योंकि फिर हम रिस्पेक्ट में चले जाते हैं तो उसमें हमारा जो being as a supervisor वो compromising होता हो जाता है.
2: Okay, thank you नीलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए. Have a wonderful day.
1: Thank you.
2: तो पहला कॉल इतना इंटरेस्टिंग रहा कि इन्होंने कहा कि ये एक टीम लीडर है और ये कोई बाउंड्रीज नहीं सेट किया है इन्होंने अपने टीम मेंबर्स के साथ, बट समटाइम्स इनको लगता है कि इनको करना चाहिए था.
1: Okay.
2: Good morning, हम.
14: Morning विजय, morning पूजा, कैसे हो?
1: हम ठीक है भाई, आप कैसे हो?
14: बस जी बढ़िया, मैं अमित बोल रहा हूँ.
1: जी अमित.
14: हाँ जी, तो मैंने एज अ मैनेजर ओवर 15 इयर्स काम किया है. आई वर्क इन यूके, इंडिया और न्यूजीलैंड में भी एज अ मैनेजर काम किया. आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट टू सेट बाउंड्रीज बिटवीन टीम, बिकॉज ये होता है कि अगर आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो ऐसा लगता है टीम मेंबर को कि आप बिल्कुल अलग हो. राइट, इट्स बेटर टू वर्क विद द टीम, उनके साथ काम करो, एंड सो दैट की दे फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ देम एज वेल.
1: Okay.
14: Yeah, that's my point of view. Yeah.
1: Okay. Don't they take you for granted? आपके साथ ऐसा नहीं हो जैसे
2: नीलम ने भी कॉल करके बताया. Like she didn't say कि she was taken for granted, पर उन्होंने ये कहा कि वो boundaries नहीं set करती हैं and she is working with the team. But at times उनको feeling आती कि शायद boundaries set करनी चाहिए थी.
14: To be honest, मेरे को कभी ऐसा feel नहीं हुआ क्योंकि I've worked with really challenging team members as well, जिनके साथ like managers काम करने डरते थे, टू बी ऑनेस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल फ्रॉम न्यूजीलैंड. बट मेरी अप्रोच ऐसी थी कि बी यू नो आइस ब्रेकर टाइप, आई डिड एंड आई वर्क विद देम एंड दे वर प्रीटी कूल विद मी.
2: ओके,
14: सो मैंने कभी बाउंड्री सेट नहीं की, आई ऑलवेज वर्क विद द टीम.
1: थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. बोलो भाई, द अदर साइड ऑफ द कॉइन जो है ये भी मिल गया हमें
2: कि हाँ बाउंड्रीज नहीं सेट करनी चाहिए. बट सो वी हैव गॉट टू कॉलर्स, एक जिन्होंने कहा कि नहीं सेट किया पर मुझे लगता है कभी कभी करनी चाहिए थी, और दूसरे जिन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं किया एंड इट हैज वर्क्ड इन माय फेवर. गुड मॉर्निंग हम.
16: गुड मॉर्निंग विजय भाई. गुड मॉर्निंग पूजा जी.
1: गुड मॉर्निंग भाई.
16: मैं गौरव बोल रहा हूँ.
1: जी गौरव,
16: अब जो कहते हैं लाइन सेट करने की बात है तो वो ना अपने आप सेट हो जाती है जैसे आप काम करते हो उनके साथ. तो मैं इंडिया में आई वॉज अ ओनर, राइट, तो जो हम हमारे एम्प्लॉय थे वी वर्कड एज अ फैमिली. अब जब हम उनके साथ फैमिली की तरह काम करेंगे ना तो वो भी फैमिली की तरह काम करेंगे कि हाँ भाई हमें प्रॉफिट दिखाने तो हमारी फैमिली है, हमें अपनी फैमिली को प्रॉफिट दिखाना है, इट्स लाइक दिस. और जब आप ऐसे फैमिली की तरह बात करते हैं तो बाउंड्री अपने आप ही सेट हो जाती है. कुछ बोलना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि हाँ भाई रिस्पेक्ट कैसे देनी है. और जैसे वो अपनी फैमिली को ट्रीट करते हैं वही सारी चीजें होती है. तो एक दिन क्या हुआ था, मेरे एक एम्प्लॉय ने रात को 1:30 बजे कॉल किया, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर रहा होगा, उसका एक्सीडेंट हो गया. तो उसने अपने फादर को या भाई को कॉल करने से बेटर पहले मेरे को कॉल किया कि सर आप आके मेरे को एक बार देख लो. तो इट्स लाइक दिस, जब आप फैमिली की तरह ट्रीट करोगे तो वो खुद फैमिली समझ के आपके लिए काम करेंगे और लिमिट अपने आप सेट होती रहेगी, कोई क्रॉस करेगा ही नहीं उसे.
1: अच्छा, यहाँ आपने कहा कि न्यूजीलैंड में, आई मीन इंडिया में वो एक्सपीरियंस आपका था, न्यूजीलैंड में भी वही वर्क करेगा आपको लगता है?
16: न्यूजीलैंड में इट्स टोटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल, लाइक जो मेरी पर्सनैलिटी है जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ, मैं तो इसी हिसाब से काम करता हूँ कि हाँ भाई सब मेरी फैमिली है. आप फैमिली की तरह ट्रीट करोगे वो आपको फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे.
2: Okay.
16: जैसे आपने ईगो टेस्ट होकर सुपीरियर इंफीरियर दिखा दिया तो ना बैक डिकिंग टाइप स्टार्ट हो जाती है और एक वर्क प्लेस मेंटल पीस जो चाहिए होता है वो सारा खत्म हो जाता है.
2: इंटरेस्टिंग,
1: वेरी इंटरेस्टिंग.
2: थैंक यू गौरव, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे. तो अभी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बाकी कॉल्स लेने के टाइम, आई मीन टाइम नहीं, वैसे कॉल्स अभी उतने हैं भी नहीं, बट मैसेजेस जरूर आ रहे हैं. सो अगर आज हमारी वजह से एक टॉपिक के लिए आपके पास कोई भी राय है, यू कैन सेंड अस अ मैसेज ऑन 5599. हमने शेयर किया है एक शख्स जिनका नाम है हेमंत, इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस एक वीडियो के रूप में इंटरनेट पर डाला जहाँ उन्होंने कहा नेवर बी अ
1: कूल बॉस
2: और
1: बाउंड्रीज सेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक कूल बॉस होते हैं, यू डोंट सेट बाउंड्रीज, यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड.
2: राइट, तो आपका क्या कहना है? Should you be a cool boss or you should not be a cool boss? Whatever your experience is, or boundary set karne chahiye, nahi karne chahiye, what's the reason, ye bhi aap hume bata sakte hai. Whether you're a team leader or a team member, aap apne apne experience ke hisab se 5599 par hamare paas text kar sakte hai.
4: Bollywood's most wanted.
17: Gundi ghad dao, ya seedha andar aao.
18: Main laun apna A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Monarch, a finish worth celebrating.
4: Staying a cloudy one all day and got a high of 17 degrees into the city. Starting to ease, northern 26 minutes, Constellation Drive to town 38 from Silverdale. A little slow at Silverdale and slow all the way from Constellation. Northwestern 25 minutes in from Massey, slow from Partiki, heavy at Point Chev. Southern 43, Manukau to town, slow from Otahu, heavy Mount Wellington to Green Lane. Southwestern, a little slow at Whitty.
3: Save time without compromising quality. Monarch's premium paint tools deliver a finish worth celebrating.
5: Suno, aaj फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
6: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
5: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
7: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI
8: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
5: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
9: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
10: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे
11: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया
10: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ
12: फर्स्ट होम बायर बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु
13: It's Briscoe's birthday, and we're celebrating with a huge $25,000 birthday cash giveaway. Take the pressure off your mortgage or treat yourself to something special. Briscoe's club members only. See online for T's and C's.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
14: Let's go.
0: Straight from the heart.
15: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
16: अभी 17 मिनट रह गए हैं 9 बजने में और व्हाट्स योर टेक के लिए आपने और व्यूज जो शेयर किए हैं थैंक यू सो मच और किसी ने मैसेज किया है आई अग्री मैनेजर्स शुड हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ बाउंड्री माय मैनेजर होल्ड्स अ वेरी गुड बाउंड्री शी हैज अ गुड टाइम विद अस एंड स्माइल्स एंड एंजॉयज बट व्हेन इट कम्स टू वर्क एंड फीडबैक शी होल्ड्स अ वेरी गुड बाउंड्री एंड वेरी एंड शी इज वेरी डिप्लोमेटिक दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ टीम लीडर cannot lean into favoritism as well. Many leaders who are too friendly start losing professional boundaries and this also leads to subjective grouping and favoritism.
5: तो सीओ इन्होंने कहा है कि आई वर्क एज अ सीओओ फॉर अ कंपनी एंड इन माय एक्सपीरियंस यू हैव टू मेक योर टीम फील कंफर्टेबल व्हिच हेल्प्स देयर कॉन्फिडेंस इन यू You do have boundaries, but you shouldn't make the boundaries your day-to-day life. Your friendly nature as a boss will keep staff happy, and if they are happy, they give you their best. You get productivity and efficiency from a mentally happy staff. Boundaries are a guide, but you get respect in return if you are at ease and don't be bossy. Teamwork makes the dream work. Arun ne kaha hai.
16: Good morning, Pooja and Vijay. I am also a manager in my current role. I lay down my expectations very clearly, but do not micromanage. But do intervene when needed to get results.
5: Interesting. So, आपने अपने अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए आज के वर्ड से टेक टॉपिक के लिए. थैंक यू सो मच. वैसे डू यू हैव एनी व्यूज ऑन दिस टॉपिक, यू बीइंग द टीम लीडर आल्सो?
16: नो,
5: यू डोंट हैव एनी व्यूज?
16: नो, आई'd रादर
5: keep it to yourself.
16: Yeah.
5: Interesting. Okay. चलो फिलहाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. और 16 मिनट जबकि बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में, वैसे 9 बजने में ठीक 9 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद व्हाट्स गोइंग ऑन आपके लिए हम लेकर आएंगे.

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
3: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
5: थ्रोबैक की बारी आई है और इस बार ऑन द शो आपके लिए आज का इस घंटे का थ्रोबैक जो है ये हम लेकर आ रहे हैं। बट बिफोर यू मूव ऑन, क्या आपने सुना है अबाउट द कॉग्निटिव टेस्ट अंडर न्यू गाइडेंस इन रिगार्ड्स विद ओल्डर ड्राइवर्स, इसके बारे में?
6: हाँ हाँ, कल इसके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जो है ये की थी ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
5: बट जस्ट इन केस इफ यू हैव नॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी इसके बारे में डिटेल्स हम पोस्ट अप करेंगे, आप जाकर वो चेकआउट
6: कर सकते हैं। फिलहाल कल हमने आपको ये भी याद दिलाया था मौरी लैंग्वेज वीक जो है ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमें बताइए वेंसडे को तेरेवो में क्या कहते हैं?
5: ओह वेरी इंटरेस्टिंग, आई नो दिस वन, बट क्या आपको पता है वेंसडे, आज वेंसडे है ना?
6: I learnt a lot from my daughter.
5: Same, likewise. तो आप हमें बताइए, this is the Maori language week और आपको ये बताना है कि Wednesday को तेरेओ में क्या कहते हैं, Maori भाषा में Wednesday को क्या कहते हैं। तो अपना आंसर आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं, BF लिखे सबसे पहले, फिर आंसर, फिर नाम 5599 पर।

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Accurate traffic.
2: Briscoe's 25k birthday giveaway.
3: A high of 17, staying a cloudy one for us all day. Coming into the city, Southern Motorway, 40 minutes, Manukau to the CBD. Slow from Otahuhu, but quite heavy most of the way into the city from there. Northwestern, 22, Massey to town, slow at Point Chef and Western Springs, otherwise pretty good. Northern, 23 in from Constellation Drive, slow patches there to the bridge and at Silverdale. Southwestern, looking okay.
2: Briscoe's club members could win 25k cash. T's and C's apply.
4: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain. नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
5: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
6: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
5: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
7: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
8: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: It's Woolworths $5 Frenzy. Fill the trolley with Tip Top Toppers or Jelly Tips 6 to 10 pack, just $5 a pack. And Paseo King Size or Ultra Soft Luxury Long Roll 6 pack, just $5. Only at Woolworths. T's and C's apply.
10: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
11: Time check. Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00-00-10.
12: Good morning, it's 7:09.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Good morning, I'm Gary Denver with the latest at 9. Two people have died after a crash between a truck and car in Waikato. It happened just before 6 a.m. in Karapiro. State Highway 29 is likely to be closed for most of the day from Hinuera to Piarere while the serious crash unit investigates. The findings of the report into the disappearance of the Phillips children has come as little surprise to the Children's Commissioner. The public inquiry found coordination and information sharing between government agencies needs improving. Jane Searle says lessons learned must lead to all children being supported and protected.
14: And that they have their rights upheld, whatever their circumstances. So this was a unique set of circumstances, but we need to be able to ensure that for all children.
13: The business community's backing calls to review retirement settings. The Deloitte and Chapman Tripp election survey shows most respondents support the retirement age being lifted to 67. Canada's Prime Minister's shared an anecdote that closely reflects his current dealings with the US. Mark Carney's told of a meeting at the White House last year where President Trump gifted him a gold key.
15: And I was like, wow, Mr. President, that's fantastic. He said, yeah, it's a key to the White House. You just bring it, they'll let you in. And then he says, maybe they'll shoot you. I was like, and that sort of sums up the relationship.
13: In sport, men's defending champion Jakub Menšík is returning to the ASB Classic. The world number 15 says January's tournament in Auckland is like no other.
16: I think it's how close you are to the spectators. So you can really feel the fans right next to the court.
13: And an injury blow for the Breakers ahead of Sunday's Aussie NBL season opener at Spark Arena. American import Josiah Jordan-James has a torn hamstring and will be reassessed in 4 to 6 weeks.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, hamari good brands nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: याद रहे आज का मौसम ज्यादातर क्लाउडी रहने वाला है और शावर्स लाइट शावर्स बेसिकली ये बाद में चलकर होने के चांसेस भी हैं. सनसेट तो 6:13 PM पर होगा. टेम्परेचर हैज गोन अप टू 13.7 डिग्रीज फॉर नाउ और आज हाई ऑफ 16 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है. ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा.
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
1: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको. स्प्रिंग सेल ऑन नाउ. ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
11: What's going on? Kya bakte ho?
17: Are kehna kya chahte ho?
12: यार आज की क्या बकते हो स्टोरी मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी. आई डोंट नो आपको कितनी इंटरेस्टिंग ये लगेगी, बट एक वीडियो जो है केम अक्रॉस दिस. वीडियो का एक्चुअल सोर्स नहीं पता, बट व्हाटएवर इट लुक्स लाइक बिकॉज आई कैन सी द करेंसी इन द वीडियो, तो उससे पता चलता है कि इट्स समवेयर फ्रॉम इंडिया बिकॉज इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है इस वीडियो में. तो अपेरेंटली एक व्यक्ति है जिन्होंने ये वीडियो बनाया एंड ही वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड जब उन्होंने ये देखा कि एक चूहा जो है वो बैठे थे ऐसे एंड ही नोटिस्ड कि उनके घर में जो चूहा है उनके मुंह में कुछ रुपए है, पैसे है.
18: अच्छा, शॉपिंग पे जा रहा था.
12: पता नहीं कहाँ जा रहा था, पर वो मुंह में पैसे देखकर ये थोड़ा वो हो गया ना, रुपए देखकर ये थोड़ा हो गया इंट्रिग्ड, हो गया कि ये इसके हाथ मतलब मुंह में पैसे कहाँ से आए. हाँ. और ये जा कहाँ रहा है. एंड सडनली व्हेन ही वाज ट्राइंग टू रिकॉर्ड ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड ही सॉ कि चूहा जो एक बिल में गया. तो जैसे ही बिल में घुसा इनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ी और वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो इन्होंने इनका जो बिल है डिस्कवर किया और फिर वहां पर जो वीडियो है ये बनाया. एंड ही एक्चुअली सॉ कि इस चूहे के बिल में नोटों की बारिश हो रही थी. मतलब इतने सारे
18: अमीर चूहा था.
12: इतने सारे जो नोट्स है ये इसके बिल में पड़े हुए थे. एंड ही क्यूरियोसिटी में इन्होंने चेक किया तो इन्होंने सारे के सारे जो नोट्स है ये बाहर निकाले. एंड ही वाज स्टंड, ही वाज सिंपली स्टंड टू फाइंड 20 rupees, 100 rupees, 200 rupees नोट्स जो है ये इस चूहे के बिल में जो ये पड़ा था. नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि चूहे को ये सारे पैसे कहाँ से मिले, क्योंकि इसके पास मतलब इनके पास इसका कोई आंसर नहीं है. पर इन्होंने जब ये वीडियो बनाया था तो ये इतने शॉक में चले गए थे आफ्टर सीइंग दिस. He was completely stunned और इन्होंने वो पैसे रख लिए जो है कि मेहनत के कमाई खुद रख लिए. बट ही वॉज कम्प्लीटली स्टन एंड ही वॉज लाइक कि इनको कोई आइडिया नहीं है कि ये चूहे को पैसे कहाँ से मिले, कहाँ से ये लेकर आया. लकी ही गॉट क्योंकि इनके पास पैसे जो है ये आए, क्योंकि उनके घर में ये बिल बना था ना जहाँ पर ये चूहा पैसे लेके जा रहा था. अनफॉर्चुनेटली चूहा इनकी भाषा नहीं बोलता, ये चूहे की भाषा नहीं बोलते, अदरवाइज शायद इंटरोगेशन में पता भी चल जाता कि पैसे कहाँ से आए. और चूहा का प्रोफेशन क्या है ना.
18: Exactly.
12: But this video has gone like viral. आप इंटरनेट पर इसे ढूंढोगे आपको मिल जाएगा. The commentary that's happening behind the video is like वो अलग लेवल का है. वो itself is so hilarious.
18: यार मैं सोच रहा हूँ ये चूहे पैसे लाया कहाँ, चूहा पैसे लाया कहाँ से.
12: वही तो ये लड़का भी सोच रहा है कि कहाँ से लाया. बट फिर उनका
18: नहीं, बट उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. उसको पहले चूहे को मॉनिटर करना चाहिए था
12: कि कहाँ से लाता है,
18: कहाँ से पैसे ला रहा है.
12: देन बिल डिस्कवर करके
18: फिर सारे के सारे पैसे नहीं निकालने थे, थोड़े थोड़े करके निकालता वहाँ से.
12: जितने की जरूरत उतना निकालता ना.
18: हाँ, अब चूहे जो है उसको उसमें डिपॉजिट करता रहता.
12: इंटरेस्टिंग यार, आई डोंट नो हाउ डज दीस थिंग्स हैपन. समटाइम्स द चूहास एंड नॉट जस्ट द चूहास बट ऐसे बहुत से एनिमल्स होते हैं जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन दे देते हैं ना टू.
18: वैसे चूहों का आई मीन एनिमल्स के इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखनी है तो देखो आप खतरों के खिलाड़ी. खतरों के खिलाड़ी
12: उसको क्यों देखें हम,
18: वहाँ पर एनिमल्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी आपको.
12: वो तो लोग जो हरकतें करते हैं उनके साथ,
18: मतलब लोग कहाँ करते हैं,
12: जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको स्टंट करना पड़ता है ना. आई डोंट दिस टाइम अराउंड आई हैव नॉट बीन वेरी इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द रियलिटी शोज जो आए हैं.
18: आई एम वॉचिंग खतरों के खिलाड़ी, आई लाइक इट.
12: आई एम नॉट वॉचिंग इट.
18: I find him fun.
12: मैंने
18: yeah.
12: शायद दो एपिसोड्स देखे होंगे अभी तक, बट आई हैवन्ट वॉच्ड अ लॉट. द इंडियन गेम शो करके भी एक शो आया जिसमें भारती और हर्ष जो है ये होस्ट कर रहे हैं और बिग बॉस सीजन 20 आया. आई हैव नॉट वॉच्ड एनी ऑफ इट.
18: मैं सिर्फ खतरों के खिलाड़ी देख रहा हूँ क्योंकि आई लाइक द फॉर्मेट जिस तरह से उसको करते हैं. रोहित इज अ गुड होस्ट ऑल्सो, वो भी बढ़िया है. और कॉन्टेस्टेंट्स जो है कि आप देखो सारे फेवरेट्स तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, आप किसी न किसी. द रीजन आई लाइक ओरी इज आई फाइंड हिम वेरी नेचुरल. शायद वो वैसा ही होगा क्योंकि मुझे ओरी के बारे में भी वैसे कुछ खास पता नहीं है.
12: उसके बारे में तो किसी को खास पता नहीं है.
18: आई लव हिज हिंदी. उसकी हिंदी मुझे बहुत
12: जब से ये शुरू हुआ है खतरों के खिलाड़ी, आपको पता है कितने लोग जो है इसके होस्ट रहे हैं?
18: ना, मुझे कभी नहीं बुलाया उन्होंने.
12: The first season, I guess because of the title, ये दरअसल अक्षय कुमार ने होस्ट किया था.
18: अच्छा.
12: पहला सीजन 2008 में आया था by the way.
18: Okay.
12: फिर उसके बाद में सेकेंड सीजन अगेन अक्षय कुमार इन्होंने होस्ट किया था. थर्ड सीजन जो 2010 में आया था, दैट वाज होस्टेड बाय प्रियंका चोपड़ा.
18: Okay.
12: फिर उसके बाद में अक्षय कुमार ने होस्ट किया सीजन 4. फिर सीजन 5 से पहला एपिसोड जो है ये होस्ट किया था रोहित शेट्टी ने. फिर उसके बाद में ही डिड सीजन 6 आल्सो, एंड देन केम सीजन 7 जिसे अर्जुन कपूर ने होस्ट किया था. दैट्स द सीजन जो सिद्धार्थ शुक्ला ने जीता था बाय द वे.
18: वो भी खतरों के खिलाड़ी में थे.
12: ही वाज द विनर ऑफ खतरों के खिलाड़ी, सिद्धार्थ शुक्ला. या
18: okay.
12: और उसके बाद सीजन 8 जो है, सीजन 8 से लेकर आई थिंक अभी जो सीजन है क्या सीजन 15 ये चल रहा है ना. हाँ, तो ये सब फिर उसके बाद से उन्होंने होस्ट किया, रोहित शेट्टी ने होस्ट किया. फराह खान भी आई थी बाय द वे, एक स्पिन ऑफ जो है ये बना था मेड इन इंडिया खतरों के खिलाड़ी का, और इसके पहले दो एपिसोड्स इन्होंने जो है ये होस्ट किए थे. सो आई डोंट नो अबाउट द इंडियन रियलिटी शोज, आई डोंट वॉच इंडियन आइडल आइदर. मैं इंडियन आइडल भी नहीं देखती. आई डोंट वांट वॉच एनी ऑफ द डांस रियलिटी शोज. द इज दिस डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर और समथिंग जिसे जावेद जाफरी होस्ट करे विद करिश्मा कपूर, गीता कपूर एंड ट्रेनेंस लिविस एज वेल, पर मैंने कोई भी नहीं देखा है. आई सी रील्स एंड स्टफ लाइक दैट. आजकल मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई भी रियलिटी शो जो ये इतना इंटरेस्ट नहीं कर रहा है. हेलो विजयन पूजा, हाउ टू वॉच इंडियन चैनल्स स्पेशली सोनी लिव एंड कलर्स इन न्यूजीलैंड? आई डोंट नो अबाउट दैट. सोनी लिव का जो मेंबरशिप है यहाँ नहीं अलाउड है, न्यूजीलैंड में नहीं है.
18: अच्छा, जियोस्टार,
12: हाँ न्यूजीलैंड में जियोस्टार भी नहीं है और सोनी लिव भी नहीं है.
18: होगा आई थिंक जो यप टीवी और वो सारे हैं,
12: आई हैव नो आईडिया,
18: दे आर लीगली प्रोवाइडिंग दीस सर्विसेज, तो यू कैन मे बी चेक.
12: मैं तो
18: प्लस स्काई पर भी कुछ हिंदी चैनल्स हैं.
12: हाँ, और फिर मैं ज़्यादातर ये ऑनलाइन देखती हूँ, एज इन लाइक सम ऑफ द चैनल्स ऑनलाइन जो होते हैं, जो किसी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ले लो. आई हैव टिकटॉक ऑन माई फोन, ऐप है मेरे पास. आई डोंट हैव एन अकाउंट दो, आई जस्ट हैव द ऐप, तो उस पर आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं देख लेती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव टू लुक फॉर इट एनीवेयर एल्स. तो वहाँ पर मिल जाता है तो मैं वैसे देख लेती हूँ. आई डोंट हैव एनी अदर मोड ऑफ वॉचिंग इट. फराना ने इनफेक्ट मैसेज किया था बाय द वे, रिसेंटली यू वॉच्ड एनीथिंग जो आपको बहुत अच्छा लगा हो एंड यू लाइक टू रिकमेंड इट टू एनीवन? कुछ ऐसी चीज जो आपने देखी?
18: मुझे जो पसंद है वो औरों को पसंद नहीं आएगी
12: ऑब्वियसली बिकॉज़ योर टेस्ट इज डिफरेंट.
18: हां, माय टेस्ट इज डिफरेंट. आई एंजॉयड घमासान.
12: घमासान आपको अच्छा लगा? सो यू रिकमेंड दैट?
18: नो,
12: यू वोंट रिकमेंड इट. अरे ओके. अब मैंने रिसेंटली आई थिंक देखा है चुंबक जो नेटफ्लिक्स पे.
18: चुंबक आईड रिकमेंड.
12: हाँ,
18: मैंने पूरा नहीं किया बट आईव सीन.
12: सो चुंबक इज समथिंग जो पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, आई डोंट रियली नो. आई एंजॉयड इट बिकॉज उसके जो क्रिएटर्स हैं राधा आतिश कपाड़िया एंड जेडी मजेठिया, इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा कोलेब्रेशन है बिकॉज उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी शोज जो है ये दिए हैं. जैसे सारा भाई वैसे सारा भाई, एंड देयर इज खिचड़ी, एंड देयर इज बा बहू बेबी, ये सारे शोज इनके कोलेब्रेशंस ने दिए हैं. सो चुंबक इज फ्रॉम द सेम क्रिएटर्स. आतिश कपाड़िया हैज़ रिटन इट. जेडी मजेठिया एंड आतिश कपाड़िया बोथ हैव प्रोड्यूस्ड इट, एंड आतिश कपाड़िया ने इसे प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो नेटफ्लिक्स पर 8 एपिसोड्स है. आई थिंक आपको एक बार देखनी चाहिए अगर आप इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है इनके स्टाइल को पसंद करते तो आपको अच्छा लगेगा. एंड उसमें से मुझे पर्सनली आई थिंक मैंने पूरा का पूरा 8 एपिसोड जो ये देखा. दे आर लॉट ऑफ अमेजिंग एक्टर्स जो कि चुंबक से एसोसिएटेड है, बट मुझे पर्सनली जो कैरेक्टर पसंद आया था वो था सुमित व्यास का. सुमित व्यास जो
18: है,
12: जो आदि एक कैरेक्टर वो प्ले करते हैं, और उनका जो तरीका है ऑफ एनालाइजिंग एनी सिचुएशन और रिएक्शन किसी भी बड़े सिचुएशन को लेकर, वो बहुत काम और बहुत रिलैक्स होता है दैट कैरेक्टर. लाइक उनका बेटा घर से भाग जाता है एंड इज लाइक कि हाँ वो ज़रा भाग गया है, दैट्स इट, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील टाइप ऑफ अ सिचुएशन, वैसा वो शो करते हैं.
18: जिसकी बीवी बहुत ज्यादा बोलती है,
12: बहुत ज्यादा चीखती है, अब किसी को बोलने नहीं देती है. हाँ,
18: that one.
12: So, एक कैरेक्टर वो भी है जो बहुत ज्यादा बोलती है, किसी को बोलने नहीं देती. एक कैरेक्टर वो है जिसको कुछ समझ में नहीं आता. एक कैरेक्टर वो है जो हमेशा एक अलग अलग गेटअप में आते हैं. तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं चुंबक. 8 एपिसोड्स नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है. एंड लेट अस नो हाउ डिड यू फाइंड इट.

0: What's up, Auckland?
1: श्री राम मंदिर पर 1160 में श्री गणपति उत्सव जो है ये मनाया जा रहा है। रात 7:30 बजे से कथा होती है। अंतिम दिन 20 सितंबर को सुबह 9 बजे से पूजा आरंभ होगी और मध्यान्ह को श्री गणेश विसर्जन होगा।
2: और इसके अलावा आपको याद दिला दे, 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ये 20 सितंबर तक चलती रहेगी। इसी वीक पूरा ये रहेगा। 7:30 PM टू 9:30 PM भारतीय मंदिर आप पहुंच सकते हैं इसका हिस्सा बनने के लिए, जहां पर डिवाइन स्पिरिट ऑफ डिवोशन एंड 100 ईयर्स ऑफ पिचवाई ये सेलिब्रेट किया जा रहा है विद ब्रजरास रसिक डॉक्टर श्री कृष्णा किनकर जी, जो कि श्री धाम वृंदावन नाम संकीर्तन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है।
1: नोट शो भारतीय संगम द्वारा गणेश चतुर्थी उत्सव 19 सितंबर को रहेगा। दिन में 11 बजे से तकपुना वो मेमोरियल हॉल में, और 11 बजे श्री गणेश पूजा और श्री सत्यनारायण पूजा, 1 बजे से आपके लिए भोजन का प्रबंध रहेगा, 2 बजे से कल्चरल इवेंट्स, शाम 4 बजे ढोल ताशा और क्लोजिंग सेरेमनी, तो आप जाकर इसमें जरूर हिस्सा ले सकते हैं।
2: वेद प्रचार वीक जो कि होने वाला है मंडे 28 सितंबर से लेकर संडे 4 अक्टूबर तक एट 32 ग्लेसगो पापाटोटोए 6:20 PM से ये रहेगा, और आप इसमें जरूर शामिल हो सकते हैं। साल के हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम जो है ये 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी रहेंगे ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड। और इसके अलावा आपको याद दिला रहे हैं कि हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग जो है ये फ्राइडे यानी नेक्स्ट वीक फ्राइडे को होने वाला है ऑन द 25th सितंबर एट वैदिक सेंटर पापाटोटोए, जहां न्यूजीलैंड में जो कलाकार हैं इनके कीर्तन को रिकॉर्ड किया जाएगा, और ये आप हम पर या रोवा ऐप पर और हम फीजी कीर्तन संग्रह पर ये सुन सकेंगे। यहां पर ऑन द 25th सितंबर हमारी हम टीम के कुछ मेंबर्स भी मौजूद रहेंगे, जिनसे आप मुलाकात कर सकते हैं और देख सकते हैं, जान सकते हैं कि रिकॉर्डिंग वगैरह जो है ये कैसी होती है। एंट्री इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। हाउएवर यहाँ पर जो रिफ्रेशमेंट्स एंड कावा वगैरह है ये ज़रूर फॉर सेल रहेगा। एंड ऑफ कोर्स जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे इसका हिस्सा बनने के लिए, आपको यहाँ पर प्राइजेस जीतने के मौके जो है ये भी बेशक मिलेंगे। तो इसके लिए भी आप हमारे साथ ही बने रह सकते हैं। इट्स हैपनिंग नेक्स्ट वीक फ्राइडे 25th सितंबर।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: देखो मैं आ गए।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Coffee? The usual?
2: How about the unusual?
3: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
4: Home loan के साथ थोड़ा cash भी पाना चाहते हैं? नया home loan लेना हो या मौजूदा loan का review करवाना हो? Squirrel आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त deal कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए power of the Squirrel effect. Squirrel.co.nz.
5: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
6: Whites separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
7: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेनुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेनुकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
9: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है।
8: एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया, मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
9: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
7: First home buyer बनना है या investment property लेनी है तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru।
10: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
13: 25 मिनट हो रहे हैं इस समय हमारे स्टूडियोज में 9 बजकर और मैसेजेस आपने हमारे पास भेजे व्हेन इट केम टू टॉकिंग अबाउट कि आपने क्या देखा, क्या देखना चाहते हैं व्हेन यू नो शोज एंड प्रोग्राम्स के हिसाब से। आई थिंक समवन हैज वॉच्ड चुंबक क्योंकि इन्होंने हमारे पास कुकू लिखकर भेजा है।
14: तो यस हां, कुकू अंकल के बारे में जानते हैं।
13: हां तो आपने देख यूए शायद ना। एनीवेज इधर आपको याद दिला दे कि हम पर आपके लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आते हैं जैसे कि हमेशा आपको बताते रहते हैं। रोवा ऐप आप जाकर एक्सप्लोर करो एक बार। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद जस्ट सिट डाउन एंड एक्सप्लोर इट जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। हमारे म्यूज़िक स्टेशंस जो है ये हैं जिनमें अगर आपको यू नो 60s एंड 70s के बॉलीवुड के गाने बहुत पसंद है तो आप हम रिवाइंड जो है एक बार सुनकर देखिए। 80s ये गाना अगर आप बहुत लाइक करते हैं, इस टाइम का गाना आपको बहुत पसंद है तो जुकबॉक्स 80s जो है ये आप ज़रूर सुनिए। एंड टॉकिंग अबाउट सम डिवोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट, फिजी कीर्तन और फिजी भजन ये ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है दुनिया का रोवा ऐप पर जहाँ पर आपको फ्री फिजी कीर्तन और फ्री फिजी भजन जो है ये स्ट्रीम होता हुआ सुनने को मिलता है। और ये आप एनी टाइम इन्जॉय कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट जो कलाकार हैं इनके कीर्तन और भजनों का मज़ा जो है आप ज़रूर उठा सकते हैं फीजी भजन्स और फीजी कीर्तन संग्रह के तहत. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू लव द वाइब ऑफ पंजाबी म्यूज़िक तो आप चढ़दी कला पंजाबी हिट्स ये भी ज़रूर सुन सकते हैं जहाँ पर बैक टू बैक हिट्स जो है ये आपके लिए अवेलेबल है. एंड नॉट जस्ट दैट, नॉट जस्ट द हम म्यूजिक स्टेशंस, बट हमारे बहुत से पॉडकास्ट भी आपके लिए अवेलेबल है. जैसे हमारा ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट, जो भी हम शो के दौरान आपके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं उसका एक छोटा सा बिट हम इस पॉडकास्ट में भी अपलोड करते हैं आपके लिए. देयर वाज अ टाइम आई थिंक हमने व्हाट्सएप एक टॉपिक के दौरान बातें की थी कि हमारी सोसाइटी में हम सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं. इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जिसमें आप सब ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था. सो वो करंटली हमारा ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट का हिस्सा है जो आप जाकर सुन सकते हैं. और इफ़ यू गॉट एनीथिंग टू शेयर अबाउट द सेम वो आप माई साथ ड्यूरिंग द शो भी शेयर कर सकते हैं. लिंक अगर हासिल करना है इसके लिए तो बी एफ रिकर 5599 पर आप जरूर भेज सकते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट वन ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो है अनफिल्टर्ड का रिसेंट एपिसोड जहाँ पर इन्होंने सैंडी एंड रूजबे ने बातें की हैं पब्लिक ट्रस्ट की सीनियर ट्रस्टी है तानिया पिंटो इनके साथ. एंड शी हैज स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि अगर कल आपकी मृत्यु हो जाए और आपने कोई विल नहीं तैयार की है तो इस हिसाब से आपके जो वैल्यूबल्स है आपके जो एसेट्स है आपकी जो प्रॉपर्टी है वाई हैविंग अ पार्टनर डजंट नेसेसरली मीन कि वो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा. आपके बच्चों को मिल जाएगा आपके पार्टनर को मिल जाएगा ऑटोमेटिक ऐसा नहीं होता है न्यूजीलैंड में. एंड व्हाट कैन हैपन जब आपकी फैमिली शायद डिसएग्री करती है अबाउट एन एस्टेट. तो इट्स बेसिकली ऑल द मिथ्स अराउंड विल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टफ लाइक दैट आफ्टर वंस डेथ. इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स है ये इन्होंने हासिल की है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के रीसेंट एपिसोड में. और अगर आपको ये डिस्कवर करना है कि क्या बातें हुई हैं यू वांट टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन तो आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेज दो. आउटर रिप्लाई में अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूजबे का ये जो एपिसोड है आपको मिल जाएगा जो आप जरूर जाकर सुन सकते हैं.
14: और ड्राइव की बातें हो रही हैं लगे हाथों याद दिलाते हैं आपको कि इलेक्शन स्पेशल जो है ये भी रहेगा ड्राइव पर. कल शाम जो एक्ट पार्टी लीडर है डेविड सिमो विल बी द स्पेशल गेस्ट जहां पर उनकी पॉलिसीज प्रायोरिटीज एंड विजन फॉर न्यूजीलैंड विल बी अप फॉर डिस्कशन. आपके कोई सवाल वगैरह हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं ड्राइव लिखकर 5599 पर. एंड टर्न इनटू द ड्राइव शो टुमारो जब सैंडी और उसबे बातें करेंगे डेविड सिमो से.
13: तो याद रहे शाम 5 बजे से ये आपके लिए लेकर आने वाले हैं स्पेशल इलेक्शन स्पेशल ऑन ड्राइव शो टुमारो.
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
15: गुंडी घर जाओ या सीधा अंदर आओ
16: मैं लाऊं अपना ए गेम.
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: FM.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: And it's looking ugly out there on the roads with severe delays on all motorways into the city.
2: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
3: Spring savings are on now at Bedzeras. Save on selected sleepy head beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Bedzeras Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
4: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
5: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
6: Discover more with Air New Zealand flights on sale now. Wherever you're going, enjoy a more Kiwi way to get there. Sales periods vary by destination. Travel periods and conditions apply. Book now at Air New Zealand or your preferred travel agent.
7: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
10: What's going on?
11: Daily Roundup mein aaj sabse pehle subah 6 baje ke waqt hai aaj Waikato mein. करपीरो में घटी एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की जानें चली गई हैं. पुलिस का कहना है कि सीरियस क्रैश यूनिट और इमरजेंसी सर्विसेज जो है सीन को अटेंड कर रहे थे और वहां से कई गाड़ियों को आज वापस भेजना पड़ा है और मामले की तहकीकात भी फिलहाल अभी की जा रही है. इसके अलावा a school that decided to shave 10 minutes off every hour it paid a casual relief teacher. अब उसको कई हज़ार डॉलर के बिल जो है अंडर पेमेंट्स में मिले हैं. रेडियो न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओटागो हाई स्कूल जो है वहाँ की जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि उन्हें ये पता चला कि एक अध्यापक जो है ने ये डिस्कवर किया कि उनके राइट्स जो है ये वायलेट हुए हैं एंड शी हैज़ बीन अंडर पेड फॉर मैनी ईयर्स. Investigation jo hai ye shuru hui and the school decided earlier this year to pay her for 50 minutes instead of 60 minutes for each class she covered. Thompson ne bataya ki extra 10 minutes covered non timetable duties like finding which classroom she would be working in, classroom ki keys collect karna or finding the work to set her students. Aur unhone they've always paid for 60 minutes even for a 50 minute lesson and this year unhone decide kiya ki wo fir sirf 50 minutes ka pay karenge. I was told they were doing it to save money. Aur uske baad unko laga and Thompson ko laga ki ye unke sath unfair hai because she's easily spent 10 minutes organizing keys and paperwork for each class she taught at the school. जब उन्होंने अपने राइट्स के बारे में पता किया शी फाउंड आउट दैट स्कूल हैज़ बीन अंडर पेइंग हर फॉर द एंटायर 3.5 years शी हैड बीन वर्किंग फॉर देम. और द स्कूल फेल्ड टू प्रोवाइड एन आवर्स पे इन सिचुएशंस जहां पर द गैप बिटवीन हर आवर्स ऑफ वर्क वाज 90 मिनट्स और मोर. और ये भी उन्होंने पाया कि जो कलेक्टिव अग्रीमेंट दैट आई शुड हैव बीन पेड व्हेन देयर वर दीस बिग गैप्स जो है उस समय पर उनको पे नहीं किया गया था और इसके बाद चलकर स्कूल जो है उनसे इन क्लेम्स के बारे में पूछा गया है। हालांकि जो प्रिंसिपल है हेलन न्यूकम उन्होंने बताया कि इट कुड नॉट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स एम्प्लॉयज सैलरीज और एंटाइटलमेंट्स।
10: और इसके अलावा एक और एक खबर जो कि आज सुबह भी हमने आपको इसके बारे में बताया था कि ओवरऑल अगर देखा जाए एस्टिमेटेड 19,153 लोग न्यूजीलैंड में आर ओवरस्टेज अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का जो डाटा ये सामने आया है। In the last 3 years, the visas of 6,559 people have expired without them leaving. And Immigration New Zealand ne kaha hai ki new methodology jo hai was behind the overall decrease jo dekha gaya in overstays from the last year's figure of 20,979 people. Agar ye change jo had not occurred, there would have been an increase of 15 in the estimated numbers. So, is pure list mein agar dekha jaye, to kaha ja raha hai ki Americans top the list of the people who have overstayed their visas in New Zealand in the final 3 years, or last 3 years rather. Aur pura ka pura article in regards with the same, jahan par ek pura breakdown hai ki kis country ke log zyadatar overstays hai, kitne number of people overstays hai from which country, Immigration New Zealand ka kya kehna hai aesthetics ke baare mein. Ye sare details hamare Facebook page par aapke liye posted hai, aap agar chahe to wo jaakar padh bhi sakte hain.
11: वेलिंगटन अस्पताल का जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसने कुछ कॉरिडोर्स के कुछ हिस्से हैं इन्हें बंद कर दिया है ताकि वहां पर एक्स्ट्रा बेड जो है ये अकोमोडेट किया जाए क्योंकि पेशेंट नंबर्स अभी भी वहां पर काफ़ी ज़्यादा हैं। हेल्थ न्यूजीलैंड के एक्टिव इंटरिम ग्रुप डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस वेलिंगटन के लिए साथ में कोस्ट और हट वैली के लिए रॉबर्ट ब्लेकी ने बताया कि टाइम्स व्हेन देयर इज हाई ऑक्युपेंसी इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट कदम उठाए जाते हैं स्थायी तौर पर ताकि जो कैपेसिटी है बेड्स के लिए अप टू 4 बेड्स के लिए एक कॉरिडोर में ये बनाई जाए ताकि लोगों को वहाँ पर रखकर ऑब्जर्व जो है ये किया जा सके और यही हाल जो है कल भी वहाँ वेलिंगटन हॉस्पिटल के एमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखा गया।
10: तो ये थे आज की डेली राउंडअप, थोड़ी देर बाद आज की दो बातें जो है ये भी आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे।
12: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do baate.
1: Aaj ki pehli baat. हो सके तो किसी की समस्या का हल बने कारण नहीं। और दूसरी बात, तुम अपने लिए अच्छा सोचो, गलत तो दुनिया सोच ही लेगी।
2: This is actually so true. पर अक्सर लोगों के लिए, not everyone, but in some cases for some people, ये थोड़ा हार्ड हो ही जाता है, जहाँ पर लोग जो है ये अपने लिए अच्छा सोचते ना, as in खुद को समझाना कि भाई इतना बुरा जब सोच सकते हो तो इन रिटर्न अच्छा क्यों नहीं सोच सकते, becomes a bit hard for certain people at times.
1: भाई आप दूसरों को नहीं बदल सकते.
2: Yeah, exactly.
1: दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, अगर अपनी तो बदल सकते हो क्योंकि आपका कंट्रोल अपने ऊपर होता है. दूसरों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो जो सोचना चाहेंगे आप अपनी ओर से उनको बता भी दो लेकिन वो उन्हें जो सोचना है वही सोचेंगे.
2: Yes.
1: तो आप बेहतर होगा कि यू वर्क ऑन योरसेल्फ rather than expecting कि लोग अच्छा सोचे आपके लिए.
2: But the most important thing I would say is कि ये चीजें difficult जरूर होती है लेकिन impossible नहीं. तो difficult हो कितनी भी आप कोशिश करते रहे, with time probably it'll work out for you and you'll be able to do that very freely. आपके लिए शायद काम हो जाए. And very rightly said or described कि अगर आप अपने लिए the worst सोच सकते हैं तो the best क्यों नहीं. So instead of thinking about the worst for yourself, think the best. चलिए इन्हीं बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे परमिशन जाने की. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. हमारी और आपकी मुलाकात, खैर ये तो होगी अब कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे.

0: वैसे मैं अगर आज के बारे में बात करूं, दी हाइज ऑफ 16 ओवरनाइट टेंपरेचर ऑफ 10 आज का फोरकास्ट बताया जा रहा है. शायद कुछ शावर्स पड़ सकती हैं, दोपहर के बाद हवाएं भी बढ़ सकती हैं एंड 6:13 पर सनसेट बताया जा रहा है.
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम

0: Factor.
1: क्यों रहा, नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं. आपका साथ निभाने के लिए मैं कशिका आ चुकी हूँ स्टूडियोज में और 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए बिल्कुल मुमकिन हो जाता है. आज कुछ अलग बातें करेंगे और देखते हैं कि आप में से कितने लोग उस बात के साथ सहमत होने वाले हैं. तो चलिए प्ले करती हूँ आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक और साथ साथ कशिश फूड्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिनके ओर से आपके लिए मुमकिन हो जाता है 10 से 12 बजे का आपका मेरा ये सफर मंडे टू फ्राइडे. ऑलराइट, गाना बजाने का वक्त आ गया है. बजाओ
0: बजाओ क्या

0: not happening.
1: Experts Adda.
2: ऐसा होता है ना दैट तीन लोग हैं जिसमें से मैं कहती हूँ न्यूजीलैंडर्स के बारे में बात करती हूँ. तो न्यूजीलैंडर्स के लिए बात करते समय मुझे इतना पता है कि देर आर 26,000 पीपल इन अ ईयर जिनको डायग्नोस किया जाता है फॉर डिमेंशिया. देर आर 83,000 पीपल लिविंग हियर इन न्यूजीलैंड. हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए दिस इज़ क्लाइंबिंग वेरी फास्ट. सो अल्जाइमर्स न्यूजीलैंड के एक फॉर्मर जो चीफ थी कैथरीन, उन्होंने 14 साल तक इस रोल में काम किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो एक शी वॉन्ट्स टू टेक इट अप पर्सनली. अल्जाइमर्स जो है ये एक ऐसी तरह का डिमेंशिया है जो लगभग कॉस्ट करता है अंडर 2.5 बिलियन डॉलर्स इन अ ईयर. 2050 तक इफ नथिंग चेंजेस इट कैन प्रोबेबली हिट 10 मिलियन डॉलर्स. डिमेंशिया एक ऐसा टर्म है जहाँ पे एक बड़ा ग्रुप होता है जिनमें कंडीशंस होती है अफेक्ट करते हैं ऑन अबाउट आ ब्रेन विच स्टार्ट्स वर्किंग, है ना, ऐसा होता है. अल्जाइमर्स ऐसी चीज़ है जो मोस्ट कॉमनली नोन है और ये 2/3 ऑफ द केसेस में ऐसा पाया जाता है इंक्लूडिंग वैस्कुलर डिमेंशिया और साथ साथ स्ट्रोक होता है. डिमेंशिया कहीं ना कहीं पे आपको पता चलता है एंड पीपल सफर फ्रॉम पार्किंसन एज वेल. एंड ये होता है पीपल अंडर 65 की एज से स्टार्ट. एक गुड न्यूज़ ये है कि ये एज का जो बिग रिस्क फैक्टर है लोग कहते हैं शायद ये कंट्रोल नहीं कर पाते. लेकिन एक बात बताऊँ आपको, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको चेक करनी चाहिए. अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किस तरह से आप मूव करते हैं, किस तरह आपका वेट है, स्मोकिंग क्विट कीजिए, अल्कोहल पे इजी जाइए, अपने जो डायबिटीज़ का एक रिकॉर्ड है उसको बना के रखें, स्टे कनेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट. आपका लोनलीनेस, आपका डिप्रेशन, ये एक रिस्क बन सकता है, कभी इग्नोर मत कीजिए अगर आपको कुछ हंसने सोने में कुछ देखने में प्रॉब्लम आती है. तो याद रहे
1: माय टाइम विद कशिका.
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं.

0: ऑफिस शाउट आउट की जब बात आती है तो यस आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली आर लिसनिंग. और कल जैसे कि शिवानी फ्रॉम हैमिल्टन आपने कुछ गानों को पसंद किया, तो आई होप आज भी आप उन गानों को पसंद कर रहे हैं. वेलिंगटन से आप ऐश जो हैं हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच. एंड यस मैं अगला गाना जो बजाने वाली हूँ उससे पहले आपको ऑफकोर्स मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक हूँ तो कुछ ना कुछ तो आपको रिमाइंड कराना ही पड़ता है. अब जब मैं बात करती हूँ यू की रिमाइंड कराने की तो यू की आपको बता देती हूँ हमारे इलेक्शन स्पेशल के बारे में. अब ये इलेक्शन स्पेशल जहाँ पर है हमें पता है बहुत बड़े प्रोमिसज डिसीशंस रियल कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बात करी जा रही है. आउट यू रिवर्स पीक इलेक्शन स्पेशल जो है ड्राइव शो पर होने वाला है और इसी थर्सडे के दिन यानी कि कल शाम 5 बजे एक्ट पार्टी के लीडर डेविड सिमर जो है एक लाइव कॉन्वर्सेशन पर आने वाले हैं जहाँ वो पॉलिसीज प्रायोरिटी और अपने विजन के बारे में न्यूजीलैंड के लिए बात करने वाले हैं. आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है फॉर डेविड सिमर तो आप हमें 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं. ड्राइव कीवर्ड है, याद रहे ये कॉन्वर्सेशन कल आप शाम 5 बजे डेफिनेटली सुन सकते हैं. आउट टू रिवर स्पीक्स योर क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स.
1: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: ऑफिस हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: वैसे दो ऐसी फिल्म्स है जो रिलीज होने वाली हैं, मैं कह सकती हूँ फैमिली के अंदर ही चल रहा है, फैमिली की फिल्म्स रिलीज होने वाली हैं। अब आप सोचो क्या, दायरा में जो है करीना कपूर जो है वो नज़र आने वाली हैं, और साथ साथ कुणाल खेमू की वाइब। इन मैंने कल बताया था ना, आई थिंक परसों बताया था शायद, कि करीना कपूर की फिल्म्स को ए ग्रेड बहुत ज़्यादा ए सर्टिफिकेट मिलने लगा है। अब ये कुणाल खेमू की भी जो फिल्म है वो वाइब जो है इसको भी एक अडल्ट का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब कहा जा रहा है ये कि ये पर्टिकुलर जो मूवी है इसमें प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और काफ़ी सारे कलाकार नज़र आने वाले हैं, और ये एक इनकी सेकंड फिल्म है प्रीति जिंटा की जो आपको नज़र आ रहा है, इनकी कमबैक फिल्म बंटवारा के बाद। और साथ साथ इंडस्ट्री वालों ने ये बताया है कि कुछ फिल्म ऐसी होती है वाइब का एक फ़न एंटरटेनर बताया जा रहा है, प्रॉबेबली यू नो बड़े बच्चे भी देश से फिल्म को देख सकते हैं। वी रिमेंबर दैट कुणाल खेमू ने मडगांव एक्सप्रेस 2024 में बनाई थी, उसमें भी एक यूए का सर्टिफिकेशन आया था। बट यू रियली गोना बी सरप्राइज्ड अब दोनों फिल्में एक साथ, अब बताइए, एक है भाभी एक है ननद, ननद नंदोई, उन दोनों की फिल्में कल रिलीज होने वाली हैं। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट।

0: जस्ट टू लेट यू नो कि हम कीर्तन संग्रह जो इसकी रिकॉर्डिंग 25 तारीख को वैदिक सेंटर में अगले हफ्ते होने वाली है पापा टोइटो में, कलाकार जो हैं यहाँ पे आकर अपनी आवाज़ देने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले हैं फॉर दी हम फीजी कीर्तन संग्रह, जिसको आप सुन सकेंगे हमारे रोवा के म्यूज़िक स्टेशन के ज़रिए। हमारी टीम को ज्वाइन कीजिएगा, एंट्री बिल्कुल फ्री है, रिफ़्रेशमेंट्स है, कावा विल बी ऑन सेल एंड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी टू विन प्राइजेज एज वेल। तो आप ज़रूर आइएगा एट द वैदिक सेंटर 25 तारीख को फॉर दी हम फिजी कीर्तन संग्रह। ये एक वैदिक सेंटर में अमेजिंग सा एक्सपीरियंस होगा।
1: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा।
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे, ओनली ऑन हम।
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
11: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
12: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
10: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath, and you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Do lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
13: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है, अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
14: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ
15: और मैं नहीं करता।
13: दायरा, रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 18 सितंबर।
15: ओपन ट्रिप केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
16: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
13: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग टीबीसी।
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: कभी कभी ऐसे जब ड्रीम्स होते हैं जो हमें लगता है कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सुनाई देने लगता है, तो बेसिकली इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ सेरेनिटी। आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलने लग जाता है, और मोस्टली क्या होता है, इट इज़ म्यूज़िक को आप ध्यान से अगर सुनो कि कौन से तरह का म्यूज़िक है, एक हार्मनी, जॉय, एक डीपर फुलफिलमेंट आपके पर्सनल रिलेशनशिप में ज़रूर लेकर आता है। कोई स्पेसिफिक फॉर्म, कोई स्पेसिफिक म्यूज़िक हो तो लिख के बताइए, क्योंकि जस्ट यू रोट अबाउट इट दैट I hear music when I sleep. So it can be having different meanings and interpretations to it. But I definitely like to take up something. Jab aapke paas kuch aisi aur cheez aaye, to please mere saath zarur share kare. Kal, I don't mind.
1: Dil se dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म के लिए मैं कह सकती हूँ सुपर टुपर एंटरटेनर फिल्म थी. क्या बात थी इस फिल्म की. मतलब इसका एक कॉमिक जो सीक्वेंस, चाहे वो कादर खान थे, चाहे अमिताभ बच्चन थे, चाहे वो गोविंदा थे, चाहे वो दीपा साही थी, चाहे वो किमी काटकर थी, या चाहे वो गोविंदा और किमी शिल्पा शिरोडकर थी, सब ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था. एक ज़बरदस्त मूवी बनी थी. नाम था हम. इसी फिल्म का ये गाना मैं आपके लिए अब लेकर आने वाली हूँ थ्रोबैक में. इंजॉय.

0: शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
2: ये गलत बोल दिया यार।
1: और पहनता भी नहीं उसको।
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी, ब्रांड हो गया ना।
1: रुस्बे के बाल लगे उस।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaikoo.

0: MediaWorks complaints. How can I help?
1: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
0: Nice.
1: And you talked me into creating this funny character.
0: Great.
1: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
0: Are you?
1: Yes.
0: Are you Bobby the Baker?
1: Yes.
0: What's that thing you do again?
1: Stop it.
0: You bring the mouth.
1: Stop it.
0: I'll bring the pie.
1: Stop it, please.
0: Okay.
1: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
0: So what's the problem?
1: My name's Bruce.
2: Advertise with MediaWorks.
0: New Zealand listens to us.
3: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
4: Spruce your backyard for spring at Trade Tested. Smash the winter grime with a Karcher water blaster. Get a Hyundai chipper in to shred the branches or deal to the weeds with a fancy Greenworks electric garden sprayer. Be first up, best dressed this spring at Trade Tested.
5: Have you heard the news? Powerball has changed. There are now 14 Powerballs, meaning bigger prizes plus more winners with a brand new Division 8 cash prize. Imagine winning $5 million this Wednesday. Get your Powerball ticket in-store or online.
6: It's time to protect your health, and NIB's got your back. For a limited time, get a $200 gift card when you sign up for NIB's hospital policy cover. Offer available after paying for your first 3 months. Eligibility criteria and terms and conditions apply, including the insured person to be over 16 years old. Offer ends 30 November 2026. Future you will thank you for it. Find out more at nib.co.nz.
7: Check.
8: Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800 00 00 10.
7: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with Logic.
9: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Reports of text message scams have ballooned here by over 1,000% in new data. The Department of Internal Affairs says they jumped more than 1 million in 2025. It was helped, though, by the introduction of one-click reporting on Apple products, which will now be rolled out to Android users. Foodstuffs is a national site. If it's re-elected to government in November, it plans to split the company in two, subject to an Independent Commerce Commission assessment. New World and Foursquare supermarkets would form one chain and Pack and Save the other. Finance spokesperson Nicola Willis says current competition is too weak. Some familiar names are making appearances at the International Confederation of Principals Convention this week. It's been hosted in Auckland by the New Zealand Principals Federation. President Jason Miles says as well as international guests, they've got some great local speakers.
10: Gilbert Anoka, Sir Ian Taylor, Stacey and Scotty Morrison, Professor Peter O'Connor, Hannah O'Regan.
9: And a whale found dead in Marlborough on Monday has been identified as a rare pygmy right. While no obvious cause of death has been uncovered, samples will continue to be tested and the body's been buried under the guidance of tangata whenua. In sport, Ryan Fox is in a superstar group for the DP World Tour's PGA Championship at Wentworth. The Kiwi golfer will tee off tomorrow night alongside Rory McIlroy and fellow major winner Aaron Rye. And in rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com, the Black Ferns play Scotland in Scotland for the first time this weekend. First five Hannah King steering clear of the national dish.
11: We did have a team come to training talking about this haggis. I didn't even know what it was until they explained it, and I don't know if we'll be trying any of that.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
12: Hum par shok suchnai aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
13: सूचित किया जाता है कि सतीश चंद, शर्मिला, शोभना और नीता के पिता सावित्री के पति सुरेंद्र चंद की मृत्यु वाटाकरे हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंड फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए 02736463393 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, सतीश चंद, शर्मिला, शोभना और नीता के पिता सावित्री के पति सुरेंद्र चंद की मृत्यु वाइटाकरे हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंड फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 02736463393 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि रात उमारा रोड नाम्बुआ फिजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र एवनडेल के प्रकाश लाल के पति ऑकलैंड के शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनील लाल के पिता, फिजी के फॉर्मर नसीनो और सुवा के सॉकर रैप एवनडेल के सुनेश लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे मैनकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 021-3104-961 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, रातुमारा रोड, नाम्बुआ फिजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र एवनडेल के प्रकाश लाल के पति, ऑकलैंड के शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनी लाल के पिता, फिजी के फॉर्मर नसीनो और सुवा सॉकर रैप एवनडेल के सुनेश लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे मैनकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 022-3104-961 पर आप संपर्क करें। सूचित किया जाता है कि विनेश सुमेर, आत्माराम, स्नेहलता और बेला सिंह की मां उषा सुमेर के साथ भूतपूर्व लौला बे सुवा निवासी लौकाला बे सुवा निवासी स्वर्गीय राम सुमेर की पत्नी जशोदा कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 021-496-321 पर आप संपर्क करें। सूचना दोबारा सुने, विनेश सुमेर, आत्माराम, स्नेहलता और बेला सिंह की मां उषा सुमेर की सास भूतपूर्व लौकाला बे सुवा निवासी स्वर्गीय राम सुमेर की पत्नी जशोदा कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम ऑन साइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 021-496-321 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
14: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

तो आज के मौसम को अगर मैं देखूं, हाइज ऑफ 16, ओवरनाइट टेम्परेचर ऑफ 10 आज का फोकस बताया जा रहा है. क्लाउडी डे रहेगा, कुछ शावर्स एक्सपेक्टेड हैं और दोपहर के बाद कुछ बादल भी बढ़ते चले जाएं, शायद नॉर्दर्लीज बढ़ें. एंड ऑफकोर्स 6:13 पर सनसेट बताया गया, हाइज ऑफ 16, ओवरनाइट टेम्परेचर ऑफ 10 आज का फोकस है.

0: नमस्कार और हम पवार में आप सबका मैं काशी का स्वागत करना चाहती हूँ। बस यहाँ से लेकर अब मैं कह सकती हूँ 12 बजे तक मैं कुछ बातें आपके साथ ऐसी शेयर करूँगी जो शायद आपको डेफिनेटली आपको इन्वॉल्व करके, हाँ डेफिनेटली। लेकिन कशिश फूज को पहले थैंक यू कर देते हैं। कशिश फूज के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है दैट आपके लिए मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के बीच में मैं काशिक आपकी रिमाइंडर क्लॉक बनकर आ जाती हूँ। और साथ साथ अब आपको याद दिलाना चाहती हूँ, याद है इस हफ्ते हम कुछ डिवाइन सिक्स वर्ड की स्टोरीज़ के बारे में बातें कर रहे थे, तो अगर आपके पास कोई ऐसी बात है तो ज़रूर शेयर करें। और रिसाइकल मी रीयूज मी में आम क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रिसाइकल कर सकते हैं। इस हफ्ते हम कुछ राजमा से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, देखते हैं आपके पास कुछ खास है तो जरूर बताइए।
1: बचाओ क्या

एक बात तो है कि हम स्प्राउट्स जो होते हैं घर पर नहीं उगाते, हम बनाते नहीं हैं, हम उनको जाके मार्केट से खरीद लेते जो मिल जाते हैं। आई के रोली से कि स्टॉप बाइंग स्प्राउट्स, क्योंकि ये जो है एक फ्रेश मूंग या चना अपने आप अपनी किचन में अगर आप स्प्राउट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। सुपरमार्केट्स में पैक्ड स्प्राउट्स आपको ज़रूर मिल जाते हैं, नेक्स्ट टू द वेजिटेबल्स, प्राइस्ड वेरी वेरी हाई। बट एक बात बता देती हूँ कि दे नीड टू बी सोक्ड वेल। एंड वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन है, जैसे आपने मार्केट से आकर उठा लिया और उसके बाद आपने घर पर आकर उनको छोका लगा दिया। लेकिन एक चीज़ कह सकती हूँ, ये उस प्लास्टिक के अंदर लपेटे हुए होते हैं फॉर अ फ्यू डेज, सो दे रीच द शेल्फ एंड देन यू मेक द सैलड और समथिंग और चाट, एंड फिर यू नो समटाइम्स इट डजेंट वर्क थ्रू। एक प्रोसेस होती है जो एक रात पहले अगर आप इनको आप स्प्राउट्स के लिए भिगो दें, चाहे वो मूंग हो या चना हो, और फिर इनको लंबे टाइम तक सोक कीजिए। आपने बीन्स को करीब 3-4 बार पानी से धो दिया, उसके बाद उसके अंदर जो मट्टी वट्टी है डेबरी वेबरी निकल जाता है, बोल में ट्रांसफ़र कीजिए और उसके बाद आप लगभग 1 इंच पानी उसमें डालिएगा, दैट्स इट। और बीन्स को फिर जो आप जो भी बीन्स हैं उनको ओवरनाइट स्वेल होने दीजिए। चना पर्टिकुलरली एक्सपैंड ज़्यादा होता है मूंग से, सो डोंट बी सरप्राइज कि आपके बोल में फूल के बहुत सारा चना भर गया, काले चने की बात कर रही हूँ। ओवरनाइट सोक कीजिए, लगभग 8 से 12 घंटे अगर आप सोक करते हैं और उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक अगर सोक करते हैं तो मेक श्योर आपका स्प्राउट जो है बढ़िया निकल कर आता है। एक बार ये सोक हो जाते हैं, इनको अच्छी तरह से ड्रेन करने के बाद इनका प्रोसेस आपको पता है, इनको आप ये आपके लिए वहाँ पे थोड़ा सा पानी है अगर आप है कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो हटा दें क्योंकि उसमें सार स्मेल आने लगती है, फिर मोल्ड भी हो जाता है। इट्स बेटर कि आपको किसी कपड़े के अंदर उसको आप लपेट के आप उसको सोक कर दीजिएगा। चना जो है या जो भी कुछ है आपके लिए वो अच्छा रहता है किसी में आपने रैप कर दिया और थोड़े एक वार्म एरिया डार्क स्पॉट में अगर आप रख देते हैं तो वो चाहे वो मूंग हो, मूंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट इन्हें रिंस ज़रूर करते रहिएगा ताकि ये आपके लिए अच्छे बन जाएँ। एंड कोशिश कीजिए कि इन स्प्राउट्स का आप जब इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जनरली 3-4 दिन तक चलते हैं, पेपर टॉवल में भी इनको आप लपेट सकते हैं।

0: के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनानास चाइल्ड केयर, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद मल्टीपल ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड हैमिल्टन। ये हमेशा आपके पास है। गो बनानास चाइल्ड केयर 12 पर डे ऑफर, 6 मंथ्स कंप्लीटली फ्री एंड द फॉलोइंग 6 मंथ्स 50% ऑफ ऑन फीस फॉर ऑल एजेस। ऑफर एंड्स 30th सितंबर। लिमिटेड स्पेसेस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। तो जल्दी ज्वाइन करो और एंजॉय करो स्पेशल ऑफर्स। कॉल 0800-46-26-26 टुडे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
2: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
5: Air New Zealand is on sale now at Flight Centre. Fly seat only return to Sydney from 549 or Raro from 589 per person. Book in store or online today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
6: Get the bold new flavours of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel. Packed with protein, fibre, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
7: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
8: It's Briscoe's birthday, and we're celebrating with a huge $25,000 birthday cash giveaway. Take the pressure off your mortgage or treat yourself to something special. Briscoe's club members only. See online for T's and C's.
9: Bunnings helps you to elevate your garden in spring, from getting the une soil ready to our wide range of nake nake plants and hua whenua veggies. Come and hear the kōrero of us to get your māra humming.
10: Bunnings Warehouse.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
11: So coming to my six word story, तो आप आज आपने बताया कि darkness fell, but morning broke again. Darkness fell, but morning broke again. This is so so beautiful. ये आपने लिख के भेजा है कैटरीना आपका नाम है, सॉरी कैटरीना। अभी दिस वाज लाइक CATRINA, सो कैटरीना। डार्कनेस फेल बट मॉर्निंग ब्रोक अगेन, बिल्कुल बहुत खूबसूरत आपने लिखा। फॉर यू इट मस्ट बी अ ब्यूटिफुल डायनामिक डिवाइन स्टोरी। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको पता है कि मैं आपकी स्टोरी जो है अपने इंस्टा के साथ ऐड करने वाली हूँ, एंड उसको आप जाके जरूर देख सकेंगे।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

जब हमारे पॉडकास्ट की बारी आती है तो एक बात आपको बताना चाहती हूँ दैट हमारे ब्रेकफास्ट शो की अगर आपने कैच करना है, कैचअप लेना है, तो बियॉन्ड द डेट व्हाट डज सक्सेसफुल सक्सेस एक्चुअली मीन फॉर यू. तो पूजा और विजय ने कुछ सोसाइटी मेजर्स के बारे में बात की, कैसे होम लोन से लेकर शादी तक कैसे लिसनर्स अपने आप को रिडिफाइन कर सकते हैं. आर यू सेटल्ड? डू यू थिंक यू आर सेटल्ड? नहीं ऐसा आप. अच्छा चलो एक काम करते हैं, आप 5599 पे आप ब्रेकफास्ट लिख के BF लिख के भेजिए शॉर्ट फॉर्म, आपको वो डिटेल ज़रूर मिल जाएगी. एक चीज़ और है कि अगर आप कल आपकी डेथ हो जाती है तो व्हाट हु वुड गेट योर मनी, योर हाउस, योर कीवी सेवर, योर ज्वेलरी, योर बिजनेस? और मोस्ट प्रॉबेबली ये आंसर्स ऑब्वियसली आप कहते हैं आपके पार्टनर, आपकी फैमिली, आपके बच्चे. लेकिन न्यूजीलैंड में डाइंग विदाउट अ विल आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. ऐसे में एक एपिसोड है अनफिल्टर्ड में सैंडी और उज़्बे के साथ, जहां वो अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट्स लाइक विल्स, एस्टेट्स, क्या होता है अगर आप गुजर जाते हैं, आपके लिए वो एक क्या कवर होता है कि नहीं होता है. सो इसमें तानिया पिंटो, सीनियर ट्रस्टी ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, इनसे बातचीत की और उन्होंने बहुत सारी इसमें बातें जो है इनसाइट्स दी. तो 5599 पे आप ड्राइव लिख के भेजें और अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रोज़ पे आपको सुनने को रोवा पे और स्पॉटिफाई पर भी मिल सकता है.

0: Klassiker.
1: Boah.
2: Hau.
1: An gut.
3: हमारी पॉडकास्ट अगर आप सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली कभी कभी एक म्यूजिकल पॉडकास्ट हमने अब तैयार किया है. इसमें एक पावरफुल म्यूजिकल जर्नी आपकी जो है वो आप कर सकते हैं, जहां हर सॉन्ग एक यूनिक थीम के साथ जो है सैंडी और रोजबे ने क्रिएट किया है, डिफरेंट जॉनर्स के साथ, डिफरेंट एरास के साथ. ट्रिब्यूट्स हैं, लेजेंड्स हैं जो बॉलीवुड के, या फिर वो कुछ सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, या फिर वो कोई अनफॉरगेटेबल एक्टर्स हैं. ये एक हर एपिसोड में उन्होंने बातचीत की है. तो अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, यू आर सॉर्टेड, बिकॉज एक बहुत ही ब्यूटीफुली क्यूरेटेड लिस्ट आपके लिए तैयार होगी. हर किलोमीटर में आपके लिए एक अलग अलग गाना आपके लिए तैयार होगा. सो बस चलो, अगर आपको भी इनके गानों की लिस्ट प्लेलिस्ट जाननी है और आप इस म्यूज़िकल पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो ट्रेंड मेकर्स लिख के भेजिए. TM शॉर्ट फॉर्म है, 5599 पे आप इसे टेक्स्ट भी कर सकते हैं और आपको ये ऑटो रिप्लाई में लिंक आ जाएगा.
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
5: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ. बोली, बस मेरा फोकस है.
7: अच्छा,
6: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in.
10: It's Woolworths $5 Frenzy. Fill the trolley with Lucifora mandarins, just $5 a kg. And Waddy's baked beans or spaghetti, 420 gram 3-pack, just $5 each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.
11: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Do lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
12: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है. अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन.
13: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ.
14: और मैं नहीं करता.
12: दायरा, रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर.
14: वो कल्चरल केस है, उनकी स्टोरी ओवर है.
13: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है.
12: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.

0: ये हफ्ता जो है जहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम राजमा अगर लेफ्ट ओवर हो जाता है उसके साथ क्या कर सकते हैं, तो ये राजमा का आप कटलेट बना सकते हैं। राजमा बहुत ही अच्छी क्रिस्पी टिक्की जैसे हो सकती है, वो बहुत अच्छी। इसकी सारी ग्रेवी आपको सुखा लेनी है, और जब आपने ग्रेवी को सुखा लिया उसके बाद इसमें आपने मैश किए हुए आलू ऐड करे, मसाले ऐड किए, और फिर आपने जब आलू के साथ उसकी बाइंडिंग होती है राजमा की, राजमा मैश हो गए ना, क्या बताऊँ आपको, ये टेस्ट इतना अच्छा आता है। आप इसे अगर इस टिक्की को एक रैप में बना के उसमें छोटे छोटे लच्छा प्याज का काटें, थोड़ा सा सैलेड डालें, और बच्चों को भी दे दें, आप बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो कभी इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मैंने अभी लास्ट वीक ही इसको खाया था, एंड थैंक्स टू अमिता जिसने मुझे ये रेसिपी भी बताई। तो ये एक अमेजिंग राजमा की लेफ़्ट ओवर की टिक्की बहुत बहुत डिलिशियस बनती है। आप भी ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने अगर ट्राई किया तो मुझे जरूर बताइएगा।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: तो इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है हम्प वार बुधवार, मेरी मुलाकात आपसे कल होगी, दिन कहलाएगा बृहस्पतिवार वीरवार। तो चलिए अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात करती हूँ। केतन कमिंग अप नेक्स्ट, इनका साथ जरूर दीजिएगा। काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियोज, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर एंड बाय बाय।

0: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़?

0: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
1: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
2: That is very that is a very acceleration.
1: That's a very acceleration. Yeah.
2: Amazing acceleration.
1: This is my fancy English. That's a very.
2: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.